100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, शक संवत 1948, तदानुसार 20 जून सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

कण में राम, क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। घड़ी की सुइयां बता रही है कि सुबह के 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर अपना मनपसंद कार्यक्रम पुष्पांजलि। इस पावन प्रभात की वेला में अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हम मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक भगवान गणेश के चरणों में सादर वंदना के साथ करते हैं। आइए उनके पावन स्मरण से अपने अंतःकरण को अलौकित करें, ताकि जीवन का प्रत्येक मार्ग निर्विघ्न और कल्याणकारी हो।

श्रोता, सुबह का ये समय केवल जागने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को जानने के लिए है। पुष्पांजलि की ये सुर आपको उस सत्य से अवगत कराएंगे जो शाश्वत है, जो मर्यादा के साक्षात प्रतिमान है, जिनकी कृपा मात्र से मन के सारे संताप मिट जाते हैं। ऐसे करुणा के सागर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में आइए अगला भजन सुनें।

कहते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां प्रार्थना काम आती है। जब दिल से कोई पुकार निकलती है तो वो सीधे उस असीम सत्ता तक पहुंचती है। सुरों के इसी पावन सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आइए एक बार फिर अपने मन को प्रभु की भक्ति के रंग में सराबोर करते हैं और सुनते हैं अगली प्रस्तुति।

श्रोताओं, 6:37 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। श्रोताओं, जो कर्मों के विधाता हैं और जो हर जीव को न्याय की राह दिखाते हैं, उन सूर्य पुत्र शनिदेव की कृपा, उनकी कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए, उसके जीवन के सारे कष्ट और अंधकार दूर हो जाते हैं। आइए इस पावन वेला में नीलांजन, समभासम, परम शांत स्वरूप शनि महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये पावन भजन सुनते हैं।

श्रोताओं, जहां जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहां पवन पुत्र हनुमान अदृश्य रूप से साक्षात विराजमान रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति का वो पावन शिखर है वो, जहां सेवक और स्वामी के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। आइए राम काज में सदैव तत्पर रहने वाले और प्रभु श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हैं।

कहते हैं कि हनुमान जी को पाना है तो राम नाम की ओट ले लो, और अगर श्री राम तक पहुंचना है तो हनुमान जी की शरण में चले जाओ। जिनके रोम रोम में सियाराम बसते हैं और जो प्रभु महिमा के साक्षात प्रतीक हैं, आइए एक और सुरीली भजन के साथ उनका नमन करें।

और श्रोताओं, इसी मधुर भजन के साथ पुष्पांजलि की यात्रा यहीं तक। 7 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद मैं लौटूंगी प्रोग्राम लेकर सदाबहार गीत। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आपने ट्यून किया है 102.2 FM रेनबो कानपुर और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आरजे फरहत। जी हाँ, लेकर हाजिर हूँ एक और नई सुबह, नई एनर्जी और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब के साथ आपका फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। दोस्तों, हर सुबह एक छोटा सा मैसेज लेकर आती है कि कल जो भी हुआ उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज आप क्या करने वाले हैं। और सच कहूं तो लाइफ में हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन हमें एक चांस जरूर देता है कि हम अपनी स्टोरी को थोड़ा और बेटर बना सकते हैं। तो आपके मूड को बेटर बनाने आ रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर का ये पहला सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। एंजॉय करिए गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ, क्योंकि आरजे फरहत है आपके साथ।

मोहित चौहान की ब्यूटीफुल सी आवाज में ये ट्रैक आपने सुना, और अब इस गाने के साथ वक्त है आज के प्रोग्राम से आपको रूबरू कराने का। दोस्तों, एफएम रेनबो आज आपके लिए लेकर आ रहा है सुबह 8:30 से सुरों की पुरानी महफिल, और 9 बजे वक्त होगा प्रोग्राम रस बहार का। साथ ही 9:45 पर विविधा में आज सजेगी गजलों की महफिल, महफिल गजल प्रोग्राम के साथ। और हाँ, 11 बजे लेकर हाजिर होंगे आपका फेवरेट प्रोग्राम हम नवा, जहां आज मेरे साथ स्टूडियो शेयर करेंगी मेरी दोस्त आरजे शिप्रा। और दोस्तों, दिन में 3 बजे से एंजॉय करिएगा प्रोग्राम म्यूजिक आर शिप्रा के साथ, और साथ ही 4 बजे वक्त होगा आपकी मेल पर बेस्ड प्रोग्राम आपकी पसंद का। तो अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए मेल करना मत भूलिएगा। फिलहाल गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में वक्त है आपको मेरी पसंद का एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक सुनाने का। तो कनेक्ट रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: गुड मॉर्निंग, कानपुर प्रोग्राम से कनेक्ट है आप 102.2 FM रेनबो कानपुर की फ्रीक्वेंसी पर। और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी फरहत। और दोस्तों वक्त है मॉर्निंग मंत्रा का। जी हां, और आज का मॉर्निंग मंत्रा कहता है कि आप समुद्र पार नहीं कर सकते जब तक कि किनारे को छोड़ने का साहस नहीं करते। और ये मंत्रा हमें दिया है रवीनाथ टैगोर जी ने। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग सिर्फ इसलिए अपने सपनों की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाते क्योंकि हमें डर लगता है अगर फेल हो गए तो, अगर चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव तब आते हैं जब हम अपने जाने पहचाने दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। याद रखिए, नाव किनारे पर सबसे ज्यादा महफूज है, पर उसे बनाया ही समुद्र में उतरने के लिए किया जाता है ना। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा काम है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं तो शायद यही सही समय है पहला कदम उठाने का। जी हाँ, सो सिंपल आज का मंत्र है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत रखिए क्योंकि दोस्तों तरक्की हमेशा वहीं आपका इंतजार करती है। फिलहाल एंजॉय करिए मेरे साथ ये एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब ले चलती हूँ आपको सोशल मीडिया पोस्ट की जानकारियों की ओर। दोस्तों, एक्स हैंडल पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून यानी कि आज पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। तो किसानों के लिए गुड न्यूज़, और अगली गुड न्यूज़ है हमारे देश के स्टूडेंट्स के लिए।

दोस्तों 21 जून 2026 को होने वाली नीट यानी कि UGC पुनर्परीक्षा से संबंधित अपडेट्स और परीक्षा केंद्र की जानकारी अभ्यर्थियों को सीधे WhatsApp पर भेज रहा है। सोशल मीडिया के इस पोस्ट में बताया गया है कि सत्यापित एंट्री अकाउंट से आने वाले मैसेजेस पर ही भरोसा करें और अननोन लिंक, OTP या भुगतान संबंधित मांग से सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही प्रवेश पत्र केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करने की भी बात कही गई। एंड यस, गुड मॉर्निंग आनवर प्रोग्राम में अगला पोस्ट मैं लेकर आई हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पेज से। और इस पोस्ट के अकॉर्डिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के 14 विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में अपना स्थान बनाया है। जी हाँ, IIT, IISc एंड अदर्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशंस की फील्ड में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करते हुए ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। और दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने इसे भारत के वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। वेल, सोशल मीडिया पर साझा की गई एक और पोस्ट के अनुसार भारत टैक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इस आयोजन में 5500 से अधिक प्रदर्शक, दुनिया भर के ग्लोबल सोर्सिंग लीडर्स और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े लोग एक मंच पर नजर आएंगे। तो इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पोस्ट के साथ अब लेकर चल रही हूँ आपको एक ब्यूटीफुल से ट्रैक की ओर। स्टे ट्यून्ड विद 102.2 FM रेनबो कानपुर।

गुड मॉर्निंग, कानपुर प्रोग्राम चल रहा है, फरहत है आपके साथ और आज है 20 जून। दोस्तों, वैसे तो हर दिन की कुछ खासियत होती है और आज का दिन अतीत के आईने में क्या अहमियत रखता है, एक नज़र इधर भी। वल आज ही के दिन 1877 में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आम लोगों के लिए खोला गया था। उस दौर में ये भारत के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन में गिना जाता था और आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। साल 1837 में आज ही के दिन मात्र 18 वर्ष की एज में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश शासन पर बैठी थी। उनका शासनकाल ब्रिटिश हिस्ट्री के सबसे लंबे और प्रभावशाली कालों में गिना जाता है। भारत के इतिहास की बात करें तो 1947 में बंगाल विधानसभा के प्रस्ताव के बाद पश्चिम बंगाल के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी स्मृति में आज पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, आज ही के दिन पूरी दुनिया विश्व शरणार्थी दिवस मनाती है, जो संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर लोगों के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त करने का अवसर है। जून 1952 को प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार और कवि विक्रम सेठ का जन्म हुआ था। उनकी किताब असुटेबल बॉय अंग्रेजी भाषा के सबसे लंबे उपन्यासकारों में से एक है। और आपको बता दें कि आज ही के दिन जन्मे थे बॉलीवुड के जुबली कुमार, जी हां, अभिनेता राजेंद्र कुमार। और साथ ही देश मना रहा है आज प्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का जन्मदिन। तो ढेर सारी बधाइयों के साथ गुड मॉर्निंग कानपुर का ये गाना आपके लिए।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं या करियर ने नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देश के युवाओं को बूस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ की इंसेंटिव अमाउंट रिलीज की है। इस स्कीम के थ्रू पहली बार फॉर्मल जॉब ज्वाइन करने वाले एलिजिबल ईपीएफओ मेंबर्स को 15,000 तक का इंसेंटिव मिल सकता है। साथ ही जो कंपनीज नए लोगों को हायर करेगी उन्हें भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। कह सकते हैं कि टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की विकसित भारत की असली ताकत है और इसी दम पर 2047 का भारत का सपना साकार होगा। एंड नेक्स्ट खबर है रेल से सफर करने वाले हमारे साथियों के लिए। अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं दोस्तों, तो अब जेब पर पहले से ज्यादा भार पड़ सकता है। रेलवे ने नियमों में बदलाव करते हुए बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो भी पूरा किराया आपसे लिया जाएगा और 500 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और ये नियम 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। रेलवे का कहना है कि इसका मकसद नियमों का पालन सुनिश्चित करना और यात्रियों की सुविधाओं के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देश भर में अब तक 70 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पाने वाले 15 लाख कर्मचारियों और उन्हें रोजगार देने वाले संस्थानों के लिए 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आरबीआई का कहना है कि इन बदलावों से लोन मंजूरी और रीपेमेंट शेड्यूल में एक रूपता आएगी। नए नियमों के तहत शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए क्रॉप सीजन को 12 महीने और लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए 18 महीने तय किए गए हैं। तो इन्हीं अपडेट्स की ओर साथ बने रहिएगा गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ, क्योंकि भाई आ रहा है अगला गाना आपके पास। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग कानपुर 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम से कनेक्ट है आप 102.2 एफएम और रेनबो कानपुर की फ्रीक्वेंसी पर। और दोस्तों आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आरजे फरहत। वेल लव इस प्रोग्राम में आपको लेकर चल रही हूं देश विदेश की इम्पोर्टेंट खबरों की ओर।

गुड मॉर्निंग आरबी प्रोग्राम में अब लेकर चलती हूँ आपको शहर के इम्पोर्टेंट अपडेट्स की ओर। दोस्तों पहली खबर आ रही है हायर एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज से जुड़ी एक खास खबर लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पहली बार बीएससी होम साइंस ऑनर्स कोर्स शुरू किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के अनुरूप तैयार ये 4 वर्षीय जॉब ओरिएंटेड कोर्स होगा, जिसे स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत संचालित किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने इस कोर्स की 40 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। साइंस एग्रीकल्चर और बायोलॉजी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट पास छात्र छात्राएं इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोर्स की एनुअल फी होगी 41,200 रुपये। अगर आप भी इच्छुक हैं इस कोर्स को करने के लिए तो आप www.csjmu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट अपडेट है एचबीटीयू में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। एचबीटीयू में बीटेक और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए चल रही प्रथम चरण की काउंसलिंग में छात्रों ने उत्साह के साथ रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है। विश्वविद्यालय की 972 यानी कि 972 बीटेक सीटों के मुकाबले अब तक 4,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि चॉइस फिलिंग के दौरान कई छात्र सामान्य गलतियां कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी पसंद और विवरण सावधानी से भरने की सलाह दी गई। प्रथम चरण की सीट एलोमेंट लिस्ट 24 जून को जारी की जाएगी। इसके बाद छात्रों को आगे की एडमिशन प्रोसेस पूरी करनी होगी। और हाँ, जनगणना 2027 से जुड़ा एक अहम अपडेट। जनगणना 2027 के तहत चल रही हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया दोस्तों अब पूरी हो चुकी है। प्रशासन के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, नगर निगम के भी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को उनका सर्वेक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। और अपने शहर के लास्ट अपडेट में लेकर आई हूँ दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी कि एलएमको ने कानपुर में देश के पहले एटी मार्ट की शुरुआत की है। स्वरूप नगर में मोतीझील मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एटी मार्ट का शुभारंभ आज किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध कराना। आपको बता दें कि ये पहल भारत सरकार की दिव्यांग सहायता योजना के तहत शुरू किया गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्वक सुविधाएं मिल सकें।

वेल, आप उठाइए इसका फायदा अगर आप हैं। इन सभी योजनाओं के लिए, इन सभी अपडेट्स के लिए जागरूक तो बने रहिए गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ, क्योंकि और भी न्यूज हमारे क्यू में है और हम बताएंगे आपको इसके आगे, इस गाने के बाद खेल जगत से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें।

सनम रिमूवी के इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ अब बढ़ते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग में आगे और आपको बताते हैं खेलों से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। दोस्तों अगर

अगर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं ना, तो ये खबर स्पेशली आपके लिए है। भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर चुकी भारतीय टीम अब क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी। जी हाँ, भारत अब अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज खेला जाएगा। शुरुआती दोनों मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर चुकी है और अब उसकी नजरें क्लीन स्वीप पर टिकी हुई है। इस मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पर रहेंगी। राहुल से एक और बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वही युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के लिए हम मैच अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रोमांच जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 19 जून को खेले गए मुकाबले में दोनों टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। ग्रुप ए के मुकाबले में मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर नॉकआउट दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं ग्रुप जी में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया और इस जीत के साथ अमेरिका टीम ने नॉकआउट राउंड का पहला टिकट हासिल कर लिया है। अगले मुकाबले की अगर बात करें तो आज मैच खेला जाएगा अमेरिका बनाम ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड बनाम मैक्सिको, ब्राजील बनाम हैती और तुर्की बनाम पैराग्वे, साथ ही नीदरलैंड बनाम स्वीडन के बीच। तो मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, बने रहेगा फीफा वर्ल्ड कप के साथ। और हाँ, जब बातें इतनी हो रही हैं तो आपको बता दें कानपुर महिला क्रिकेट लीग में जैम स्ट्राइकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में जैम स्ट्राइकर ने अपनी एकादश को 16 रन से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया है। इस खेल में निशा की दमदार बल्लेबाजी और सौम्या के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत जैम स्ट्राइकर ने खिताबी मुकाबले में जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो इन सभी प्राउड मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने का वक्त है, तो सेलिब्रेट करते हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ आपको एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक सुनाकर। जी हाँ, रहा एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, एंजॉय करते रहिए गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, और अब वक्त है प्रोग्राम में हाल है मौसम का। तो दोस्तों, मौसम का मिजाज क्या कहता है, आज घर से बाहर निकलते वक्त क्या साथ रखना है, सन ग्लासेस या छाता? वेल, लगता है कि मौसम दोनों की ही तैयारी करवाना चाहता है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज कानपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, दोपहर बाद या शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है। वैसे फुहारे गर्मी से कुछ राहत दे सकती हैं। सो कानपुर, टुडेज वेदर इज लुकिंग लाइक अ परफेक्ट मिक्स, थोड़ी धूप, थोड़े बादल और बारिश की हल्की सी उम्मीद। अब देखते हैं कि ये दिन मौसम के किस रंग में रंगता है। फिलहाल आपको अपने रंग में रंगने आ रहा है ये अपकमिंग ट्रैक, एंजॉय करिए गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ।

इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ ही गुड मॉर्निंग कानपुर से अब उसको वाइंड अप करने का वक्त आ गया है दोस्तों। मैं जाने से पहले कहना चाहूँगी कि सुबह की चाय ख़त्म हो सकती है, अखबार पुराना हो सकता है, लेकिन अच्छे ख्यालों की एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसलिए पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अपने दिन को बेहतरीन बनाइए। मैं आज फरहत लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हाँ, बने रहेगा 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो नीरोग। करो योग, रहो नीरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे

0: विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है
3: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे
4: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा परिवहन स्वास्थ्य शिक्षा सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे रायरंगपुर से प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार
3: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी ब्यौरा हमारी संवाददाता से
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे संदीपन दासगुप्त के साथ काश्मीर नहार आकाशवाणी कोलकाता
3: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख

0: क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: We have been able to achieve that in the first.
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: They are all designed in India now.
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी

एफएम रेनबो से कनेक्ट है आप 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। कुछ नगमे वक्त के साथ पुराने जरूर हो जाते हैं, मगर उनकी खुशबू दिल से कभी रुखसत नहीं होती। इन्हीं यादों इन्हीं

लेकर हाजिर हूँ सुरों की पुरानी महफिल। और इस महफिल का पहला नगमा किशोर कुमार की आवाज में, लीजिए सुनिए।

मुझे इश्क है तुझी से, बेहद खूबसूरत गाना ये आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी की दिलकश आवाज़ में रवि का संगीत और बोल थे शकील बदायूनी के। और अब प्रोग्राम में अगली आवाज़ आप सुनेंगे आशा भोसले की फिल्म उमराव जान से।

आप एंजॉय कर रहे हैं सुरों की पुरानी महफिल, और अब पेश है लता मंगेशकर की आवाज़ में अगला गीत। म्यूज़िक रवि का है और लिरिक्स साहिर लुधियानवी के।

तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है जी बिल्कुल। ये गीत, ये लिरिक्स, ये बोल बिल्कुल सही कहते हैं कि आपका जो शामिल होना हमारी ज़िंदगी में है वो सिर्फ़ एक इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, वो आपका और हमारे दिल का मिलन है। जी हाँ, बस यूं ही अपना प्यार अपना साथ बनाए रखिए सुरों की पुरानी महफिल में, यूं ही रंग सजाए रखिए। फ़िलहाल प्रोग्राम से आरजे फरहत को दीजिए इजाज़त और अगले प्रोग्राम रस बहार का कीजिए इंतज़ार।

मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और वो मोड़ रसबहार प्रोग्राम के साथ लेकर आ गई हूँ मैं फरहत, 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज है 20 जून, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और हम जब भी रिफ्यूजी शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में सरहदी नक्शे और दूर देशों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन आज के रसबहार में मैं इस शब्द को एक अलग नज़र से देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो ज़िंदगी में हम सब कहीं ना कहीं मुसाफिर हैं। बचपन से जवानी तक का सफ़र, एक क्लास से दूसरी क्लास तक का सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र, और कभी कभी एक रिश्ते से दूसरे याद तक का सफ़र। यकीन मानिए, इस सफ़र में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा साथ चलती है वो है यादें। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं यादों को समेटते हुए चलते हैं एक नए सफ़र की ओर।

जिंदगी का पहला सफर शायद तब शुरू होता है जब बचपन धीरे धीरे हाथ छोड़ने लगता है। एक वक्त था जब गर्मी की छुट्टियां खत्म ही नहीं होती थी। नानी के घर जाने की खुशी, गली का क्रिकेट, छत पर बिछी चारपाई और रात को तारों को देखते हुए नींद का आ जाना। तब कहाँ पता था कि एक दिन यही सब हमारी सबसे कीमती यादें बन जाएंगी, है ना। और शायद दोस्तों जिंदगी का पहला बिछड़ना बचपन से ही होता है। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन दिल का एक हिस्सा हमेशा उसी पुराने आंगन में बैठा रह जाता है।

रस बाहर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर से आरजे परहत के साथ। और दोस्तों, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पर बातें कर रही हूं मैं, जिंदगी के उस सफर की जहां हम सब मुसाफिर हैं। दोस्तों, इस सफर पर एक दिन जिंदगी हमें घर से थोड़ा दूर ले जाती है। किसी का कॉलेज दूसरे शहर में होता है, किसी की नौकरी, किसी का ट्रांसफर, और उस दिन पहली बार एहसास होता है कि घर वो जगह नहीं थी जहां हम रहते थे। एक्चुअली घर वो लोग थे जो हमारा इंतजार करते थे। माँ का वो रोज पूछना खाना खाया, और पापा का वो कहना अपना ध्यान रखना। दोस्तों, इनकी कीमत तब समझ आती है जब हम इनसे दूर हो जाते हैं, या यूं कहें कि हम अपनों से, अपने घर से रिफ्यूजी हो जाते हैं, है ना।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: आपकी

आप सुन रहे हैं रसबहार 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। और दोस्तों, आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पर दुनिया भर में उन लोगों को याद किया जाता है जिन्हें हालात ने अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल, वॉयलेंस और क्राइसिस की वजह से अपने घरों से दूर रह रहे हैं। लेकिन जब हम इन आंकड़ों को सुनते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि हर संख्या के पीछे एक कहानी होती है, किसी माँ की, किसी बच्चे की, किसी परिवार की, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है और उम्मीद भी। और शायद इसी उम्मीद की वजह से इंसान हर मुश्किल के बाद फिर से उठ खड़ा होता है।

दोस्तों, आज है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, और इस रिफ्यूजी डे पर अगर फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड ने भी इस एहसास को कई बार बहुत खूबसूरती से फिल्मों में दिखाया। फिर चाहे स्वदेश का मोहन हो, डंकी का दोस्त, या फिर वीर ज़ारा की मोहब्बत, हर कहानी एक ही बात कहती है, दिल के कुछ रिश्ते पासपोर्ट से बड़े होते हैं, है ना।

जी हाँ दोस्तों, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि अपने देश से, अपनी मिट्टी से जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वेल रस बाहर प्रोग्राम में रिफ्यूजी डे पर अगर हम गर्ल्स की बात करें, तो उनके एक घर से निकलकर दूसरे घर तक जाने का सफ़र सिर्फ दूरी का सफ़र नहीं, ये फीलिंग्स का सफ़र है। और ये सफ़र ऐसा होता है जो एक लड़की अपनी विदाई के दिन तय करती है। घर वही रहता है, कमरा वही रहता है, लेकिन उस कमरे में रहने वाली बेटी किसी और घर की कहानी बन जाती है। शायद दुनिया का सबसे इमोशनल सफर वही होता है जहां दूरी कम और भावनाएं ज्यादा होती है।

दोस्तों, वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं और शहर बदलते हैं, और बदलते वक्त के साथ हम नए शहरों में घर बना लेते हैं, साथ ही नई नए दोस्त, नई आदतें और नई यादें भी। लेकिन दोस्तों, पुरानी यादों का किराया कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमारे साथ चलती रहती है, किसी पुराने गाने में, किसी तस्वीर में, या अचानक आई किसी खुशबू में।

आँखों में तेरा ही चेहरा, जी हाँ, जब वो आँखें हमें याद आती हैं तो हम फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ अनगिनत यादें बिखरी पड़ी हैं और शायद इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहना, बदलते रहना, नए लोगों को अपना बनाना, नए शहर में अपनी जगह बनाना, एक नई कहानी लिखना और फिर भी अपने अंदर कुछ यादों को बचा कर रखना। दोस्तों, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हमें सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं सुनाता जो अपना घर छोड़ चुके हैं, ये हमें अपने घर, अपने लोगों, अपने रिश्तों की कीमत भी याद दिलाता है, क्योंकि हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पल ज़रूर आता है जब हम खुद को एक मुसाफिर महसूस करते हैं।

दोस्तों, वर्ड रिफ्यूजी जी हमें सिर्फ उन लोगों की याद नहीं दिलाता जो अपने घर से दूर हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अगर आज हमारे पास लौटने के लिए कोई घर है, इंतज़ार करने वाले लोग हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और जो लोग अपने घरों से दूर हैं, उनके लिए एक दुआ, एक मोहब्बत, एक इंसानियत भरा दिल हमेशा होना चाहिए, जो शायद कह रहा हो हम

दोस्तों, आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पर अगर एक बात याद रखें तो शायद ये हर इंसान की किसी न किसी सफ़र की कहानी है। कोई अपना शहर ढूंढ रहा है, कोई अपना घर, तो कोई अपनी पहचान। इसलिए जब आप किसी से मिले तो उसकी कहानी समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो भी ज़िंदगी के किसी लंबे सफ़र का मुसाफिर हो। 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आज का रसबहार बस इतना ही। मैं हूँ आपके फरहत, फिर मिलूँगी आपसे किसी नए एहसास, नए सफ़र और कुछ नए सुरों के साथ। अपना ख्याल रखिए और हाँ, इंतज़ार कीजिए हमारे अगले प्रोग्राम का।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भेजेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4,352.40 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त वितरण के दौरान झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे। मुख्यमंत्री यूपी एग्रीज परियोजना खरीफ संस्करण का शुभारंभ भी करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने

वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिस बल और प्रशासकों सहित पुलिस बल और प्रशासकों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे की रणनीति तैयार की गई। श्री नड्डा ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में समाप्त होने वाला टीबी मुक्त भारत अभियान का दूसरा चरण हर छूटे हुए मामले की पहचान करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि देश में टीबी की दर 2014 में 243 मामलों से घटकर 2024 में 187 हो गई है। श्री नड्डा ने कहा कि टीबी से होने वाली मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला ने नाम भरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: सात रंग का इंद्रधनुष है,
8: सात सुरों की सरगम है,
9: सात जन्म है सात समंदर,
7: साथ हमारा हरदम है।
9: जिंदगी के सतरंगी रंग
8: FM रेनबो के संग।

0: सौ दशमलव सात एफ एम रेनबो सुनने वाले श्रोतन का हमार प्रणाम राम राम। छुटकन का स्नेह ने हम आए गई है तोहार सबके लगे आपकी आपन एफ एम रेनबो की रत्ना शुक्ला। और भैया बहने आपाऊ जाने ले कि आज हमरो भाग नी का है काहे से कि हमारे बीच एक बहुत ही खास गुणी रंगमंच और बहुत सारे नाटक में बहुत सारे बहुत तेरे वेब सीरीज में काम करे वाले गुणी अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं। तो जाने तो हम का कही यू अतिथि के स्वागत में हम यू कहे चाहते हैं कि आपका यहाँ आवब ठीक वैसन आहे जैसे जेठ की दोपहरिया माँ कौनो नीम केरी ठंडी छाए। और जब नीम केरी ठंडी छाव मिल जाए या सावन में पहली फुहार से माटी महक जाए ऐसा कछु महसूस होते यू टूडियो माँ ई बखत तो अब हम आवाज दे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हम बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं एफएम रेनबो के कार्यक्रम जिसका नाम है सुगंध माटी के। मैं तो जाना तो भैया बहने आप अतिथि कौन है हमारे बीच। यू हैं गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया हमारे बीच में आए गए तो चलो इनका आवाज देके हम बुलाए ले भैया हमारे तनिक कतिया यहाँ आईसीआईसी चले आइए। गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया हमारे बीच आ गए हैं और ढेर सारी गोट बात कर अब उनकी जिंदगी के किस्सा गांव के लिए खुशबू का और महकाऊ। तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया कैसे हो आप।
1: बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपके यहाँ कि हमका यहाँ बुलायो। हाँ। हमका बड़ा नीक लग रहा है।
0: अरे कैसे नहीं बुलाते भैया काहे से कि इतने गुणी जन हो आते इतनी जगह अपन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे तो आपके बुलाए का तो हमारा फर्ज है।
1: हाँ बिल्कुल बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और एक बाद आपका एक अलग जो पहचान है जो उन्हें लखनऊ में आपका पहचान थे चिन्हित है वो हम बताई दे जा रहे थे
1: जी।
0: तो हम बताए आप सबका बता दें कि एक नाम है जो लखनऊ में लोग पहचानत है श्री सुनील कुमार दीक्षित जी हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं मेहमान हैं हमारे। और इनके पहचान बहुत सारे नाटक में और वेब सीरीज में और बहुत सारे विज्ञापनों में काम करीन हैं तो इनकी आवाज कब्बो कब्बो आप सुने होंगे लेकिन आज ये हमारे बीच बुला रहे हैं तो चलो गेंदालाल भैया से पूछा जाए कि इनके यहाँ आए के एफएम रेनबो स्टूडियो में आए के सफर कैसा रहा।
1: बहुत ही बढ़िया रहा सफर। हम आज पूरे गांव में यहाँ सबका बतावा कि हम जो है हम स्टूडियो जा रहे हैं।
0: अच्छा?
1: कहीं तुम्हार हाँ कहीं तुम्हार हुआ का काम भैया।
0: अच्छा
1: है? हाँ। तुम खेते जाते हुआ बागे जाते हुआ तुम जाए तुम का करियो
0: स्टूडियो में जाके का करियो।
1: हाँ।
0: अच्छा
1: हम कहा तू हमारा नाटक वाटक देखे नहीं लग रहा है कबू आओ सारे हमने देखो आए तुमका मजा आई। अच्छा सब पूरा गाँव हमका छोड़े आवा।
0: अच्छा
1: अब हम ई कंफ्यूजन में यहाँ कि हमका ये खुशी तेरे छोड़े आए हैं।
0: हाँ।
1: ये ई मारे हैं कि दोबारा गांव में ना आ जाओ भैया बताए दिन तुमते। हाँ
0: और लियो आप पर जियो की बात अब हमका बता दियो साची साची बात बताए ये कि हमका खुशी है कैसे कि जब ललनपुर आप छोड़त रही हो यहाँ स्टूडियो आए खातिर अब उनके सब स्टूडियो का नाम पता है कि कौन ठिकाने जा रहे हो।
1: अरे हम बताए कहें सबका।
0: अच्छा
1: और सब रेडियो तेरे कान लगाए ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं।
0: अच्छा बाजे लेके बैठे हुए हैं
1: और का
0: अरे दैया
1: थोड़े सोचा तेरे हम शहीद में जा रहे हैं हमका बना रहे उल्लू।
0: अच्छा
1: नहीं भैया जा रहे हैं ना हो तुमका यकीन तो लगाए रेडियो बैठो देखो।
0: अच्छा यू आप बहुत अच्छा रास्ता बताए के आए हो। और ये बताओ आप गेंदा लाल भैया कि जब आप आवत रहे हो तो कोनो सामान मान दीन। अच्छा चलो ये बात में एक गौनई के बात कही करब है।
1: हाँ, हाँ।
0: कि कौन कौन चीज स्टूडियो में आप लेके आए हो और कौन कौन चीज आपका आते वक्त वो दीन की चलो भैया हमारे ये चीज ले जाओ वहां जाके दिखाए दो तनिक कोई के बारे में बताए दो। हाँ। तो ये सब बात करब लेकिन ये गौनई के बाद है।

तभी सभी सभी श्रोता पंचर का एक बार दोबारा बताई देव कि कार्यक्रम चल रहा है 100.7 FM यानी कि 100.7 FM रेनबो पर सुगंध माटी की। और आज हमारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं, हमारे अतिथि गेंदालाल ललनपुर वाले भैया। और ये भैया जब आवत रहे तो ये बताई ना कि हमका छोड़े सभी गांव वाले सभी मनई लड़का बच्चा मेरा रू सब आई रही कि भाई आज नीक नीक

0: हम खातिन जा रहे हैं एफएम स्टूडियो, एफएम स्टूडियो में जाके काका बत कहीं करब ये सब सुनत हुई है, जैसा कि हम हमरे भैया बताएं। तो अब यू बताओ भैया कि जब आप आवत रहे तो सब छोड़े आए, छोड़े के बाद का कछु तुमका गठरिया मुठरिया बांध के झोरा वरा कछु दिहिन की चलो यू वहां पहुंचा देओ, चाहे पहुंचावे के साथ साथ यू कछु खाए ले और नीक नीक बत कही करो, हमारे लोगों के नाम ले लियो, ऐसा कुछ भावा कि नहीं भावा?
1: अरे काहे नहीं भावा भैया, हमारे एक बहुत बचपन के दोस्त है कलुआ नाम का।
0: अच्छा
1: ऐसा का हो जिससे आप कहियो कलुआ काहे कहो?
0: अच्छा।
1: हम का जो है का नाम अनुजो बोल सकित रहा है।
0: हाँ।
1: लेकिन का है हमारे गांव जवार में यहाँ का होता ना कि जिससे कोई के नाम मालो दुलारे है।
0: हाँ।
1: तो वो इतने प्रेम भाव तो बुलाई है। हाँ। तो कैसे ए दुलरुआ तो वो दुलरुआ कहना तो ठीक है लेकिन हाँ। उसका पीछे वो तो आत्मीयता जो भाव रहता ना
0: अपनत्व की बात कर
1: बस, हाँ बस उसका हाँ, अपनत्व तो रहता है
0: का बात कही
1: भले हाँ। बड़े की मात्रा लगाए दिन कोई बात नहीं लेकिन हाँ। वो अपनत्व झलकत है। हाँ भैया हाँ।
0: वो बहुत जरूरी है काहे से कि जब अपनत्व रहे प्यार स्नेह रहे मोहब्बत रहे तब सब भाईचारा के साथ साथ दुनिया बहुत नीक लागत
1: बहुत नीक लागत है। तो हमारे दोस्त फिर हमका जो है गठरिया दिन
0: अच्छा
1: वो जान तो हमारे गांव जो एक परंपरा है कि जाओ तो जोन इस समय जोन प्रसिद्ध होए वो ले जाए चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो इस समय जो है भैया जून महीना और आम बिल्कुल पकत रहा है एक दो टपका वाला।
0: हम काहे पूछा तो उसे बात जानते हो
1: हाँ।
0: काहे से कि हमका खुशबू आवत रही कि कौन चीज लाई के आए हैं यू बैग में यू गठरिया में तो हम कहे लाओ पूछा ही लई है ना।
1: हम बस हाँ। दिखावे वाले रहन कि हमका बिल्कुल खुदे डारते तोरिक लाए हैं
0: हाँ डाल के आम के तो अच्छा का पहले पानी में भिगाई दे तैयार
1: पहले कहा तुम पानी मुझे ठंडा हो जाए गर्म हो ना बादी हो थे एकदम दिखा लो तो हाजमो खराब हो सकत है। तो वैसे हम नीक काम करे कहीं ले हम कैसा हम खिला दें तो पहले तो लोग ठंडा जाए फिर
0: हाँ, हम हमारी दादी बतावत रही कि पहले पानी में तनिक भिगोए के
1: हाँ,
0: के बाद ठंडा करके खाओ हाँ, हाँ फिर आम वाम सब झोरा में भरिन
1: हाँ, फिर कहीं भैया वहाँ जाओ और सबका आम खवायो।
0: अच्छा।
1: तो हमका वहाँ प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि वहाँ सबका आम खवाई जाए
0: साची बात है।
1: हाँ। स्टूडियो में यहाँ जाए वहाँ ऐसे कोई लेके नहीं जाए पर वहाँ
0: हाँ।
1: खावत खड़े होते
0: हाँ।
1: सब गंदगी फैल जाए। अरे कहीं जब प्रोग्राम खत्म हो जाए
0: अच्छा
1: तब आराम से बैठ कहूँ खाई पी एक जगह तो हुई ना हुआ
0: हाँ, हाँ, बाहर है
1: हाँ तो है या हम देखा हुआ कहीं बस हुए जाओ और काट पीट बढ़िया खवायो सबका। हम कहा यू ठीक कहो तुम हम तुम्हारे नाम जो है सही वाला हुआ ले आप कि जो है ताकि तुमका ना लगे कि हम का हूँ वही नाम तो बुला रहे कलुआ कलुआ हम का नहीं तुम्हारा नाम बताए कि हम अनुज भैया दीन है।
0: अरे बात अनुज भैया तो मुस्कुरावत हुई है ये है?
1: कान लगाए सुनने हुई है कि अच्छा चलो ठीक हमारा नाम तो ले लें कम से कम।
0: अरे जो कनकुटुफुआ है ना ये यू कनकुटुफुआ जो आपाउ लगाए हमाउ लगाए तो यू गांव में तो जानत ना हुई है सब क्या होते हैं
1: इतना नहीं पता उनका। अब यह तो है कि हमारे सबकी आवाज तो पहुंच जाते हैं लेकिन अब कहाँ वो देख सकते हैं।
0: हाँ तो चलो अब इसके बारे में वही का बता दियो उसके साथ साथ तुम्हार फोटो हम खींच के अब आपका दे दियो
1: हाँ।
0: तो वो सब सब जने को दिखाई दियो
1: हाँ बिल्कुल और आपको दिखाई भी जाएगा
0: कि कंटोफा में बोल के बहुत नीक लागत है हमारे गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया आज अतिथि बन के हमारे कार्यक्रम में पधारेन है। तो चलो ये जो कठरिया मुठरिया लेके आए और बहुत देसी आम की जो बात कर दी की वही की खुशबू हम पहचान ली तब तो हम पूछे की यू मैं का लाए हो गाँव वाले जन का भेजने तो कलुआ भैया है और अनुज भैया सब तो बहुत खुश हुए
1: बिल्कुल
0: खुशी मनावत हुई यहाँ तो यहाँ से जावे के बाद काका उनके सिखावे बताएवे का वो हम तुमका बताई ठीक है
1: ठीक।
0: और जौन तुम्हार पसंद के गवना ही है यू हम तुम तक पहुँचा दी
1: हाँ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
4: श्रोता पंचन, आप सबका फिर से बताई दे कि 100.7 FM Rainbow पर कार्यक्रम चलाते सुगंध माटी की और सुगंध माटी की कार्यक्रम हम अपने अतिथि का स्वागत कर ली है, जो है कौन जाना तो कि नहीं, अरे याद कर ले के बारे में हम बात कर रहे थे। हमार अतिथि आज बाटे गेंदालाल ललनपुर वाले भैया, और एक हम जब स्वागत कर लिए, खाए पिए की बात कर लिए, अब बहुत जरूरी संदेश और बहुत जरूरी बात हम करे जा रहे हैं। कहते कि का गांव का शहर सब कहूं फहराउत रहियो यो केरी लहर। और सभी जानत हो कि योग सप्ताह मनावा जा रहा है, कल है योग दिवस, 21 जून की हम बात कर रहे थे भैया, जानते हो?
5: हाँ बिल्कुल जानते हैं।
4: हाँ तो हमको जिज्जी बताती रही, गांव में आई रही कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में योग सप्ताह चलत है यू, और ईद नन माओ 15 से 21 जून तक देश भर में योग सप्ताह आयोजित करे हैं। तो स्वास्थ्य के खातिर, स्वस्थ आयु के खातिर यू योग जौन हमारा पुरान पुरखन भी अगर पाछे की पीढ़ी में हम देखी तो वहाँ वहू योग करत रहे। आपहू के परिवार में जैसे योग की बात अगर करें तो गांव में लंबे लंबे चले जा रहे हैं।
5: हाँ।
4: कहूँ के बुआई है, कहूँ कटाई है, कहीं वही के साथ साथ बुआई है, ये सब करे खाते ना हो गाँव के दुहा के शुद्ध दूध है।
5: हाँ।
4: और लस्सी है, मट्ठा है, वही के बाद बहुत चीज शुद्ध शुद्ध होते हैं और ये सब करके के बाद तनिक वर्जिश वर्जिश करते हैं। तो आपन परिवार में कोनो को देखे हो का भैया कि वर्जिश करत रहे या कोनो योग वोग मनावत करत रहे, ऐसा कोनो देखे हो आप?
5: हम तो समझ लो कि प्राकृतिक रूप से देखा है।
4: अच्छा, यू कैसे?
5: अब हिया देख लो, हिया लगा दिन बटन ऑन। हाँ। के वो पानी धर देगा।
4: हाँ।
5: अब गांव में यहाँ पानी निकाल रस्सी तरह बाल्टी खींचे धर के।
4: हाँ।
5: तो हमारे जो गांव पानी निकालत रहे ये यही गाड़ी रहे।
4: अच्छा।
5: रस्सी से बार बार जब उठाइयो खींचो तो वर्जिश वैसे हो जाता
4: है। कुआं तेरे का?
5: कुआं तेरे।
4: अच्छा।
5: अब क्या है, अब तो कुओं में यहाँ समरसिबल लग गया, अब जैसे बटन दान को फट दे जो है वो पानी आ जाते हैं तो वह वर्जिश अब कम हो गए। लेकिन जैसे हिया है कोई सामान लेके होए गाड़ी उठावा चले गए।
4: हाँ।
5: लेकिन गांव में अब हूँ तुम 2-4 किलोमीटर जाए पड़ते
4: तो फटफटिया के चलन कम है। क्या हुआ?
5: आदमी कहा पहले टहटे मेड़े मेड़े चले जाओ, छाव है, है सब बाग है, खेत है, मेड़े मेड़े चले जा रहे हैं वहाँ। हाँ। सामान लाए पैदल चले आए, अच्छा खासा वर्जित। हम तो देखा है गाँव में अब बहुत कम है लोग इनका पेट निकरा हुई नहीं।
4: अच्छा।
5: डॉक्टरों खुद कहा भैया पेट ना निकले चाहिए।
4: हाँ।
5: तो अब योग कहा खाते, अब अगर तुम रोज योगा करो।
4: हाँ।
5: कहा ध्यान अनुलोम विलोम करो, इतने जो है सांस जो है सुरक्षित रहते है और आपका जो है मन एकाग्र हो जाते हैं।
4: जिज्जी बतावत रही भ्रामरी कौन होते?
5: भ्रामरी करे चाहिए।
4: अच्छा।
5: पहले अनुलोम विलोम करो फिर भ्रामरी करो, पूरा मन एकदम शांत हो जाते है।
4: अच्छा।
5: 5 मिनट के देखो सारी टेंशन है खत्म।
4: अब
5: हाँ मेडिटेशन मेडिटेशन, अरे तो भ्रमरी करके देखो अच्छा खासा मेडिटेशन हो जाते। वो आदमी का खुद ही करे परी कि जो है वहाँ अब हम दिन भर गाड़ी।
4: अच्छा, अगर हम कह दे कि हम आज तनिक व्यस्त हैं तो भैया ये कर निपटा लियो, कर लियो काम हमारे पास चले थे
5: ना, ऐसे हो तो ना चाहिए, कर तो है लोग।
4: हाँ।
5: अरे आज नहीं कल के लेवे।
4: अच्छा।
5: तो कल का है टारो, अपने खातिन अपने शरीर खातिन 5 मिनट आदमी निकल रह सके थे।
4: हाँ, यू तो बात सच।
5: मान लो 9-10 बजे जाए तुमका कहूँ काम तेरे तो सुबह सुबह उठो जल्दी उठ जाओ एकदम।
4: अच्छा।
5: लेकिन उस सुबह की नींद न खराब होए।
4: हाँ।
5: योग हो चाहे ना हो, लेकिन नहीं भैया योग दिवस है तो भैया करे तो परी।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: तो कल योग दिवस के चक्कर में आज आ जाऊं, हम सुना रहा कि सवेरे सवेरे कहूं कहूं आयोजन चलत रहा।
5: हाँ, आज हमारे रहन तो कई सारे पार्क हमका रास्ते में दिखे। अच्छा, हिया देखो पार्क में लोग जाते, हमारे गाँव में कोई चिंता नहीं है, चले के पीछे बाघ है अपना वही फैलाएंगे बुढ़िया।

0: आदर हाँ। बढ़िया कह रही हो सब तरफ यहाँ एसी में बैठ गए हाँ। ठंडा ठंडा कुआ का है तो पसीना निकला बागे चले जाओ तरीक हवा चल तब बढ़िया एसी फेल हो के आगे।
1: अच्छा ठंडी मशीन की बात कर रहा था
0: और का ठंडी मशीन
1: हाँ ठंडी मशीन या देखो ऐसी देखो भैया का लागी सुफे सुफे दी
0: अब इतनी देर बाद बाहर निकलो देखो जब धूप पड़ी तब अरे काहे बैठ गए यहाँ ठीक रहा है क्योंकि पेड़ नीचे बैठ जाए तो ठीक रहते
1: हैं। हाँ यो बहुत नीक नीक अच्छी बात बता दियो कि कहते कि ओरिजिनल वहाँ पर योग देखा है आप है?
0: हाँ ये तो है ओरिजिनल हाँ, देखा हाँ। अब वो जैसे वो पानी लगावे गए कहने हम जाने खेते और हाँ। दोपहरिया दिन में दोपहरिया में पानी लगावे खेत गए
1: हाँ।
0: अब सोचो जब खेत फरुआ चली है उसे फावड़ा चल चलावत है
1: हाँ, हाँ।
0: तो बढ़िया पानी निकल तो दस दस चलाइन सांस फूल गया हो गई योग
1: हो गई योग
0: प्राकृतिक रूप से देखोगे तो काम करत करते योग हो जाते हैं। और यहाँ शहर में आदमी गवा एसी में कुर्सी बैठ गया उठा नहीं रहा तो पेट कहा यही बार निकल
1: हाँ, तो यानी मोटापा कम देखा के मिला था गाँव में
0: हमका तो देखा यहाँ देखा बहुत कम है होते है लेकिन अब दूध दही खाइए आदमी थोड़ा बहुत तो मोट हो जाए।

0: फावड़ा चल चलावत है
1: हाँ, हाँ,
0: तो बढ़िया पानी निकल तो दस दस चलाइन सांस फूल गया हो गई योग
1: हुई गई योग
0: प्राकृतिक रूप से देखोगे तो काम करत करत योग हो जाते हैं। और यहाँ सार में आदमी गवा एसी में कुर्सी बैठ गया वही उठा नहीं रहा तो पेट का है यही बार निकल जाओ
1: हाँ तो मत यानी मोटापा कम देखा के मिला था गाँव में
0: हमका तो देखा यहाँ देखा बहुत कम है होते है लेकिन अब दूध दही खाई आदमी थोड़ा बहुत तो मोट हो जाए
1: पेवर जो होते हैं
0: अरे पेवर सही बताए शहर का आदमी अगर एकदम एक दूध पी ले तो हाजमा खराब हो जाए।
1: अच्छा
0: अब तो हिया का है तो कहो चाहे ना कहो पानी तो कहूं को मिलाए देते
1: कहूं को मिला थे हाँ, हाँ, हाँ, हम माने थे
0: तीन कप दूध डालो तो कहो चाय बने
1: हाँ।
0: गांव में आधे कप डाल दो पूरा बढ़िया सफेद सफेद चाय बन जाती।
1: अच्छा
0: क्योंकि पेवर भाई भाई गैया दूध दे के लाए वो है हाँ। को पानी मिलावत ना हम तो एक दिन पी लिया हमारा दो दिन हजमा खराब रहा।
1: अरे दैया
0: हम फिर कहा फिर बाबत हम पूछा हमने काका तेरे हमका का है कहीं तो हुआ पैकेट वाला दूध ले थे लखनऊ में शहर में
1: भर को लड़वड़ा दिया और
0: पानी मिलाओ आधा गिलास दूध आधा पानी तब पियो नहीं खराब हुई। हम कहा यू तो बढ़िया बताए तुम।
1: अच्छा तो यू जन एक संदेश हो गया हमारे श्रोतन के लिए
0: वैसे जो नहीं करते भैया उनका करेक्ट चाहिए और वो आदत पर जो की बात तो बातें अलग है
1: बातें अलग है तो ना स्वास्थ्य आयु के लिए योग करत रहो भैया और जाने हो बचपन से सीखे अगर योग तो बहुत ही नीक है सीखे के अगर गांव में तो अपन आप हो जाते जैसे भैया बतावा वही के बाद अगर शहरों में रहो तो स्कूल की पढ़ाई लिखाई के साथ योग करे के चाहे बचपन हो चाहे फिर आगे बढ़ के उम्र हो है ना।
0: हमारे स्कूल के गुरु जी बताए सूर्य नमस्कार तो जरूर करे चाहिए।
1: अच्छा
0: आठ दस योग होते ना मिलाए कि सूर्य नमस्कार हो तो वहाँ बढ़िया बुरा शरीर जो है स्वस्थ रहा है। कहा तू हमू किया तो हमको समझ में आवा कि नहीं बात तो खैर सही करें कि सूर्य नमस्कार करो तो बढ़िया बढ़िया योगा हो जाए।
1: हम क्या सिखाइयो तुम कैसे होते हैं
0: अरे हम कर बहुत नीचे आवत है
1: अरे बात हम सीखा ठीक है
0: बिल्कुल।
1: तो चलो आप सभी लोग योग से जुड़ो और कल योग दिवस मनावा जाए वही के साथ वही के संदेश वही के बारे में जान लियो आप सब हम बात कही करत रहे कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ हमरे गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया से। तो यू सब बातन के बाद अब एक बढ़िया बढ़िया नीक नीक गीत तुम सबका हम पठे दी वही के बाद फिर मिलते हैं बने रहो 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: हमारा अतिथि आज कार्यक्रम सुगंध माटी के में हमारे बीच में है, जिनका नाम है गेंदालाल ललनपुर वाले भैया। भैया मजा आ रहा है कार्यक्रम में कि नहीं?
1: बहुत मजा आ रहा है,
0: बहुत मजा आ रहा है। तो फिर हम का लगा था कि श्रोता पंचर भी बहुत खुश हो, तो वही है
1: हम यह सोच रहे हैं, हमका तो मजा आ रहा है लेकिन हाँ। हमका लग रहा है कि श्रोता लोग जरा मजा आवे तो दादा ठीक है।
0: हाँ अरे सब बताइए अभी मेल करके। हाँ अच्छा। मेल करते हैं सब और हाँ। सब बताइए कि कैस लग रहा है कार्यक्रम और अतिथि हमारे के बहुत बहुत स्वागत करिए। तो अभी सब कुछ हुई कहे से कि 10:40 हुई तो तनिक बतकही कर ले श्रोता पंचन की बात करब। तो यू हम कहे के चाह रहे कि महतारी के ममता की अगर बात करी जाए तो वो तो न्यारी होते है ना, अनमोल कहते हैं सब। बोला कबो कबो फटहालीन गंजी पहने गमछा साफा पहने घाम में तर बतर होई के दिन रात ख्यात दफ्तर दुकान में मिन्हत करत हैं, घर परिवार में सूरज के उजाला फहरावत हैं, घर परिवार के चमकावत हैं हमार सबके बप्पा बापू पिताजी पापा। तो जाने तो हम कहीं की बात करे जा रहे हैं।
1: हाँ
0: हाँ समझे तो ना।
1: हाँ
0: तो पिताजी के सम्मान देवे के दिन अगर पूछो तो कल आहे जेके हम मनावे कि उई के नाम हुई पितृ दिवस जो कल हुई है 21 जून का है ना। तो पिताजी की अगर बात करे तो आपन पिताजी के शहर घुमावे लाए हो आप ललनपुर वाले गेंदालाल भैया या गाँव में सुना तो यह तुमका?
1: नहीं आग दे लाए रहा।
0: अच्छा
1: हाँ कहीं आवत आवत नहीं चाहत रहा है कहीं हुआ हम का करे जाप हुआ गर्मी लगत है।
0: अच्छा
1: हमारे गांव ठीक है यहाँ।
0: अच्छा
1: अरे हम का चलो देख आओ चले या हाँ। तो कहो कि कई लागत है शहर है लंबी लंबी गाड़ी लंबी लंबी सड़कें जब चली हो तो पता चली
0: यू बात
1: हाँ। लाइन घुमाए इनका फिर घूमे तो बोलो बुजुर्ग तो जिद्दी होते मारत नहीं दिल्ली।
0: हाँ जिद्दी होते लेकिन कबो कबो अगर लड़कर बच्चन की मान लो ऐसे की लड़का बच्चा आज के जमाने में घूमत है काम करते हैं तो बहुत कुछ नई नई जानकारी हो बते
1: वो बहुत जरूरी है। जब आप 10 लोगों तरह मिली हो तो नए नए विचार पता चलते हैं और नए नए का नवा हो रहा है पता चलते ना।
0: हाँ। तो पिताजी के सम्मान पूर्वक और प्यार पूर्वक इसने

0: नहीं देख के तनिक इज्जत विज्जत बख्श के सब है के आप है के नहीं, हम अपन के बात है, हमरो बात होए चाहे आपन के बात हो, चाहे तोहार बात हो, चाहे जत्ते श्रोता पंचन सुने थे। तो कल पितृ दिवस मनावे के दिन है और उहिमा आप से अगर कोनो गलती भूल चुक हुई है तो एके भी आप माफी मांग सका तो अपन पिताजी से
1: बिल्कुल और नहीं? कहा और भैया बिल्कुल
0: कहे से कि पिताजी से मांगे कोनो इज्जत थोड़ी घटी।
1: कोई नहीं भैया, हम तो कबो को जब पापा लड़े लागत है आपस में तो बड़े अच्छी अच्छी बातें नहीं करूँगा थी। कहीं नहीं, 9 महीना हमको तुमका पाला है। कहें तो तुम तो 9 महीना को पाले, 9 महीना दिमाग में कोड हुआ है। वो तो भैया सारी व्यवस्था तुम्हारे किया, लड़का बच्चा पैसे थोड़ी ना है, जितना तुम किया उतना हम क्या बात रखो। खैर है तनिक सरी लेकिन बड़ी बात है,
0: बड़ी बात
1: हमका है। बाद वो बहुत दिन सोचा हमका यार बात तो बहुत बड़ी कहीं है कि पिता ने 9 महीने तो धोया अपने दिमाग में ना, आपको सारी व्यवस्थाएं थारी कहीं सब कुछ कहीं, तो भैया आसान ना आए जो
0: बिल्कुल खामोश रह के तनिक चुपचाप रह के पिता बहुत कुछ करे परिवार के लिए।
1: तो जब खुद पर परत तब समझ ज्यादा हो
0: तब हाँ दिमाग खुला थी।
1: आज अपने खातिर बूसट लेक हो तो 10 दिन सोची अरे कल ले लेबे और तब छोटा रन चाहिए तो चाहिए
0: हाँ
1: लेके चले गए भैया दिलाइन।
0: अच्छा तो रिसियावत तो नहीं रहा आप?
1: ना अब इतना नहीं करता है, थोड़ा बहुत तो अब छोटे पर लेकिन थोड़ा
0: बचपन
1: है। घर का बड़ा हो तो ना जो वो थोड़ा समझदार जल्दी हो जाते हैं, वो कह रहे ठीक है दला दे हो अच्छा ठीक
0: घर परिवार में सब कुछ देख के और परिवार की स्थितियां जान के जल्दी समझदार होते हैं। जौन बड़ा हो
1: वैसे अपने देश में तो खैर अगर देखा जाए तो हर दिन पितृ दिवस हर दिन मातृ दिवस है।
0: बहुत नीक बात कह दिया
1: की नहीं,
0: बहुत नीक
1: बात। निकलो तो पाए छू के निकलो की भैया जाई थे आई थे।
0: अरे
1: ये अपने देश की अलग संस्कार है।
0: तो यू बात जो आप कह दिए सभी श्रोता पंचन सुना तो ये जो नहीं करत यू के पालन तो वो ही आज सुन लिए कि गेंदालाल ललनपुर वाले भैया आज यू कार्यक्रम बता दिए कि जब घर से छोड़ो तो अपने बड़े बुजुर्गन के अपने पिताजी के महतारी के सभी के पांव छुई के निकलो कह के अब्बा आई थे 2 घंटा में 4 घंटा में। हाँ यू बहुत नीक बात हमको संदेश आपका लगा। तो इसके साथ हम सभी से कहे चाह रहे हैं कि कोनो प्यार का तोहफा हो तो वही कला आप दे सकत हो।
1: हाँ बिल्कुल हाँ, देख तो चाहिए हाँ, उनको नीक लगी
0: बराबर इज्जत करत रहो अपन बप्पा के है ना, और उनको कभी समय बखत मिले तो थोड़ी हाथ गोड़ दाब दे
1: हाँ,
0: थकान, थकान मिटाई दो इनके
1: करेक्ट चाहिए। देखो ऐसा है तो जब उम्र हो जाते तो चिचलाते हैं लेकिन उनसे तुम ना चिचलाओ।
0: हाँ
1: अब बोल दिन तो सुन लो
0: अच्छा।
1: हाँ तो तुम्हारे पिता है
0: हाँ।
1: तो चुपचाप रहो भैया सम्मान करो है उनके सम्मान से समझ रहे जले सर पर हाथ रही तरह तुम खुश रही हो ना, बाद में कहियो अरे तन यू कह दे तो जाया ठीक रहा
0: हाँ।
1: तो अफसोस करे तो अच्छा भैया तुम जो है
0: अपन फर्ज निभाओ
1: बस।
0: तो अच्छा पिताजी के रहे अगर बात करें तो बड़कन जब हो जाते तो तनी दुनियादारी तनु कम हो जावत है तो क्या पिताजी के संग समय बितावे और तनी उनके जमाने की बात करे के पूछे के बतियाए अगर बतियावा जाए तो कई समय बीती
1: नहीं बहुत बढ़िया रहा था। हमको हम एक जो कहा हुआ हमसे कुछ ना पूछे कहूँ पूजा हो रहा है कहीं है तो उनका पता तुम्हारा पूर्वज कौन कौन रहा है
0: हाँ।
1: तो हमका हाँ पर बाबा तक जानी थे कहना अच्छा। आगे
0: हाँ।
1: अब हम चुप हो गए।
0: अच्छा
1: फिर भैया एक दिन बैठे गाँव गए बाबा थे हम कहा ये बताओ पहले पूर्वज चिट्ठी बनाओ कौन कौन रहा है। फिर भैया हुई और बड़े वाले जो उनके भाई रहा बैठ पूरा इतिहास बनाई कि उनके बाबा रहे फिर उनके बाबा रहे फिर उनके बाबा ये नाम रहे पूरा नाम लेकिन बड़ा भाई निकला कि कम से कम पूरे तो पता हो चाहिए
0: परिवार के बारे में जानकारी हो कि
1: आज अगर वो बच्चे ने पूछ दो तो माता पिता के बाद जनता ही नहीं कहो बाबा के नाम नहीं जाने लेकिन जाने चाहिए
0: बिल्कुल जाने के चाहिए
1: तो बहुत जरूरी है आजकल बच्चों संस्कार
0: एक, हाँ। एक और अलग और बहुत नीक बात आप बताई दियो
1: हाँ।
0: है ना कि परिवार के सब पुरखे जनन के सभी का नाम जाने के चाहिए अपने परिवार में कौन पितर रहे उनके बारे में जाने के चाहिए हाँ। तब परिवारों में खुशी होवत है और संस्कारी बालक भी होवत है
1: बिल्कुल
0: हाँ। तो देखो भैया सुनने वाले सब जन पिताजी के चेहरे पर जौन चमक आई ई सब करे से कहूँ बाजार में वो आप खरीद मोल नहीं सकत हो चमक
1: महतारी तो तुम बतिया ले खूब बाप मेरे तो कोई नहीं बतिया पावत है
0: हाँ।
1: अच्छा वो जरा बहुत का बतन काम भर की बात
0: हाँ। हल्काए देते कबो कबो
1: हाँ वो डर रहा थे तो काम भर की हाँ का हुआ हाँ। हुआ ठीक हाँ। बस लेकिन कबो कबो कह लेके चाहिए
0: और सम्मान बराबर करत रहो है ना
1: हाँ,
0: ऐसे कि जवाब दे ही है या कछु ये सब में कछु रखा नहीं
1: नहीं नहीं वहाँ कहा जाते
0: तो चलो यू बात से एक गवनई याद रही है तो तनिक सुनवावा जाए
1: बिल्कुल श्रोता सुनवावा जाए
0: जी।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: एक बार तनु को फिर से एक दाही और स्वागत करी थे हम अपन गेंदा लाल भैया ललनपुर वाले जी के। कैसे हो भैया?
1: बहुत बढ़िया बड़ा नीक लग रहा
0: है। नीक लग रहा है, स्टूडियो से जावे का मन नहीं कर रहा
1: था।
0: तो देखो भैया, आते लोग मेल कर रही हैं तो हाँ। सबसे पहले हमको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, वही मैं बना फरिंदा। हाँ, पूछे वाले रहे कि आम के संग फरिंदा लाए हो आपकी नहीं। चलो हम ई के फोटो देख के दिल हमार बाग बाग हुई का, तो पढ़ ले की का लिखी।
1: हाँ, बिल्कुल पढ़ो।
0: लिखिन है मोनू सेठ भैया, लिखिन है रत्ना बहनी और गेंदा लाल भैया, आप दोनों के जने खातिर हम जामुन तोड़ के लाइन है। अरे वाह, जामुन के फोटो भेजी नहीं, तो चलो यही से अपन दिल के तसल्ली दिया जावे, है ना। मोनू सेठ भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपके। वकील अहमद तो लिख रही है, लिखिन है कि आप दोनों लोगों की आवाज बहुत अच्छी लागत है, सुगंध माटी की कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और समर में हम नहाए कि आम के बाग में हैं, आम खावते हैं। हमारे यहाँ गर्मी बहुत तेज हो रही है, हवा बहुत मस्त चलत है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथुरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशाह सिद्दीकी, अहमद नवाब जी, तो अत्ते लोगों के नाम लिखे ने। और आप जो आम के बाग की बात करा रहे हो भैया, वही के बारे में लिख दी ने। हमका लागत है कि आपके बात कही सुन के आप जोन जो झोरा में लाए हो, जो अपन गांव वाले आपका दी ने, वो सुन के आम के बाग भागे हैं का?
1: हमका लाग यही रहा। चलो है भैया, बढ़िया गए तो कम से कम। हाँ। लेकिन इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद भैया कि प्रोग्राम सुनिन और तुरंत तारीफ कर दी।
0: तुरंत तारीफ कर दी। हाँ, और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं गिरना लाल भैया, जान लो आप लोगों का। सोनू परवाला खालिसपुर उच्च गाँव सुकुल बाजार मोड़ अमेठी से लिखिन है, बहन जी नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। आप के माटी की खुशबू ही पर कार्यक्रम में दादा दादी नाना नानी भैया भौजी बुआ फूफा सब ही ई प्रोग्राम में बहुत ध्यान से सुनत हैं। और प्रोग्राम और परिवार हमरी जहां जड़न संस्कार और जीवन के सबसे गहरे सुकून के प्रतीक हैं। जिस तरह पहली बारिश में मिट्टी की भीनी सुगंध मन को तरोताजा कर दिया थे, ठीक उसी तरह परिवार के साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव में हम ऊर्जा और अपनापन प्रदान कर रहे थे परिवार हमका। सोनू परवाना बहुत नीक बात लिखा,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा है भाई,
0: बहुत सुंदर लिखे ने। गुलफशा सिद्दीकी लिखी ने, गुड मॉर्निंग, आप दोनों के कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं। संडीला से यू लिखे ने,
1: बहुत बहुत धन्यवाद इनका।
0: गेंदा लाल भैया जान लो संडीला तक सुना थे आपके बात कही, और देखें कहां कहां जात है यू आवाज। आंचल सेठ खालिसपुर से लिख दी ने कि गेंदा लाल भैया और दीदी जी का नमस्कार, हमारे सास ससुर भी आपके राम राम कहते हैं।
1: राम राम भैया, राम राम।
0: गेंदा लाल भैया राम राम पठे दीन आप लोगों का। माटी की खुशबू ये सिर्फ एक महक नहीं बल्कि हमारी जन्मभूमि और संस्कृति से जुड़ा गहरा एहसास है होता है। और चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपन मिट्टी की याद वहां का जुड़ाव हमेशा हमारे भीतर बसात है, बसात है।
1: यह बात तो बिल्कुल नीक है। दुनिया में कहूं घूम जाओ और जब
0: देखो यू एहसास हमारे भैया के तीर भी है। और उसके बाद राजकमल यादव बरैया से लिखिन है, पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, प्रणाम दीदी भैया जी, कैसे हम लोग बहुत नीक नीक है, कार्यक्रम कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा थे। कैसे आज हमारे अतिथि भैया आए हैं गेंदा लाल ललनपुर वाले, और बुधवार और शनिवार को इंतजार रहती है कार्यक्रम में, और मैम हो सके तो यादव जी कभी बुलावा जाए, उनका गीत बजावा जाए। और हमारे साथ रमजान मास्टर सावन कुमार यादव और मेरी वाई संगीता यादव हैं, कार्यक्रम सुनती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जौन आप लिखे हो वही की कोशिश करब, काहे से कि समय बहुत कम है। तो परवीन हागोने जी भी मेल करें, कुलदीप गुप्ता जी भी मेल करें, सत्यम पाल जी भी मेल करें, मोहम्मद आसिफ जी भी मेल करें, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छुटकी सी बात कर ली भैया, काहे से कि कल 21 जून की अगर बात करें तो विश्व संगीत दिवस बनावा जाए, जानत हो ना।
1: हाँ,
0: हम जब देखा कि गेंदा लाल भैया तने मेज पर ऐसी कुछ ढुमुक ढुमुक ढुमुक ढुमुक कछु करत रहे, हम का ढोलक भैया बजा लेते हो का, तो कहीं कि हम जौन जौन कार्यक्रम करत हैं, नाटक है, वेब सीरीज है, उन सब में कब्बो कब्बो हम करत हैं। हाँ। तो जब ढोला का बजावत हो तो कोनो गमनी साउथ गावत है कि नहीं?
1: हाँ, और का जब हम नाटक करे थे तो जो है जो संगीतकार अपन रहा है और जो गीतकार है, तो कहूँ कहूँ देखो अभिनय के साथ साथ थोड़ा संगीत होना भी बहुत जरूरी है,
0: बहुत
1: जरूरी। वो आदमी को जोड़ता है उससे एक दूसरे को, और दिन भर आदमी थक हार के आवा, एक घंटा का कार्यक्रम देखे आवा, तो तनु एक नीक लागे चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात कह दियो। और संगीत ऐसे होते की कौन भाषा में हो,
1: कौन भाषा
0: कहूँ बजे कहूँ गावा जाए, लेकिन दिल में बसत है, दिल का जोड़ आते हैं।
1: हाँ, जैसे अंग्रेजी है समझ नहीं आवत है।
0: हाँ।
1: लेकिन जब नीक लागत है सुनने में।
0: यूं तो बात है, पटपटावा थे लोग लेकिन नीक लागत है,
1: हाँ।
0: लेकिन ये भाषा का भी अपन एक अलग महत्व है।
1: गीत संगीत समझ में आ जाता है, हम देखा है,
0: तो संगीत से तो मन बिल्कुल हरियर हो जाते हैं। तो चलो दनी, तो ढोलक हम सुनी है ना,

0: बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो। आए मगन हुई के बजाए दिन ढोलकिया, हम का एक लाओ तनिक बजाई कैसे बजावत है, चलो सुना जाए। तो आप सबका बताई दी कि कार्यक्रम सुगंध माटी के में जितने लोग मेल करें उनका बहुत बहुत हार्दिक से हार्दिक धन्यवाद दे के चाह रहे हैं हमारे गेंदालाल ललनपुर वाले
1: भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और बखत बिल्कुल इजाजत नहीं दिए थे, तो चलो अब का करी, कैसे समाचार के बखत हो रहा, का कहे चाह रहे हो आप बताइए।
1: मन तो नहीं माना था जाई, लेकिन अब का करे समय कह रहा जाओ तो भैया जाए।
0: लेकिन अब गठरिया मुठेरिया अब खोले के बखत आएगा वा का हाँ, का उम्र है हाँ, तो हमारे जो आज के अतिथि रहे उनके हम स्वागत करें, उनके बाद अब अभिनंदन करे के बाद हम उनका धन्यवाद पठे रहे हैं आप सभी लोगों की तरफ से। और अपन वाणी में हम कहे चाह रहे हैं कि गेंदालाल ललनपुर वाले भैया आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, कार्यक्रम सुगंध माटी के में आप पधारे बतकही करें, सब लोगों से मिलकर श्रोता पंचन आपके तारीफों भेजें, पठे पाती भेजें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आइयो यू तरह जुड़े रहिए, और आपका जो लखनऊ में जो शहर में आपका पहचानत हुई है सुनील कुमार मिश्रा जी,

हेलो आदाब नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे फरहत। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम हम नवा में। दोस्तों कुछ लम्हे मुस्कुराहट के, कुछ बातें दिल के नाम, कुछ किस्से जिंदगी के और कुछ सपनों का पैगाम, इन्हीं रंगों को लेकर हर दिन मिलते हैं हम आपसे, क्योंकि सफर आसान हो जाता है जब साथ हो कोई हम नवा। और आज इस खूबसूरत

0: सफर में मेरा साथ दे रही हैं मेरे साथी, मेरी दोस्त, मेरी हमनवा आरजे शिप्रा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फरहत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे शिप्रा और सभी का दिल से स्वागत है हमारी हमनवा शो में। और दोस्तों, सेहत भी जरूरी है, मुस्कुराहट भी जरूरी है। और फरहत के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है इस समय, उसको देख करके जो मेरे अंदर एहसास जाग रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा है कि जिंदगी की भाग दौड़ में थोड़ी सी राहत मिल गई है। वो तो ऐसा एहसास है। तो फरहत, खुद का ख्याल रखना वाकई कोई खुदगर्जी नहीं है। तो आपको देख के मैं खुश हो रही हूँ और आपको, आप जाहिर सी बात है कि मुझे देख के खुश हो रही होंगी। तो खुश रहने के लिए ये आदत भी जरूरी है, ये आपको मानना
0: क्या
1: पड़ेगा।
0: क्या बात कही शिप्रा,
1: बिल्कुल। और फरहत, सच कहूँ तो हम सब क्या होता है, अपने फैमिली फ्रेंड्स और काम को का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, खुद को भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने शिप्रा। वैसे कल पूरी दुनिया मनाने जा रही है इंटरनेशनल योगा डे, राइट? तो क्यों ना अपना ख्याल आज से ही रखना हम स्टार्ट कर दें। और अपने लिसनर से भी एक सवाल पूछे कि दोस्तों, आखिरी बार आपने अपने लिए सिर्फ 10 मिनट कब निकाला था? एक्चुअली होता है क्या ना, ये भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। तो एक छोटा सा सवाल हमारे दोस्तों के लिए, आप भाई हमें भेज सकते हैं अपना जवाब कि कौन सा वो दिन था, कौन सा वो वक्त ऐसा था जब आपने अपने लिए 10 मिनट निकाले।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल के लिए समय है, ऑफिस के लिए समय है, घर की जिम्मेदारियों के लिए समय है, लेकिन क्या आप अपनी सेहत के लिए भी समय निकालते हैं?
1: बिल्कुल सही सवाल। और शायद यही याद दिलाने के लिए हर साल योग दिवस आता है फरहत, कि अच्छी सेहत किसी दवा की दुकान में नहीं मिलती है, बल्कि उसकी शुरुआत क्या होती है फरहत, हमारी रोज की छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों से होती है। तो आज के हम नवा में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही विषयों के जो हमें बेहतर, स्वस्थ और जागरूक बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aansometia@gmail.com। बताइए अपनी बात और साथ में इंटरनेशनल योगा डे पर भेजिए अपने मैसेजेस, शेयर करेंगे हम प्रोग्राम के साथ। बनिए हमारे हम सफर।
0: तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम नवा का ये खूबसूरत सफर इस खूबसूरत से गाने के साथ।

0: योग करें और निरोग रहें। और 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम हम नवा। मैं हूं शिप्रा चंद्रा आपके साथ।
1: और मैं हूं फरहत आपके साथ।
0: और फरहत, ये बताओ कि आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। पूछूं क्या?
1: बिल्कुल।
0: एक बात बताओ। अच्छा, सवाल पूछने का मुझे बड़ा शौक है, जरा ये ध्यान रखना प्रोग्राम के दौरान, ठीक है?
1: अच्छा,
0: मैं पूछती
1: मतलब
0: जाऊंगी, आप देती जाइएगा जवाब।
1: मेरी परीक्षा यहाँ पे भी जारी है।
0: बिल्कुल जारी है। तो एक बात बताओ कि अगर आपसे कहा जाए कि अगले 15 मिनट में आपको अपना घर छोड़ना है और शायद दोबारा वापस आने को ना मिले, तो ऐसे में आप अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहेंगी?
1: बहुत मुश्किल सवाल है ये शुभ्रा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई तो आई थिंक मैं फैमिली की तस्वीरें और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तो जरूर साथ ले जाना चाहूंगी। इसके साथ और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ, ये दो सामान तो मैं जरूर रखना चाहूंगी अपने पास।
0: बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स लेना और अपनी जो एजुकेशनल का एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है वो लेना, ये तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे जो ये तस्वीरों की आपने बात करी है, तो हर तस्वीर के साथ एक मीठी सी याद जुड़ी होती है।
1: हाँ।
0: और फरहत, पता है मैंने तो आपसे ये सवाल यूं ही कर लिया, लेकिन दुनिया में ऐसे करोड़ों लोगों को ये फैसला सच में लेना पड़ता है, और इसी सच्चाई को याद करने के लिए हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम मनाते हैं।
1: जी हाँ। अच्छा, जब लोग रिफ्यूजी शब्द सुनते हैं ना शिप्रा, तो अक्सर सोचते हैं कि ये बस माइग्रेशन का ही एक रूप है, लेकिन माइग्रेंट और रिफ्यूजी, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
0: बिल्कुल, माइग्रेट यानी कि बेहतर जॉब, एजुकेशन या अपॉर्चुनिटीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये होता है ना, लेकिन रिफ्यूजी के पास च्वाइस नहीं होती है, और उसके लिए घर छोड़ना, उसके साथ कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे उनके सर्वाइवल की बात होती है, तो सर्वाइवल का सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये सर्वाइव कैसे किया जाए।
1: बिल्कुल सही। और आज दुनिया में 12 करोड़ से ज्यादा लोग फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड किए गए हैं, और हैरानी की बात ये है शिप्रा कि हर 70 लोगों में से लगभग एक व्यक्ति अपने घर से बेघर है।
0: फरहत, जब हम रिफ्यूजी के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि कैंप्स में और बॉर्डर्स नजर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान उन चीजों का होता है जो हमें दिखाई नहीं देती है।
1: बिल्कुल, जैसे फीलिंग्स।
0: जैसे बचपन
1: और स्कूल की वो बेंच, अगर बचपन की हम बात कर रहे हैं तो वो बेंच बहुत याद आती है, साथ ही मोहल्ले के दोस्त, अपना कमरा बहुत याद आता है, और अपनी फेवरेट जगह, राइट? एक्चुअली रिफ्यूजी क्राइसिस में सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, जब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है।
0: बहुत बड़ा चैलेंज है। और फरहत, ये बात तो सच है कि जहाँ आपका बचपन बीता होता है, उस घर के साथ जो यादें आपकी जुड़ी हुई होती हैं, शायद वो सुकून आपको दुनिया की कोई भी जगह ना दे सके, तो वो सुकून खोना अपने आप में कितना कष्टदायी होता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। और आज सडन ये क्या है कि ये बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं एकदम से, ले और देखिए आज क्या है, सूडान है, सायरिया है, अफगानिस्तान जैसे देशों में लाखों लोग अपने घरों से दूर रह रहे हैं। और सूडान का तो क्या है, पता है फरहत, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस सूडान में मानी जा रही है, और रोहिंग्या की रिफ्यूजीज की कहानी भी बहुत दर्द भरी है। कई लोग खतरनाक समुद्री सफर करते हैं, और सोचिए जब समंदर का खतरा भी घर में रहने से

0: कम लगे तो हालात कितने मुश्किल होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना शिप्रा कि हर दर्द के बाद खुशियां भी आती हैं। पिछले साल लाखों लोग अपने घर वापस भी लौटे और कई रिफ्यूजीज ने नए देशों में जाकर टीचर्स, डॉक्टर्स, इंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट के रूप में अपनी पहचान भी बनाई है, और यही रेजिलियंस है, मतलब गिर कर फिर से खड़े होना।
0: बिल्कुल, और ये आप अपने आप में एक अपने आप से प्रॉमिस करना तो हर किसी को हर वक्त करना चाहिए कि सिचुएशन कैसी भी हो उसको डील करना है। और वैसे तो फरहत इसके कई सारे एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसमें एक बहुत जो बड़ा रीजन है वो है क्लाइमेट चेंजेस का।
1: जी हाँ,
0: बाढ़ है, सूखा है, और क्या है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी जो होते हैं वो लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं।
1: और जब इंसान घर छोड़ना पड़ता है ना शिप्रा, तो हमें घर की रियल डेफिनेशन समझ में आती है उस वक्त। जब तक हम घर में होते हैं तो शायद हम नहीं समझ पाते कि वो हमारे लिए कितनी मजबूत छत है, कितनी महफूज जगह है।
0: बिल्कुल, और मकान और घर में यही तो अंतर होता है, फरहत, है ना? और बिल्कुल, घर सिर्फ चार दीवारी नहीं होती है, दादी की आवाज होती है, कहीं गूंजती है, बचपन की यादें होती हैं, खिड़की से दिखने वाले पेड़ होते हैं, वो सुकून होता है जो मेरे ख्याल में हर इंसान डिजर्व करता है।
1: हर इंसान डिजर्व करता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कही। और शायद वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का मैसेज भी यही है, अनटिल एवरीवन इज सेफ, क्योंकि जब तक हर इंसान सुरक्षित नहीं शिप्रा, तब तक इंसानियत का सफर अधूरा है।
0: तो दोस्तों, याद रखिए कि हर मुश्किल में, हर मुश्किल के साथ एक उम्मीद भी आती है, और शायद इसी उम्मीद के सहारे लाखों लोग हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं।
1: तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हमें सिर्फ उनकी परेशानियों के बारे में नहीं बताता दोस्तों, बल्कि उनकी हिम्मत, हौसले और जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश भी कभी सलाम करता है, उनकी कोशिशों को भी सलाम करते
0: हैं ऐसे लोगों को। तो चलो, ऐसी उम्मीद, ऐसी इंसानियत और इसी एहसास के साथ हम लोगों को देखिए बातें करते करते कैसी अच्छी सी फीलिंग आने लगी है कि कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन जैसे कि रात होती है और सूरज हर रोज उदय होता है, तो उसी तरह से अंधेरों के बाद रोशनी आती ही आती है। और लीजिए, आप सुनिए, एक खूबसूरत सा गाना पहुंच रहा है आप तक।

0: खूबसूरत गाना डंकी फिल्म से। फरहत, बहुत ही खूबसूरत चॉइस है आपकी। और आज के प्लेलिस्ट में आपने बेहतरीन गाने जो हैं वो क्यों कर रखे हैं। और हम नवा में फरहत है मेरे साथ, मेरा नाम है शिप्रा चंद्रा, 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप।
1: बिल्कुल दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत गाने आगे भी आप इसी तरह इंजॉय करते रहेंगे हमारे साथ। बिल, आज शिप्रा मुझसे कह रही थी कि थोड़ा सा बच के रहना क्योंकि मैं सवाल बहुत पूछती हूँ, तो मुझे क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पे एक सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ शिप्रा से। तो शिप्रा एक बात बताओ कि आज कौन सा दिन है?
0: ये तो बहुत कठिन सवाल है फरहत। मैं बिल्कुल, ये ऐसा सवाल हो गया जैसे मैं आपसे पूछूं कि फरहत आपका नाम क्या है।
1: तो बता ही दो आज कौन सा दिन है शिप्रा।
0: भाई आज सैटरडे है और कल संडे है।
1: जी हाँ बिल्कुल, वीकेंड का अपना ही लुत्फ है। और इस वीकेंड में इनवाइट कर रही हूँ आपको चटपटी चटकारेदार चाट खाने के लिए।
0: अब मुझे इनवाइट कर रही हैं आप?
1: जी
0: बिल्कुल। अच्छा, चटकारेदार चाट का आपने नाम लिया तो मुंह में पानी आ गया। गोलगप्पे नहीं है क्या?
1: वो भी है, पूरी चाट पार्टी फैमिली विद फ्रेंड्स अरेंज की है, आना जरूरी है।
0: देखो वैसे तो मैं ना कभी बोलती ही नहीं हूँ, तो इसमें मैं कैसे ना बोल सकती हूँ किसी भी पार्टी के लिए। और ये जो ये लास्ट वाला सेंटेंस बोला ना, आना जरूरी है, तो आप अगर ना भी कहती फिर भी हम आते हैं क्योंकि पानी पूरी गोलगप्पे मेरी वीकनेस है, खुद ब खुद मुंह में पानी आता है।
1: अच्छा तुम्हें पता है मसालेदार पानी की भी काफी सारी वैरायटीज होती है, और हमारे यहाँ भी काफी सारी वैरायटी होंगी। जीरा पानी, इमली वाला, खट्टा मीठा पानी, आम पानी, हींग वाला, हाजमेदार पानी, यू नो के पूरी एक बुफे सजने वाला है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। और अभी फिलहाल मेरे मुंह में पानी लाने का आपने निश्चय कर लिया है, मैंने बताया ना पानी पूरी मेरी वीकनेस है। अच्छा ये तो बताओ कि ये सारा कुछ, इतना सारा जो खाने के सारी चीजें हैं, वो आप बना रही हैं क्या फरहत?
1: देखो मुझे बनाना तो आता है, लेकिन आज ये चाट पार्टी के जो ये डिशेस है ना, वो बना रही है हमारे मोहल्ले की कुछ महिलाएं जो प्रोफेशनली ऑर्डर लेती हैं और फिर सब तैयार करके भेज देती हैं, यू नो। और तुम्हें पता है कि शिप्रा ये महिलाएं पहले अपनी रसोई तक ही सीमित थी, लेकिन क्या कहूँ, पाक कला में एकदम निपुण, और इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ग्रुप बनाकर इसे आय का माध्यम बनाया जाए। और इस तरह धीरे धीरे इनका काम बढ़ता गया और साथ में टिफिन सर्विसेज भी शुरू कर दी, तो आर्थिक रूप से हो गई ये सशक्त और हमारी सखियाँ स्वावलंबी भी बन गई।
0: बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि शौक बड़ी चीज़ है। और काश फरहत आपको भी ऐसा शौक होता और हमें भी होता तो आज भी हमारा भी छोटा मोटा कुछ तो बिजनेस होता।
1: बिल्कुल होता और हो भी सकता, और वैसे भी मैं तो बना ही लेती हूँ अच्छा खाना, बस हाँ किसी को अच्छा लगना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे तो, बस बेसिकली मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे बना बनाया खाना ही अच्छा लगता है। ज़्यादा नुस्ख नहीं निकालती हूँ उसमें कि भाई बना बनाया कोई इतने उससे मन से बना के लाया, लगी लगाई थाली सामने है तो बस खा लीजिए चुपचाप। और इसे ये भी कहते हैं कि वैसे फरहत जो तुमने कहा है ना कि अपने मुंह मियां मिट्टू है ना। और लेकिन सीरियसली फरहत ये एक अच्छा आइडिया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आइडिया शिप्रा, खाना खाने में जितना मजा आता है ना उसे सही ढंग से बनाने में भी उतना ही मजा आए, तो क्या बात है राइट। पाक कला और इसमें करियर बनाना, जी हाँ, एक इसके साथ बहुत सारे करियर ऑप्शन भी जुड़ सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं जिन्हें आप ट्राई करिए, अपने कोर्सेज करके अपने शौक को एक करियर ऑप्शन में भी आप तब्दील कर सकते हैं।
0: बिल्कुल जरूरत है शौक के साथ सही ट्रेनिंग और एजुकेशन की, लाइक फरहत BHM का कोर्स हो गया है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स, और इसके साथ बेकरी का, कुकरी कोर्स, प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिकी, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिनको आप करके वाकई में एक शेफ का दर्जा पा सकते हैं। और इसके अलावा
1: साथ ही हॉस्पिटैलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं आप।

0: बीएससी तो खान पान की दुनिया में रुचि रखते हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आपके लिए बेस्ट है और बहुत और भी सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं जब आप इस फील्ड में जाते हैं।
1: जैसे क्या है, अभी आपने इतनी अच्छी बात बताई फरहत कि होटल्स में एग्जीक्यूटिव हैं और हेल्थ क्या है हेड शेफ लग्जरी रिसॉर्ट्स में टॉप रेस्तरा में इनकी बड़ी डिमांड रहती है
0: और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है शिप्रा,
1: क्या बात है।
0: और फूड स्टाइलिश भी होते हैं है ना, पार्टी शेफ भी होते हैं, बेकर्स। और शिप्रा हमारी सखियां सहेलियों को ना इसमें भूल मत जाइएगा, जो क्लाउड किचन की सर्विस भी देती हैं, टिफिन सर्विस इन्होंने सुविधाएं शुरू की थी और देखो ना आज क्लाउड किचन तक पहुंच गई है।
1: अच्छा क्या होता है कि डेली जो लोग वर्क करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है तो कभी कभी क्या होता है कि बाहर से ऑर्डर कर लिया मैंने और रेस्तरां से खाना चला आ रहा है, किसी अच्छे महंगे होटल से ऑर्डर कर दिया तो क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस होता है। मिस ये होता है कि घर के बाहर हम बैठे हैं तो मैं घर जैसा खाना, हमारी माँ के हाथ का खाना, हमारी दादी नानी के हाथ का खाना, तो ये जो क्लाउड किचन हमारी सखियां सहेलियां कर रही हैं तो इनसे वो वाली फीलिंग आती है।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर का खाना आप कितना भी खा लो लेकिन जो मन जो पेट घर के खाने से भरता है ना और जो सुकून जो आनंद मिलता है वो भाई जो हमारे सखियां सहेलियां हैं जो बनाती हैं खाना अपने हाथों से और प्यार से हमें टिफिन में
1: प्यार भी खुला होता है
0: बिल्कुल पैक करके भेजती हैं तो उसे खाने का आनंद ही कुछ और है।
1: तो फरहत एक बार फिर से याद दिला दे रही हूँ कि यही वाला सुकून पाने के लिए मैं आपके घर में आ रही हूँ आज शाम को।
0: बिल्कुल आइए, और ये जो मैंने आपको बोला ना कि ये तरह तरह के गोलगप्पे के पानी आपको मिलने वाले हैं तो बिल्कुल मैं सर्व करूंगी आपको। फिलहाल एक गाना सर्व कर देते हैं अपने लिसनर्स को, एंजॉय करिए दोस्तों 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: थिरक रहे हैं आप और थिरक रहे हैं हम 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के संग।
1: शिप्रा
0: जी,
2: वैसे तो काफी सारी बातें हमने खट्टी मीठी कर ली, पानी पूरी आपको खिलाई, लेकिन यहाँ पे जो गाना था ना वो मीठा मीठा
0: खिलाई नहीं है, है ना? हाँ, गलत बात है,
2: मतलब
0: आपको
2: जो हम मैंने इनवाइट किया
0: शाम
2: है, शाम
0: को आप खिलाएंगे मुझे, और फिर मैं अगर आप ये काम करेंगे ना तो मैं अपनी डिशेस की जो लिस्ट है ना उसमें मैं बढ़ाती चली जाऊंगी, ये याद रखिएगा।
2: बिल्कुल, आप डिशेस बढ़ा लीजिए और ये पूरी पार्टी आपको मिलने वाली है, तो
0: क्या बात है, वीकेंड और पार्टी, मतलब एक अच्छा सा कॉम्बो पैक है एकदम,
2: क्योंकि वीकेंड
0: कल, लेकिन संडे तो है कल फरहत, लेकिन कल क्या है, योग दिवस है, तो जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना भी है और योग भी करना है, ध्यान भी करना है, ये भी ध्यान रखने वाली बात,
2: और साथ ही हेल्दी भी खाना है।
0: जी बिल्कुल, हेल्दी खाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पार्टी जो है वो जल्दी ओवर करेंगे,
2: जल्दी ओवर करेंगे। वैसे एक बात बताऊं कि हम सब ने कभी ना जरूर सोचा होगा कि सरकार को आखिर कैसे पता चल जाता है कि किसी शहर में कितने नए स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल कम पड़ रहे हैं, किसी इलाके में पानी या सड़क की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। रीजन ये है ये बात करने की, क्योंकि आज कल का जो टाइम चल रहा है ना वो बस इसी चीज के दरमियान ही घूम रहा है।
0: बिल्कुल घूम रहा है, और इतने सारे क्वेश्चन सोचते सोचते सोचते मुझे कुछ घूमने जैसे ही फीलिंग आने लग गई है कि वाकई ये कैसे होता है फरहत, कि वो जान लेते हैं कि यहाँ पे इतने हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, ये कैसे पॉसिबल होता है।
2: इस सब का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, शिप्रा, जनगणना।
0: क्या बात।
2: और जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, ये देश का वो आईना है जिसमें सरकार को देश की असली तस्वीर दिखाई देती है। हम कितने हैं, कहाँ रहते हैं, हमारी जरूरतें क्या है, किस इलाके में विकास की कितनी जरूरत है, इन सब का आधार जनगणना ही बनती है।
0: अच्छा, तो यही वजह है कि जनगणना को दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी अभियान भी कहा जाता है। और फरहत, इस बार की जो जनगणना है और भी खास है, क्योंकि पहली बार इसे इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल तरीके से किया जा रहा है।
2: जी हाँ शिप्रा, अगर अपने कानपुर की हम बात करें तो यहाँ जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है, और अखबार में छपी जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो 99.88% काम पूरा हो चुका है और लगभग 12.82 लाख आवासों का विवरण भी दर्ज किया जा चुका है, और अब सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का काम शुरू हो रहा है ताकि अंतिम आंकड़े भी पूरी तरह और सही और भरोसेमंद तैयार किए जा सके।
0: अच्छा, ये है रीचेक किया जाएगा, जिससे कि कोई जानकारी छूट गई हो या गलती से दर्ज हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, तो इसी चरण में इसको सुधारा जाएगा, क्योंकि जनगणना में एक छोटी सी भी गलती भी भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है।
2: दोस्तों, जनगणना का पहला चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस कहलाता है। इसमें घरों की स्थिति, पानी, बिजली, शौचालय, इंटरनेट और संपत्तियों जैसी इन्फॉर्मेशन क्लिक की जाती है, और साथ ही उत्तर देश में यह चरण 22 मई से शुरू होकर 20 जून यानी कि आज के दिन तक पूरा कर लिया जाएगा।
0: और फरहत, इसका दूसरा चरण जो है वो भी कब होगा ये भी बता देते हैं कि फरवरी 2027 में होगा, तब हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी, जैसे कि एज हो गई, एजुकेशन, रोजगार, भाषा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति।
2: और पूरे देश में लगभग 30 लाख कर्मचारी और अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं शिप्रा। इसमें टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, साथ ही सुपरवाइजर और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं जो अपनी नियमित ड्यूटी के साथ साथ जनगणना का भी काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और चुनौतियां भी कम नहीं है। अभी देखिए वेदर भी कितना हॉट हो जा रहा है, गर्मी का सीजन है, लेकिन कहीं देखिए कहीं लोग क्या होता है कि होल डे में वो तो पहुंच गए, कहीं वो घर में मिले, कहीं नहीं मिले, तो फिर उन्होंने उसे चिन्हित किया, फिर उनके पास 2 बार गए, 3 बार गए, तब जाकर के वो मिले कहीं, तो कई जानकारियां शेयर करने में किसी किसी को हिचकिचाहट भी होती है, ऐसा

0: होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फिर भी जनगणना कर्मी हर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति या परिवार छूट ना जाए, तो इसमें क्या है, सहयोग आपका अपेक्षित है।
1: बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि इस बार मोबाइल ऐप और डिजिटल सिस्टम की मदद भी ली जा रही है। इसमें डेटा सीधे सिस्टम में दर्ज हो रहा है और गलती की जो संभावना है शिप्रा, वो भी कम हो रही है।
0: अच्छा, एक और भी बहुत ही जरूरी बात फरत शेयर कर रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं कि जनगणना का मतलब किसी योजना का फॉर्म भरना है, ऐसा भी माइंडसेट होता है, या कोई लाभ लेना है ना, तो ये जान लीजिए आप कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: जी हाँ, जनगणना में दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है और इसका यूज सिर्फ सांख्यिकी विश्लेषण और विकास योजना

0: बहुत ही जरूरी बात फरहत शेयर कर रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं कि जनगणना का मतलब किसी योजना का फॉर्म भरना है, ऐसा भी माइंडसेट होता है, या कोई लाभ लेना है ना, तो ये जान लीजिए आप कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: जी हाँ, जनगणना में दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है और इसका यूज सिर्फ सांख्यिकी विश्लेषण और विकास योजनाएं बनाने के लिए ही किया जाता है।
0: यानी आज जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं वही कल ये तय करेंगे कि कहाँ, ये जो अभी हम लोग जैसे डिस्कशन कर रहे थे, कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ अस्पताल की जरूरत है, किस एरिया में सड़कें बेहतर होनी है और किस इलाके में ज्यादा सुविधाएं चाहिए।
1: जी हाँ दोस्तों, अगर कोई जनगणना कर्मी आपके घर आए तो सही और पूरी जानकारी जरूर दे, क्योंकि जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं जुटाती, ये देश के आने वाले कल की रूपरेखा तैयार करती है। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि देश का विकास सही आंकड़ों से शुरू होता है और सही आंकड़े जनगणना से।
0: तो बिल्कुल सहयोग करिए, जो भी आपके घर में जनगणना कर्मी आए उनको पूरी और सही सटीक जानकारी दी जानी जरूरी है।

0: बहुत ही खूबसूरत और दिल को छूता हुआ गीत ऐसा देश है मेरा वीर ज़ारा फिल्म से। और देख रही हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि हमारे कुछ लिसनर्स ने हमें मैसेजेस किए हैं, तो फरत पढ़ लिए जाए।
1: बिल्कुल। और ये पहला मैसेज मुझे दिख रहा है आंचल सेठ का, खालिसपुर से ये भेजा इन्होंने। आंचल सेठ लिखते हैं कि बच्चों के सामने बुजुर्गों के पैर छुए, नमस्ते करें और रोज उनकी परेशानियां पूछें, इससे बच्चे भी ये चीज सीखेंगे। बिल्कुल सही बात
0: बहुत
1: है।
0: बढ़िया है।
1: और साथ ही मेंशन किया है कि खाने की टेबल पर साथ बैठाएं और घर के बुजुर्गों की पसंद को प्राथमिकता दें। वैसे बुजुर्गों ने जो काम किए उसका महत्व, त्याग और योगदान बच्चों से शेयर करें और घूमने जाते वक्त बुजुर्गों को भी साथ लेकर जाएं। मतलब एक ही मेल में इन्होंने कितनी सारी भावनाएं अपनी व्यक्त
0: अच्छा,
1: कर दी
0: मुझे
1: हैं
0: लगता है
1: शिप्रा।
0: बच्चों और बुजुर्गों में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है शायद कहीं पे भी नहीं होती है,
1: बिल्कुल सही बात
0: क्योंकि
1: है।
0: ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि बुजुर्ग भी बच्चों के समान हो जाते
1: हाँ, बुजुर्ग भी बच्चे के समान हो
0: हैं
1: जाते हैं जैसे जैसे वो बुजुर्ग होते
0: और
1: जाते
0: उन्हें
1: हैं।
0: अपने नाती पोतों से तो बहुत ज्यादा प्यार होता है ना। तो
1: करेक्ट।
0: ये तो है। और साथ ही नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से जुड़ चुकी हैं और इन्होंने लिखा है कि मॉर्निंग से आपको सुन रही हूँ, बहुत अच्छे कार्यक्रम लगे। तो फरत ये तो आपके लिए लिख रही है ये
1: बहुत बहुत
0: मैसेजेस
1: शुक्रिया।
0: उनका। और रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लिए समय निकालना भी किसी मोहब्बत से कम नहीं होता। मैं सुबह डेली 4 बजे उठकर अपनी मम्मी के साथ वॉकिंग करने जाती हूँ और मेरे गुरुजी मुझे योग सिखाते हैं। सुबह जल्दी उठने के फायदे और योग के फायदे मेरे टीचर्स गुरुज को उन्होंने ये डेडिकेट किया है अपना मैसेज। और साथ में जुड़ चुके हैं मोनू सेठ खालिसपुर ऊंच गांव अमेठी से।
1: और ये लिखते हैं कि परिवार की एकता से भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक मजबूती मिलती है, क्योंकि सभी सदस्य एक दूसरे का सहारा बनते हैं, खुशियां व दुख साझा करते हैं और जिम्मेदारियों को बांटते हैं। एकता से बच्चों को स्वस्थ वातावरण और सही संस्कार मिलते हैं, जबकि बड़ों को सम्मान और सुरक्षा का अनुभव होता है। ये परिवार को

0: समय में एक अटूट शक्ति का स्तंभ बनाती है जिससे अकेलापन दूर होता है और जीवन अधिक संपूर्ण और खुशहाल बनता है।
1: बड़ा ही प्यारा सा मैसेजेस ये हमें वन बाय वन एक एक करके हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम नवा में आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ और हमें भेज सकते हैं अपने मैसेजेस, और साथ में और भी बहुत सारे मैसेजेस नजर आ रहे हैं। प्रवीण क्या नाम है, प्रवीण पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा है, प्रवीण जी ने कनेक्ट हैं प्रोग्राम के साथ, और साथ में शैलेश कुमार, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से। अच्छा, इनके दो मैसेजेस आए हैं फरहत, एक के बाद एक दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फरहत, अब पढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, और अब आप कौन सी बात करने वाली हैं, हमारे लिसनर से क्या शेयर करने वाली हैं फरहत, आपकी बातों के बिटारे में आप क्या है बताइए जरा।
0: जी हाँ, बता देते हैं क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं अपने स्टार्टअप सेगमेंट की ओर, और दोस्तों क्योंकि हम नवा प्रोग्राम है ये और हर दिन हम कुछ ना कुछ नया आपको बताते ही रहते हैं, तो स्टार्टअप सेगमेंट की ओर हम बात करने वाले हैं आज एक फूड टेक स्टार्टअप की। अभी हमने खाने पीने की वैसे बात करी थी, तो एक फूड टेक स्टार्टअप की भी वहाँ पे बात कर लेते हैं, और क्योंकि भाई वीकेंड है तो मुझे लगता है आज की एक पार्टी जो है ना वो धमाकेदार होने वाली है शुक्रा। अच्छा एक बात बताओ,
1: ये तो है पार्टी का मुझे बहुत इंतजार भी है।
0: एक बात बताओ कि कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि कोई चीज रोज यूज करते हो लेकिन उसके पीछे की कहानी के बारे में कभी सोचा ही ना हो?
1: हाँ, ऐसा तो कई बार होता है, और कई बार मैं यूज़ करते समय सोचती हूँ कि इसके पीछे की क्या कहानी होगी, ये कैसे चल के मेरी थाली में आ गई, सामने मैं खा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अकेले बैठे बैठे दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है।
0: इसी तरह की एक सोच जागी थी हमारे एक इंडियन स्टार्टअप है उनके दिमाग में एक उपज आई थी कि भाई इसकी नींव रखी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसकी शुरुआत हुई थी 2017 में,
1: और इसके पीछे आईआईटी दिल्ली के दो दोस्त आकाश शर्मा और अभिषेक अग्रवाल हैं। अगर हमें सुन रहे हैं तो उनको भी बड़ी खुशी हो रही होगी कि आज उनका नाम अनाउंस हो रहा है हमारे प्रोग्राम के साथ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये शुरुआत किसी बड़े ब्रांड की तरह नहीं हुई, बस सोच नहीं थी।
0: जी हाँ, शुरुआत में ये एक B2B जिसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस है ना, ऐसा बिजनेस था यानी किसानों और व्यापारियों के बीच काम करता था। तभी इन दोनों ने महसूस किया कि किसान और ग्राहक के बीच इतने मीडिएटर्स क्यों हैं। कई बार इससे क्या होता है कि क्वालिटी भी प्रभावित होती है और कॉस्ट भी इफेक्ट करती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कॉस्ट बहुत हाई पहुंच जाती है और कस्टमर की थाली तक आते आते तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो ये एक सवाल इन दोनों के मन में आया कि क्या किसानों से सीधे जुड़ के लोगों को एक बेहतर और हेल्दी स्नैक्स पहुंचाए जा सकते हैं,
0: और इसी सवाल से 2021 में इस फूड टेक स्टार्टअप ने बड़ा कदम उठाया दोस्तों, और डायरेक्ट टू कंज्यूमर जिसे कहते हैं D2C इस मॉडल में प्रवेश किया, और अब कंपनी सीधे ग्राहक तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने लगी है।
1: और ये स्टार्टअप फरहत क्या है, आज सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, ये इन्होंने ड्राई फ्रूट्स का स्टार्टअप किया, ये जैसे कि आपका काजू हो गया, बादाम हो गया, मखाना हो गया, तो ये केवल ड्राई फ्रूट बेचने वाला नाम नहीं है बल्कि इसके पोर्टफोलियो में 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, जिसमें रोस्टेड बादाम, काजू, स्नैक्स, सीड मिक्स और लो शुगर वाले डेट बाइट्स भी हैं।
0: राइट, और इनके सबके साथ ही एक और बात जिसने लोगों का भरोसा जीता है दोस्तों वो था उनका क्लीन लेबल फोकस। इनका कहना है कि ये टेस्ट और हेल्थ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को कम प्रोसेस्ड और बेटर ऑप्शन मिल सके।
1: बिल्कुल, बेटर ऑप्शन मिलेगा तो लोग उस तरफ तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। और एक और खासियत है कि इसके एक सप्लाई चेन है फरत, और आज ये 5000 से भी ज्यादा किसानों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, खेती वाले क्षेत्रों में नजदीक प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ ये काम करते हैं ताकि खेत और ग्राहक के बीच की दूरी कम हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा
0: स्टेप उठाया है,
1: इसे कहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, और सबका नतीजा भी देखो कितना अच्छा है शिप्रा। एक छोटा सा बिजनेस टू बिजनेस कारोबार धीरे धीरे भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हेल्दी स्नैक ब्रांड में शामिल हो गया है, और इस स्टार्टअप ने करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग भी जुटाई है और कारोबार लगभग 400 करोड़ रुपए से आगे निकल चुका है।
1: साउंड गुड, और बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है जो ये आप बात बता रही है। और ये जो प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं, और साथ ही देश भर के हजारों रिटेल स्टोर्स में भी मौजूद हैं।
0: बिल्कुल शिप्रा, मुझे इस स्टार्टअप की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें कोई जादू नहीं है, ना कोई रातों रात सफलता, ना कोई शॉर्टकट, बस एक समस्या को करीब से देखा गया, उसे समझा गया और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई,
1: और यहीं से एक अच्छी सी शुरुआत हो गई। शायद यही स्टार्टअप की असली ताकत होती है। स्टार्टअप नाम यही है, और हर बड़ा कारोबार किसी बड़ी पूंजी से नहीं बल्कि एक बड़े सवाल से शुरू होता है। बिल्कुल फरहत, ये सच है। और कहीं अगर आपके मन में भी कोई ऐसा आइडिया है जो लोगों की रोजमर्रा की समस्या को हल कर सकता है, तो प्लीज उसे केवल एक ख्याल सोचकर

0: करके ना छोड़ दीजिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि कौन जानता है कि आज एक छोटा सा विचार कल की अगली बड़ी सफलता की कहानी बन जाए। तो दोस्तों, आप भी लिखिए नई कहानी अपनी नई सोच के साथ, और सुनते रहिए हम नवा आरजे फरहत और आरजे शिप्रा के साथ।
0: और फरहत, एक मिनट का वेट करिए आप, ये हमें आपने लिखने की बात करी तो मुझे एक और मैसेज दिखाई दे गया है। हमारे लिसनर है सोनू परवाना, जिन्होंने क्या लिखा है पढ़ दीजिए आप।
1: जी हाँ, ये लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव से आया है तो मदद करो, और प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। परमात्मा खुश है और आप भी खुश हो जाओ।
0: हम भी खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाइए। इस गीत के साथ पहुंचने को है तैयार, आप तक ये रहा आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर।

0: बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक फरहत, आप एक के बाद एक खूबसूरत से खूबसूरत ट्रैक लेकर के आ रही हैं। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं, आप सुन रहे हैं हम नवा, और आज हम नवा में मैं हूं शिप्रा चंद्रा आपके साथ, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट कम दोस्त फरहत।
1: बिल्कुल, जो खुद पर भरोसा करते हैं उनका व्यक्तित्व ही सबसे अनोखा नजर आता है, और शिप्रा ये आपके लिए है।
0: वाह,
1: और आपको देखकर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है मुझे, मानो आप कभी थकती ही नहीं, रुकती ही नहीं, एकदम फास्ट एंड एनर्जेटिक। तो क्या राज है आपके व्यक्तित्व का, शेयर कीजिए।
0: क्या बात है, ये इतना सारा कुछ सुन करके मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी है और भी ज्यादा चार्ज हो गई लग रहा है। और सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, और फरहत एनर्जेटिक फील कराने के लिए मैंने खुद से कुछ प्रॉमिस भी किए। अब आपने इतनी बात कही तो मैं भी अपनी बातें बता देती हूँ। अच्छी डाइट, समय पे सोना, समय पे उठना, मेडिटेशन और योग, और योग की मेरी लाइफ में अहम भूमिका है। तो ये सारी राज है।
1: ये सारे राज हैं मतलब आपके एनर्जेटिक अंदाज का। और जरा कैलेंडर पर निगाह डालिए, सारा जगत योगमय होगा। एक साथ 21 जून को हम मनाएंगे इंटरनेशनल योगा डे 2026, और इस वर्ष की थीम है शिप्रा स्वस्थ आयु के लिए योग, मतलब योगा फॉर हेल्दी ऑर्गन्स।
0: बिल्कुल, योग करें और निरोग रहें। और फरहत, बहुत सारी चीज़ें योग का हिस्सा होती हैं, और जो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वो डीप ब्रीथिंग, ये भी योग का हिस्सा है। अगर आप सुबह उठ करके 5 मिनट सुकून के साथ बैठकर प्राणायाम करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, तो देखिए कितना लाइट फील करते हैं आप। तो योग के साथ जुड़ना है ज़रूरी दीर्घायु और निरोगी शरीर के लिए। इसके अपने फ़ायदे हैं लाइक फिजिकल फिटनेस, मेंटल पीस, और साथ ही ये फोकस भी बढ़ाता है, और किसी काम को करने का आप अच्छा आपको लगता है और आप फील करते हैं एनर्जेटिक। और इसी के साथ अब हमनवा से योग के बारे में और भी जानकारी दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं योगाचार्य रविंद्र श्रीवास्तव।

0: आपसे ध्यान और योग की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति के बारे में बात करूंगा। योग केवल शरीर को जोड़ने या मोड़ने और खींचने का अभ्यास नहीं, योग युज शब्द से आया है, इसका मतलब है आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम। और इस मिलन को सबसे गहराई तक ले जाने वाली सीढ़ी है ध्यान। ध्यान यानी चेतना का केंद्र में स्थिर हो जाना। जब हम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो विचारों का जो शोर है वो धीमा पड़ता है और हमारे भीतर तक शांति उतरती है, जो बाहर की दुनिया के तूफानों से हमें अटक बनाए रखती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ तनाव, चिंता और अनिश्चितता चारों ओर होती है, वहीं ध्यान एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा उपकरण है जो हमें अपने अंदर झांकने, खुद से जुड़ने और सच्चे अर्थों में स्वस्थ होने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। योग का अभ्यास जब ध्यान के साथ जुड़ता है तो न केवल लचीलापन आता है शरीर में बल्कि मन भी शांत होता है। ये मन की वह अवस्था है जहाँ जवाब नहीं बल्कि जागरूकता मिलती है। तो आइए हम रोज कुछ पल अपने लिए निकालें, हम अपनी सांसों को महसूस करें, शरीर को योग के माध्यम से एक नई ऊर्जा प्रदान करें और मन को ध्यान के माध्यम से स्थिर करें, क्योंकि सच्चा स्वास्थ्य केवल बाहर नहीं भीतर से आता है। योग करें, ध्यान करें और खुद को पहचाने। लोगों की प्लानिंग चल रही है, जब से योग महोत्सव 21 जून का दिन निश्चित हुआ है तब से हम लोग हर साल योगा के माध्यम से 21 जून को हम लोग एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं, जगह योग की कक्षाएं कराते हैं और योगों के बारे में जागरूक करते हैं। उसकी सारी तैयारियां हम लोग शुरू कर देते हैं। रोज एक प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस सेशन चलता है, किस तरह के माध्यम से आसन को करना है, कैसे ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है, कैसे ब्रीदिंग और आसन को कनेक्ट करते हुए शरीर को ध्यान की स्थिति में ले जाना है, तो इन सब की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो नियमित रूप से जो है योग की कक्षाएं हमारे सेंटर में संचालित होती हैं, जिसके माध्यम से शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है ये बताया जाता है। इसी के साथ मैं डॉक्टर रवि कुमार श्रीवास्तव अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।
1: तो आचार्य रविंद्र श्रीवास्तव ने योग के बारे में बताया। इंटरनेशनल डे योगा डे सेलिब्रेट करेंगे हम कल 21 जून को, और जिसके लिए कानपुर है तैयार और हम हैं तैयार अपने रेसिपी सेगमेंट के साथ।
2: बिल्कुल, अब हम आ पहुंचे हैं अपने रेसिपी सेगमेंट में। और शिप्रा, आज क्या खिलाने वाली हो वैसे तुम?
1: अब देखिए, खिलाने की बात करिए तो इस खिलाने की बात पे जून की इस गर्मी में मैं आपको कुछ पिलाने वाली हूँ।
2: जैसे
1: जैसे कि अब बताते हैं आपको थोड़ा सा शायराना अंदाज में, हमारी रेसिपी का भी अपना फसाना है। और गर्मी हो या सर्दी, स्ट्रेस हो, बड़ा बेदर्दी, एक ही चीज है जो रंग जमा दे, प्यास बढ़ा दे, और वो है शाही केसर बादाम मिल्क, ठंडा ठंडा कूल कूल।
2: वाह वाह वाह, मुझे नहीं पता था कि आज स्टूडियो में आरजे शिप्रा नहीं बल्कि शायर शिप्रा आ चुकी हैं। वेल, बहुत ही अच्छे अंदाज में तुमने ये बात कही और आई थिंक थिक, क्रीमी और टेस्टी भी होगा ये।
1: बिल्कुल, तो जल्दी से लाइए 1.5 लीटर क्रीमी मिल्क, बादाम 15 से 20, भीगे और छिलके उतरे हुए केसर 10 से 12 थ्रेड, चीनी 4 से 5 टेबल स्पून टेस्ट के अनुसार, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, पिस्ता बादाम बारीक कटे हुए,
2: और शो ऑफ करने के लिए
1: भाई उसी का तो जमाना है। और पिस्ता और काजू के अपने फायदे भी हैं, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी चीजें होती है, इससे दिल की सेहत में सुधार होता है।
2: बिल्कुल,
1: तो फर्द कढ़ाई लाइए और थोड़ा सा पानी 1/2 कटोरी डालिए और फिर 1.5 लीटर दूध डालिए और इसे उबाल लीजिए।
2: अब उबाल आ गया होगा आपके इस दूध में, तो बादाम को इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए और गर्म दूध के साथ पीस लीजिए, और फिर उबलते हुए दूध में शिप्रा ये बादाम का पेस्ट मिलाइए।
1: बिल्कुल, मिलाइए मिलाइए, चलाते भी जाइए साथ में, 5 से 6 मिनट तक परत लगातार चलाइए, भूल ना चाहिएगा, लो फ्लेम पे। और डियर लिसनर्स, जब तक ये 5 से 6 मिनट तक दूध चला रही है तब तक क्या करना है, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर में दूध डालकर इसका घोल बना लेते हैं।
2: और इस कस्टर्ड पाउडर के घोल को अब कढ़ाई में दूध के साथ मिला दीजिए।
1: बिल्कुल मिलाओ और फिर चलाओ और ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता, दूध कढ़ाई के बाहर छलकने ना पाए फरहत। और तब तक मैं क्या करती हूँ, केसर को 4-5 चम्मच दूध में भिगो देती हूँ।
2: अब क्या करना है दोस्तों, ये दूध गाढ़ा हो चला है तो शिप्रा इसमें इलायची पाउडर भी डाल देते हैं और फिर सिम पर गैस छोड़ देते हैं। अब 10 से 15 मिनट बीच बीच में चलाती जाइए।
1: तो अब क्या करिए,
2: अब गैस बंद करो और पिस्ता काजू ले आओ भाई, गार्निश किए हुए बढ़िया डालो इसके ऊपर और अच्छी तरह से रंगत जो है वो खिलके आई है सामने।
1: अब इसे ठंडा करिए, खिलके आ गई रंगत और फ्रिज में चिल्ड कूल होने के लिए छोड़ दिया जाए फरहत। और जब तक ये फरहत ने भाई डिश बना दी, मैंने बताई थी लेकिन बनाई फरहत ने, और जब तक ये मिल्क ठंडा हो जाए, चिल्ड हो रहा है, तब तक हमारी बातों के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। फरहत ये बताइए कि आज आप ये अपनी पार्टी में मेरी ये वाली रेसिपी रखने वाली है कि नहीं रखने वाली है?
2: बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि गोल गप्पा के साथ
1: क्या बात,
2: और ये बादाम मिल्कशेक, मतलब क्या ट्राई करना चाहोगी शिप्रा?
1: बिल्कुल,
2: कभी खट्टा कभी मीठा।
1: नहीं नहीं, वो खाने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग ये चिल्ड वाला रेसिपी भी ले सकते हैं। और ये जो शाही आपके केसर ठंडे दूध की बादाम मिल्क की रेसिपी है, आहा उसका क्या कहना?
2: बिल्कुल, क्या कहना तो दोस्तों, जैसे इस प्रोग्राम का क्या कहना कि हमनवा प्रोग्राम आप लगातार सुन रहे हैं 11 बजे से मेरे यानी आज फरहत और साथ में है मेरी।
1: तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है कि फरहत जो आज ये पार्टी देने वाली है उसमें मैंने कुछ चीजें और बढ़ा दी हैं, और देखिए मैं शाम तक और क्या क्या बढ़ाने वाली हूँ मुझे खुद भी नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि आपसे कहा जाए टाटा, ओके बाय। तो दीजिए शिप्रा चंद्रा को
2: और फरहत को इजाजत,
1: नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भेजेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2,17,00,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4,352,40,00,000 रूपये भेजे जायेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त के वितरण के दौरान झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे। मुख्यमंत्री यूपीए ग्रीच परियोजना खरीफ संस्करण का शुभारंभ भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का

सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे योग सप्ताह के अंतर्गत आज अमरोहा में विकास भवन परिसर में आयुष विभाग द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जनमानस को कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों को सूक्ष्म व्यायाम, विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। साथ ही आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात। उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विभिन्न देशों की मशीनरी, परिधान, चमड़े के सामान, गलीचा और बहुमूल्य रत्नों का निर्यात कर रहा है। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एएम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट के उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान। गजल, ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं।
2: जनाब अली,
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

नहीं, दीदार तो नहीं हो सकता आपका, लेकिन हाँ हमारी मुलाकात जरूर होती है भाई। आप अपने प्यारे प्यारे मेल्स हमें भेजते हैं और हम अपनी आवाज के जरिए आप सभी के साथ जुड़ते हैं। बस यही बहुत है हम सभी को खुश रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। 12:11 का वक्त, मतलब 12:11, ये टाइम भी कैसा चल रहा है। खैर सेकेंड्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, 48, 49, 50, ये देखिए। तो बस इसी तरह से टाइम चल रहा है और आपका हमसे मिलना यहाँ पर हो चुका है। सैटरडे है तो ये जो प्यारे प्यारे से वाइब्स आते हैं ना छुट्टी वाले, वो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। सैटरडे मॉर्निंग्स है एंड आई नो आप लोग की भी जिंदगी में ऐसा ही होता होगा, मतलब

संडे का जो एक लो लो फीलिंग होती है ना, वो सैटरडे संडे को जाकर के बिल्कुल सही हो जाती है। खैर बहुतों के ऐसे हैं, शायद छुट्टी ना भी हो सैटरडे को, लेकिन वाइब्स हमेशा सैटरडे अच्छी दे रहा होता है। संडे से ज्यादा अच्छी वाइब्स सैटरडे को मिलती है, आई एम श्योर आप उसी वाइब्स को जरूर इंजॉय कर रहे होंगे। और इसी के साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि सैटरडे को हम अच्छा छुट्टियां थी, गर्मियों की छुट्टियां ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाली, और सब लोग कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे। कुछ लोग नानी मामी चाची के घर गए होंगे, कुछ कहीं बाहर गए होंगे, कुछ आसपास भी शायद घूमने गए होंगे। और घूमने जाओ जब और उसके बाद वहां से वापस आओ, तो एक चीज माइंड में जरूर रहती है कि आप भैया दुनिया घूमाओ, कहीं भी हो आओ, कितने भी दिन क्यों ना रह रहा हो, एक चीज जो हमेशा आपको मिसिंग रहती है लाइफ में, एक चीज जहां आकर आपको सुकून मिलता है, एक चीज या एक जगह जो आपको लगता आपकी अपनी है, वो होता है हमारा घर, हमारा परिवार और हमारे परिवार के लोग, है ना। ये बिल्कुल ही चीज है और यही हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इन्हीं को मिलाकर हमारा ये प्रोग्राम भी बनता है जिसको हम कहते हैं फैमिली फन। तो बस आज की फैमिली फन में भी हम ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ हमारे रिश्ते हैं, और किस तरह हम अपने घर के लोगों से जुड़े होते हैं, जो शायद एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम चाहकर भी कभी भी खटास के वे में नहीं ले जा पाते, है ना। तो चलिए बहुत सारी बातें करेंगे, बट फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए, और इसी के साथ बहुत सारी बातों और बहुत सारे गानों का जो यहाँ पर मेरे पास पिटारा है उसको भी मैं आपके लिए खोलूंगी। तो फिलहाल अरिजीत की आवाज़ में इस ट्रैक को एंजॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और हाँ, शायद मैं बताना भूल गई हूँ, क्योंकि रत्ना जी पहले ही बता के गई हैं कि इस वक्त है आपकी दोस्त जरीना आप सभी के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हार सिर्फ कुछ लोगों का साथ नहीं होता, बल्कि भावनाओं, विश्वास, त्याग और प्यार, ये सारी चीजों का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। एक खूबसूरत सा संसार होता है जो हमारी जिंदगी को मायने देता है। हमारी माँ की ममता, पिता का संरक्षण, दादी, नानी और ये परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनका स्नेह, भाई बहनों का साथ और बच्चों की मुस्कान, हर रिश्ता अपने आप में बेहद खास, बेहद अनमोल होता है। और जब कहते हैं ना कि किससे ज्यादा प्यार किया जाता है, मतलब हर परिवार में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, तो शायद यहीं पर प्यार जो है वो उसकी डेफिनेशन या उसका दायरा फेल होता है, क्योंकि आप इस चीज को तोल नहीं सकते हैं। हर एक इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी एक अहमियत होती है हम सभी की जिंदगी में, जिसको शायद ऊपर नीचे या ग्रेडिंग करके बयां कर पाना बेहद मुश्किल होता है। भाई अगर हम अलग अलग रिश्तों की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है हमारी माँ, मतलब हम सभी की माँ। और माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर तकलीफ को मुस्कुरा कर सह कर जाती है, और शायद उस चीज़ का कभी हम सबको एहसास भी नहीं होने देती है। उसकी दुआएं हमारे लिए, हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए ढाल बनती है, और उसका प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। बचपन में जब हम गिरते हैं ना, तो या संभलने की कोशिश करते हैं या बोलते हैं, और लोग, मतलब समाज में क्या, घर में भी लोग हमारी बातों को नहीं समझ पाते, उस वक्त वही होती हैं जो हमको समझती हैं, और वहां से लेकर अब तक वो हमको हमेशा ही हर एक चीज में आगे बढ़ाती हैं, आगे लेकर जाती हैं। तो शायद ये वो रिश्ता होता जो सारी चीजों में, सारे रिश्तों में, हर एक एहसास में सबसे ऊपर आ जाता, और शायद इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मुझे लगता है बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि हर परिवार के जो सदस्य हैं उनकी इंपॉर्टेंस को अपनी ज़िंदगी में समझने की, उनके बारे में कुछ कुछ बातें करने की। और हाँ, एक और चीज़ मैं साथ में कहना चाहूँगी कि अगर आपके परिवार में भी कोई एक पर्टिकुलर सदस्य जो है वो जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शायद अहमियत रखता हो, वो अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। आपके मेल्स का इंतज़ार रहेगा, और वैसे कुछ मेल्स जो हैं वो आना भी शुरू हो चुके हैं। मतलब मैंने ऐसा कुछ टॉपिक आपको नहीं दिया जहां पर आपकी कुछ हमें ओपिनियन चाहिए, तो फिलहाल वो मैंने अब आपको बताया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लगातार हमारे एफएम के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि भैया मोनू सेठ जी, आपने भाई हमारा वेलकम कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजन शर्मा जी का भी मेल यहां पर आया, लेकिन उन्होंने गाने की फरमाइश की है। और ऐसे ही हम पूरी उम्मीद में हैं कि आप भी अपनी जो भी परिवार के प्यारे प्यारे लम्हे हैं, कोई बहुत खास इंसान है आपकी जिंदगी में, या कोई ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो वो जरूर हमारे साथ शेयर करिए। हम यहां पर इंतजार कर रहे हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, आप सभी की रेडियो सेट पर एंजॉय करिए इसको, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जी हाँ दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन। और देखिए 12:31 का वक्त ऐसे भागते भागते होता जा रहा है कि मतलब वक्त को पकड़ना सीरियसली बड़ा मुश्किल होता है। खैर आपको एक अपडेट दे देते हैं कि कल यानी सेम टाइम पे 12 बजे से और 12 से 1 के बीच में आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस सुनेंगे। और आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम रहेगा ये। श्री कृष्ण दत्त मिश्रा जी जो कि एक योगाचार्य

रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, वो रहेंगे आपके साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो बस प्रोग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कल दोपहर 12 बजे। और इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि कार्यक्रम आज के मेहमान में श्री रंजन कुमार जी रहेंगे, जिससे आप जिनकी वार्ता सुन सकते हैं सुभाष खन्ना जी के साथ। और श्री रंजन कुमार जी प्रमुख सचिव हैं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के। तो ये कार्यक्रम भी 21 जून को सुबह 10 बजे सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ भाई आपको बता देते हैं कि प्रोग्राम फैमिली फन में और ये जो परिवार की बातें होती है वो चल रही है, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि हर रिश्ते की हमारी जिंदगी में एक अलग एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, जिसको शायद अलग तरह से बयां करना अलग तरह से कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ मेल्स भी मैंने कहा था, अगर आप किसी परिवार के पर्टिकुलर सदस्य के लिए कुछ भेजना चाहते हैं तो जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक ही बात लिखकर दी है कि भाई माँ का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्ते से सबसे ऊपर हो जाता है। भैया मोनू सेठ जी ने भी मेल लिख दिया है कि भाई माँ का रिश्ता दुनिया से सबसे ऊपर है, सबसे पवित्र रिश्ता है, अनमोल और निस्वार्थ रहता है। ये केवल एक जैविक बंधन नहीं बल्कि प्रेम, सुरक्षा, त्याग और जीवन के पहले मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसी के साथ

0: तो जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक ही बात लिखकर दी है कि भाई माँ का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्ते से सबसे ऊपर हो जाता है। भैया मोनू सेठ जी ने भी मेल लिख दिया है कि भाई माँ का रिश्ता दुनिया से सबसे ऊपर है, सबसे पवित्र रिश्ता है, अनमोल और निस्वार्थ रहता है। ये केवल एक जैविक बंधन नहीं बल्कि प्रेम, सुरक्षा, त्याग और जीवन के पहले मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसी के साथ साथ और भाई किसका किसका मेल आया हुआ है। पिंकू सोनी जी ने लिखा है कि मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मेरी माँ का ही अहम रोल होता है, मेरे साथ नहीं है। इन्होंने लिखा है थैंक एट माई मेल, टिकैत नगर बाराबंकी से ये मेल इन्होंने लिखा है। और पिंकू जी, मैं मानती हूँ कि इस समय या आज के समय में आपकी माँ आपके पास नहीं है, लेकिन ये वो रिश्ते होते ना जो शायद हमेशा ब्लेसिंग बनकर हमारे साथ रहते हैं। उनका एहसास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल लिखने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखने के लिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
4: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
3: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
4: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड कानपुर, पिन कोड है 208002।
3: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
1: हमारी जनगणना, हमारा
2: विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: उस इंसान से हमेशा उसकी खैरियत पूछते रहिए और हाँ, ये भी कोशिश करिए कि वो जवाब में सिर्फ ये ना कहे कि हाँ भाई सब बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, जो उसके दिल की बात हो, जिस तरह का वो इंसान उस हालात में हो वो आपको बता सके। तो ये खैरियत पूछना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है हर किसी की ज़िंदगी में। बस ऐसा ही कुछ ये गाना भी है। इन्जॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

जी हाँ दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन। और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई हम सभी की जिंदगी में अपने परिवार के सदस्यों की जो अहमियत होती है वो बिल्कुल अलग अलग तरह से होती है। और हम वही आपसे जानना भी चाह रहे हैं कि आपके किसी पर्टिकुलर सदस्य की आपके परिवार में आपको क्या लगता है, क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे मेल्स यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बात कहूंगी। एक्चुअली होता है क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जिनको बच्चे बड़े पसंद होते हैं और कुछ को लगता है ना कि भैया बच्चे हमसे दूर ही रहें तो बेहतर है। मतलब कुछ को लगता है कि बच्चे बड़े इरिटेटिंग होते हैं। लेकिन एक सही बात जो है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में है, हमारी इंडियन फैमिलीज में है, वो ये है कि बच्चे जो है वो ऑब्वियसली हर घर की, हर परिवार की रौनक होते हैं, है ना। अगर हम असली रौनक की बात करें, असली चहल पहल की घर में बात करें, तो वो बच्चे ही होते हैं। आप कभी अज्यूम करके देखिए कि जिस घर में बच्चे हैं, और अगर 2-3 घंटे के लिए भी वो बच्चे अगर गायब हो जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, और आप उस घर में एंटर होकर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना सन्नाटा है इस घर में। मतलब घर की दीवारें ना काटने को एकदम दौड़ती हैं। तो बच्चों की जो चहचहाहट है, या जो उनकी किलकारियां हैं, या जो उनकी शरारतें हैं, वो हमेशा से ही हर परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी चमक का काम करते हैं, जो हमेशा बढ़ती ही जाती है। बच्चे बड़े होते हैं, उनकी हरकतें, उनकी बातें, उनकी चीजें बढ़ती हैं, जो परिवार को एक बहुत अलग तरह से बांधे रहती हैं, है ना भाई। जब हम बात करते हैं ना बच्चों की हंसी, उनकी शरारतों की, उनकी मासूम बातों की, तो ऑब्वियसली देखा जाता है कि खुशियां बिखेर देती हैं। वो हर किसी की जिंदगी में होता है। और अगर आप कितने भी उदास क्यों ना हो, आप बस आधा एक घंटा बच्चों के साथ बिताकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है, कितनी एक्साइटमेंट्स के साथ भरी हुई है। तो चलिए इसी के साथ भाई अगला जो मेल है वो शामिल कर लेती हूँ। रविंद्र सिंह ने हमें मेल लिखा है राजेंद्र नगर लखनऊ से। अरे वाह, पास से ही ये मेल आ गया है। और इन्होंने जो लिखी है बात, वो ट्रस्ट मी मुझे बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात लगती है। इन्होंने लिखा है कि जो घर के बुजुर्ग हैं वो अनुभवों का खजाना होते हैं। उन्होंने लिखा है घर में दादा दादी या नाना नानी को होना किसी भी बरकत से कम नहीं होता। उनकी कहानियां सिर्फ

मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन के अनमोल सबक, जीवन को अनमोल सबक सिखाती है। उनके पास अनुभवों का ऐसा खजाना होता है जो पीढ़ियों को जोड़कर रखता है। उनकी बातें, उनका स्नेह और उनकी दुआएं परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और आगे ये लिखते हैं कि बचपन में उनकी गोद में बैठकर सुनी गई कहानियां, उनके हाथों का प्यार शायद ही कभी भुलाया जा सके। वो परिवार की उस जड़ की तरह होते हैं जो हर सदस्य को अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जोड़े रखते हैं। तो बस ये लिखकर दिया है रविंद्र सिंह ने, और सीरियसली ये बहुत ही बड़ी बात लिखकर दी है। मतलब आज के समय में शायद ही कोई इस चीज को समझ पाए, लेकिन ये रियलिटी है। आप अगर नहीं भी समझेंगे, समझने से इनकार करेंगे, तो आप इस सच्चाई को कभी भी नकार नहीं सकते हैं कि जो परिवार है, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, वही हमें हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे परिवार से जोड़ते हैं। वो उस जड़ की तरह होते हैं ना कि जो अगर मजबूत नहीं होगी, जो नहीं होगी, तो शायद वो पेड़ ना बन पाए, उस पेड़ पे फल फूल ना आ पाए और उसमें हरियाली कभी नहीं आ सकती। तो थैंक यू सो मच रविंद्र जी, आपने इतना प्यारा मेल लिखा, इतनी प्यारी बात उसमें लिख कर दी। और इसी के साथ और भी मेल्स आए हुए हैं जी। किसका मेल है? ये अमेठी से मेल आया हुआ है, ग्राम गौतमपुर से। और मेल क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल जो अगला गाना है वो आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंचाऊंगी। तो बस भाई बहनों की बात हुई, उनके रिश्तों की बात हुई, उनके रिश्तों की चमक की बात हुई, तो ये गाना कैसे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता।

जी हाँ, इतना प्यारा सा गाना है, तो बस बिल्कुल रेडी हो जाइए इस गाने करते हैं। मैं बस देखती हूँ अगला क्या आपको सुनाऊं, क्या बातें करूंगी, और जो मेल है वो बस शामिल करने की तैयारी करती हूँ। फिलहाल सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
5: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
4: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
5: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं,
6: धड़कन लखनऊ की
5: 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, 12:50 का वक्त हो चला है। प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन, और फैमिली फन में बहुत सारी बातें आपके साथ हो रही है। और भाई, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने गाना सुना रक्षाबंधन फिल्म का, ऑब्वियसली उसको सुनते हुए एक चीज जो मुझे लगता है जो कभी भी मिस आउट नहीं हो सकती है, जो कहीं से भी कम नहीं हो सकती है, वो है भाई बहन का प्यार। भाई भाई बहन का जो रिश्ता है शायद दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता होता है ना, सबसे स्पेशल, सबसे डिफरेंट, जिसमें दोस्ती भी होती है, लड़ाई भी होती है, शिकायतें भी होती है और बेशुमार प्यार भी होता है। बचपन की शरारतें हो, छोटी छोटी नोक झोंक हो, या फिर एक दूसरे को परेशान करने की जो अनगिनत किस्से हैं, यही यादें जिंदगी भर चेहरे पर मुस्कान लेती आती है ना। आप भी शायद इस चीज को कोरिलेट कर सकते हो ना, कि मतलब बचपन में आपने अपने भाई से, अपनी बहन से जिस तरह से लड़ाई की होगी ना, मतलब ये मार, वो उठाओ, पटक, ये वो, तो अगर जब बड़े हो जाते हैं ना, कुछ टाइम उस चीज को बीत जाता है, या जब आप अच्छी एज में आ जाते हैं, आपको लगता है कि अब ये सब नहीं करना, तब वो किस्से जब आप याद करते हैं तो सीरियसली वो लाइफ के सबसे फन लविंग मोमेंट्स हो जाते हैं ना। कितनी भी क्यों ना बहस हो जाए भाई बहन से, लेकिन मुसीबत के समय वही जो है वही सबसे पहले काम आते हैं, साथ खड़े दिखाई देते हैं, और यही वो लोग होते हैं जिनसे हम अपने दिल की हर बात को आसानी से शेयर कर लेते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो भी हमें पता होता है कि ये फला बंदा, मतलब मेरी बहन या मेरा भाई, जाके मम्मी पापा को जरूर कान में ये बोल देगा या नहीं बोलेगा। तो ये सारी चीजें हम सभी के माइंड में हमेशा चला करती हैं, और एक वक्त के बाद यही सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत रिश्ता बनता जाता है। तो चलिए, गाना अगला हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेल्स भी यहाँ पर कुछ आए हुए हैं, तो उनको भी शामिल कर लेती हूँ। मैं सौरभ, उत्तर प्रदेश जिला मेठी ग्राम गौतमपुर से ये लिख कर दिया है सौरभ जी ने, और लिखते हैं, मैम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। इन्होंने लिखा है, हम भी अच्छे हैं, आशा है कि हम सब अच्छे हों। बिल्कुल सब ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छे होंगे। इन्होंने लिखा है कि हमने दो लाइंस लिखी हैं, ये लाइंस हमने खुद लिखी हैं, तो लाइंस कुछ इस तरह है कि कुछ गुजारिश है रब से कि कभी दूर ना होवे वो हमसे। आप समझ रहे हो ना, हम सब समझ चुके हैं कि इन लाइन से और कुछ नहीं हो, मतलब इन्होंने

ये पर्टिकुलर लाइंस लिख दी हैं और आगे लिखते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कहूंगा और हम दो लोग आपको सुन रहे हैं, प्रिंसी और सौरभ। बाकी सभी लोग इनके घर में सो रहे हैं और हम आपका प्रोग्राम सुनते सुनते मैथ्स के सवाल हल कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ स्टडीज भी आप करते जा रहे हैं। तो चलिए अपने आप सवाल हल करते करते इतनी प्यारी आपने बात लिख दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए। नेक्स्ट है अंशु गुप्ता जी, लिखते हैं मैम जी नमस्ते, मैं नारायण गुप्ता। ओके, मेल आईडी अलग है, अंदर इन्होंने नाम लिखा हुआ है कि नारायण गुप्ता टिकैतनगर से हूँ। मेरे जीवन में मेरा पूरा परिवार इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए माता पिता का साथ और फैमिली का प्यार हमें मजबूती प्रदान करता है। मेरे दोस्त हैं पिंकू सोनी। ओ, पूरा परिवार, पूरे दोस्त सब मिलकर मेल कर रहे हैं। पिंकू सोनी जी का पहले भी मेल आ चुका है और उनका नाम जरूर ले लेना, इन्होंने लिखा है। उन्होंने हमें रेडियो सुनने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने लिखा है कि ऐड माय मेल। तो देखिए आपका मेल जो है वो ऐड हो चुका है। और पिंकू जी थैंक यू सो मच, आप जिस तरह से प्रमोट कर रही हमारे चैनल्स को, हमारे एंकर्स को, हमारे प्रोग्राम्स के लिए, वो बहुत बहुत शुक्रिया। और अंशु गुप्ता जी का फिर से भी मेल आया, तो दोबारा नहीं पढ़ते हैं। सोनू परवाना जी क्या लिखते हैं, हमारे सभी बहनों की शादी हो गई है। वैसे इस समय एक बहन मेरे पास है क्योंकि गर्मियों में घूमने आई है और सबसे मिलने आई है। आंचल सेठ ने ये मेल लिखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ फैमिली। वी आर सो प्राउड कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि अगले मेल में एक्चुअली लिखा है कि बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार नहीं मांगती, बड़े उपहार, रिश्ता बना रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियां हजार। बहुत प्यारी बात लिखी है। भैया मोनू सेठ जी क्या लिखते हैं, भाई और बहन का रिश्ता बना कर रखें क्योंकि जैसे भाई भाई जैसा भाई दोबारा नहीं मिलता और मेरे भैया मेरा अभिमान है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू सेठ जी। और देखिए पता है बहुत बार क्या होता है ना कि ये जो बातें आपने लिख कर दे दी ना कि मेरे भैया मेरा अभिमान है या मेरी बहन मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है या मेरी माँ जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है या मेरे पिता या मेरे दादी दादा, वो बहुत बार ये हमारी परवरिश उस तरह की होती है या हम उस तरह के माहौल में पले बड़े होते हैं कि हम ये बातें उनको नहीं जल्दी कह पाते हैं। और ऐसे में रेडियो या जो हमारा चैनल है वो एक बहुत खूबसूरत जरिया बनता है जहाँ पर आप इतनी प्यारी प्यारी बातें आप अपने अपनों तक पहुँचा पाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारी ये बातें लोग अपने, जैसे भैया मोनू सेठ ने लिख दिया ना अपने भाई के लिए, मुझे पता शायद ही आप कभी ये बात सामने से अपने भाई को बोल पाए, लेकिन जब हमें जरिया मिल जाता ना तो हम बेझिझक दिल खोल कर अपनी बातें अपने अपनों के लिए, अपने प्यार के लिए कह पाते हैं। तो इतने सारे मेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए भी और हमारी बातें सुनने के लिए भी। और हम यही चाहेंगे कि भाई आपके अपने परिवार में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी क्लोज्ड हैं आप, जिनके जो आपके अपने करीबी हैं, वो हमेशा आपके साथ रहें और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। तो चलिए अब इसी बात के साथ मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से, फैमिली फन से इजाज़त। अगला प्रोग्राम लेकर जल्दी से वापस आती हूँ। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति की सादगी, विनम्रता, साहस और जनसेवा की प्रतिबद्धता देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने पूरे राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा की है और विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए उनका अटल समर्पण बहुत ही प्रेरणादायी है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रपति को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट से अनुरोध है कि सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। श्री योगी कल अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रूपये से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन द्वारा कल गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर के मध्य 2 जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये सभी ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित श्रेणी की होंगी, जिनमें कुल 12 कोच लगाए जाएंगे। वहीं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तरफ से भी विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। उधर राजधानी लखनऊ में नीट परीक्षा 75 केंद्रों पर फिर से कराई जाएगी। इसके ये प्रशासनिक तैयारियां पूरी की गई हैं। जिलाधिकारी विशाख जी ने सभी केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। सभी को 1 दिन पूर्व केंद्र पर जाकर केंद्र व्यवस्थापक से आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अभ्यर्थियों को बीती रात 12 बजे के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों और सिटी बसों के टिकट में 50% की छूट मिल रही है। कल दुनिया भर में मनाया जाएगा इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योगों के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें भारत

की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: सात रंग का इंद्रधनुष है,
7: सात सिरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर, साथ हमारा हरदम है। जिंदगी के सतरंगी रंग
7: FM रेनबो के संग।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मुराद तकसीम की। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के एक वर्चुअल सामेईन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की नौजवान ताकत पर बहस कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम का मकसद पहली बार मुलाजमत के मुतलाशियों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनत के दरमियान पुल बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस स्कीम से बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हुई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों की ख्वाहिशात, हुनर और सलाहियतें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की राह हमवार करती हैं।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस पहल के तौर पर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर समेत रियासत के 17 जिला में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 290 करोड़ रुपए से ज्यादा के 245 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। कबल चीफ मिनिस्टर ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती डिवीजनों के महकमा तामीरात आम्मा के साथ मीटिंग की और 13 बड़ी सड़कों की तरक्की को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए के 1,000 से ज्यादा तरक्याती मनसूबों की तजावीज को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स ममालिक के साथ तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के रवाबत को बढ़ा रहा है। रियासती हुकूमत ने इतला दी है कि माली साल 2025-26 के दौरान ब्रिक्स ममालिक और शराकतदार ममालिक को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बरामदात की।

0: गई। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्तलिफ ममालिक को मशीनरी, गारमेंट्स, चमड़े के सामान, कालीन और कीमती पत्थर बरामद कर रहा है। रियासती हुकूमत के एक बयान के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक को 3 अरब 94 करोड़ डॉलर और पार्टनर ममालिक को तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स ममालिक और माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइजेस सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में गुज़िश्ता 12 सालों में गैर मामूली तब्दीली हुई है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हुकूमत की इन तब्दीलियों के इकदाम के बारे में जानें, जो एक मजबूत हिंदुस्तान के विजन को पूरा कर रही हैं।
1: सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कल के नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर मॉक ड्रिल करेगी। ये मश्क इम्तिहान से कबल तैयारी के मेयार का जायजा लेने के लिए की जा रही है। दरियास्ता नीट इम्तिहान 2026 के उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन इंतजामिया की तरफ से कल 21 जून को गोरखपुर और लखनऊ गोरखपुर के दरमियान दो जोड़े गैर महफूज इम्तिहानी खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरियास्ता शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन भी 21 जून को खसूसी गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेन चलाएगा। और महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी इलाकों के कुछ अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। 1:16 का वक्त हो चला है। जरीना आपकी दोस्त एक बार फिर से जुड़ चुकी है आप सभी के साथ अगला प्रोग्राम यानी होंठों पे तेरी बात लेकर। और भाई आप हमेशा से ही जानते हैं, हर रोज आपको वही काम करना होता है। होंठों पे तेरी बात में हम एक देते हैं आपको एक टॉपिक और उस टॉपिक पर आपको अपने ओपिनियन, आपकी सोच, अपने विचार हमारे साथ साझा करने होते हैं। तो बस आज ऐसे ही टॉपिक के साथ हम भी बिल्कुल रेडी हैं। वैसे मतलब होता क्या है ना, हम सभी लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्लानिंग लेके चलते हैं। मतलब कभी कभार तो लाइफ टाइम भी प्लानिंग चलती है कि फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, कल को वो जॉब करने लगेंगे, उसके बाद ये बढ़िया सा मकान बनवाएंगे और वहां पर खेत वेत लेके डाल दिया है, उसको बेचेंगे, फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जिंदगी हमारी पूरी सेट है ना। बहुत बार कुछ और भी प्लानिंग चल रही होती है कि भाई ये एग्जाम देने के बाद ये पढ़ाई किया है, अब वो एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जॉब लग जाएगी, लाइफ सेटल है, शादी वादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, बस उसी तरह जिंदगी चलती रहेगी। तो बहुत सारे लोग और लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ जिंदगी में प्लानिंग लेकर चलते हैं। ये तो होगी लंबी प्लानिंग, कुछ लोग तो अगले 2-3 महीने की भी प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई फिलहाल ये काम कर रहे हैं, अगले 2 महीने के बाद वो मकान बनवाएंगे या ये चीज ऐसे करेंगे वो करेंगे और हमारी लाइफ ऐसे चल रहेगी। तो बहुत बार ये होता है कि हम बस सोचते विचार करते रहते हैं और होता कुछ भी नहीं है जैसा हमने सोचा होता है। तो आज मैंने क्या सोचा है कि प्रोग्राम होंठों पे तेरी बात में यही बात शेयर करिए आप। आपको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी वैसी ही चलती है जैसा हम सोचते हैं? आपको क्या लगता है, अब तक आपने जो जिंदगी बिता ली है वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा आपने पहले सोचा था कि इस तरह की आपकी जिंदगी होगी जो अब आप बिता रहे हैं? या इतना सोचना, विचारना, इतनी प्लानिंग करना, ये सब व्यर्थ है, ये सब यूजलेस है।

मेल करिए हमें fmakashwani@gmail.com पर, और ये LUCKNOW वाला लखनऊ है, LKO मत लिखिएगा, मेल नहीं पहुंचेगा हमारे पास। फटाफट से बताइए आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसे आपने सोचा था, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा इतना सोचना, इतना समझना, इतना प्लानिंग करना, ये सब बेकार है। मेल जब तक आप टाइप करेंगे तब तक हम अगला गाना आपको सुनवाएंगे। तो ये रहा प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इसको और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म खट्टा मीठा का ये प्यारा सा खट्टा मीठा सा ट्रैक था आप सभी के रेडियो सेट पर। इसी के साथ 1:23 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, और आपकी बात जो है वो लगातार हम तक पहुंच रही है। हम पूछ रहे थे आपसे कि क्या भाई जिंदगी वैसे ही होती है जैसा हम सोचते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मेल्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ज़रूर एक बात कहूंगी कि भाई ज़िंदगी की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि ये हमें अक्सर वहाँ लेकर जाती है जहाँ जाने के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। मतलब वही होता है ना कि हम जो सोचते हैं वो हो ही नहीं पाता है, जो नहीं सोचा होता वो ऐसा अनएक्सपेक्टेड वे में होता है कि लगता भैया ये तो कभी ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं सोचा था, है ना। कई बार हम जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उसी बंद रास्ते पर कोई ना कोई नया रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। कई बार जो चीज़ हमें उस वक्त हारी हुई सी लगती है वही बाद में हमारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है, ताकत बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मेरी लाइफ में भी प्लानिंग के साथ चीज़ें कुछ भी नहीं हुई हैं। जो चीज़ें जैसी होती जाती हैं बस उसको पॉजिटिव वे में लेते जाइए, बस ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे मेल्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहला मेल जो आया था वो था किसका, पिंकू सोनी जी, बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आई एम श्योर उससे पहले भी प्रोग्राम्स में ये जुड़ी ही रही होंगी। लिखा है इन्होंने, मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी। मेरा मन है कि जो हम सोचते हैं वो करते हैं, पर जो होता पर होता वही है जो भगवान चाहता है। बट इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है इनको, और मेरा मेल इन्होंने लिखा शामिल कर ले, टिकैत नगर बाराबंकी से है इनका ये मेल, और नाम इन्होंने चाहा है कि कुछ हम ले लें, कुलदीप जी, उधौल आकाश जी, और ये कौन है, मुरारपुर रिंकी पिंकी से, अच्छा मुरारपुर से रिंकी पिंकी और गुलाबशाह और सभी लिसनर्स। तो पिंकू सोनी जी, मैं थोड़ा सा कहूँगी कि आपका मेल थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा आप कॉमा फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमें समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कभी कभार आपके शब्द मुझे थोड़ा सा मेरे मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से सर से निकल जाते हैं। खैर, मेल आपका पूरा मुझे समझ में आ गया और मैंने आई होप सारे नाम भी ले लिए हैं। और ये देखिए, देखते देखते इतने सारे मेल्स आ चुके हैं तो फटाफट से मैं इनको शामिल कर लेती हूँ। लिखते हैं सुल्तान राजा जी, हेलो जरीना, अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से। सुल्तान रज़ा, इकबाल रज़ा, जीशान रज़ा, अफजल रज़ा, मोनिश रज़ा, सादिक रज़ा, मम्मी पापा, मैम आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेरा, मैंने जो भी सोचा है वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ये इन्होंने लिख कर दिया है और आगे लिखते हैं कि लेकिन उल्टा उसका ज़रूर होता है। कश्मीर जाएंगे घूमने इन्होंने प्लान बनाया था लेकिन ऐसा हुआ कि जाने को ही नहीं मिला। फिर उसके बाद लिखते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन के जाने को मिला, सिर्फ इसलिए मैंने अब सोचना बंद ही कर दिया। मतलब जो इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं, जो नहीं सोचा वो हो गया, तो सोचना बंद कर दिया इन्होंने। ये बहुत अच्छा है। मतलब देखिए, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना, मतलब हमारी ज़िंदगी, हमारा फ्यूचर, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में ना उतना दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा, बस आपका दिमाग ही खर्च होगा। तो बेटर हम सभी को इसी तरह सोच लेना चाहिए। भैया मोनू सेठ जी क्या लिखते हैं, जीवन यापन पर विचार करना बिल्कुल सही है, ये जिम्मेदारी और परिपक्वता का प्रतीक है। जीवन में जब हम विचार करते हैं तो उसमें रुकावटें, समस्याएं और एक मन में टेंशन बनी रहती है, लेकिन जब हम कर्म करते रहेंगे तो प्रत्येक दिन तो फल मिलना ही है। ओके, ये एक पॉजिटिव सा मेल था जो इन्होंने लिखा है कि भाई जिम्मेदारियों को लेकर के सोचना बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है मोनू जी, मतलब टेम्परेरी अगर हम सोच रहे हैं मेरी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है तो उसको हम निभाते जाएं वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग लेके चलते तो वो होता नहीं है। और जो आपने बोला है ना, कर्म करते रहेंगे फल मिलता रहेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट जो है ये किसका है, विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ी चीनी मिल, जिला सीतापुर से है ये मेल, होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम करने वाली बहन को गुड आफ्टरनून इन्होंने लिखा है और सादम प्रणाम लिखते हैं, ये स्वीकार करें विनीत का। ओके, तो ये बिल्कुल स्वीकार हो चुका है। और लिखते हैं, हम तो खेती किसानी करते हैं, जो कुछ थोड़ी बड़ी खेती है उसी में से जो कुछ भगवान दे देते हैं उसी में संतोष करता हूं, और कोई ज़्यादा इच्छा मेरी नहीं है, जो हमें रूखी सूखी मिलती है उसी में मेरा विश्वास भला होता रहता है। बहुत प्यारी

बात है, और यही जिंदगी का फलसफा भी है। जो ऊपर वाला दे रहा है उसमें आप आसानी से खुशी के साथ गुजारा करिए, क्योंकि क्या होता है ना, हर कुछ अच्छी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ या पैसा नहीं होता है। खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका आई थिंक उतना ज्यादा पैसों से रिलेशन नहीं होता है ना। सतीश अनेजा जी क्या लिखते हैं, सलाम जरीना बहन जी, वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं, जब हम परमात्मा से सच्ची मोहब्बत करते हैं और सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी सार्थक रहती है। आप जो भी करने की सोचते हैं तो परमात्मा की दृष्टि आप पर होती है, काम सही ही होता है। मैंने आज तक जो भी करने का सोचा है उससे अच्छा ही हुआ है। एक गांव से छोटे से शहर में बसा था और छोटे से शहर से चंडीगढ़ का निवासी बन गया। ये मेहनत का और ईमानदारी का ही फल मिला मुझे। अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। खुदा ने सांसें दी हैं, जिंदगी दी है, हर रोज सुबह नई सवेरा और नई उमंग देता है, उसको सजदा करता हूँ। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी ने बहुत ही प्यारी बात लिख कर दी है, और ये सच में होता है। मतलब शायद हम उतना जिंदगी का फेज देख पा रहे होते जहाँ पर हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला हमें ये दे दे वो दे दे, बट एग्जैक्टली क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें कभी कभार ऊपर वाला दे देता है, और ये तभी हो पाता जब आप जिंदगी को लेकर पॉजिटिव हो, आप निश्चल हो, आप प्रेम के साथ, समर्पण के साथ अपने जीवन में जो भी काम है उसको करते जाएं। तो सतीश जी, बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारा मेल, बहुत बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। और इसके अलावा महेंद्र, दीपन जी, रामेश्वर जी, इन सबके भी मेल यहाँ पर हैं जिनको मैं आगे ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि अब वक्त आता है कि अगला गाना मैं आप सभी की रेडियो सेट पर भेजूँ। तो बस ये लीजिए प्यारा सा गाना आप सभी की रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के

मैया अवस्था वही, और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है इस समय होंठों पे तेरी बात, आपकी प्यारी प्यारी बात जो है वो हम तक पहुंचती जा रही, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि क्या जिंदगी हमारी बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसा हम सोचते हैं। भाई जिंदगी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जिंदगी किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अचानक आने वाले मोड़, अनचाहे बदलाव और अचानक से आने वाली जिंदगी की जो घटनाएं हैं यही इसे खास बनाती हैं। अगर ये चीज मतलब जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो होने वाला है, वो सब हमारे सोच के मुताबिक होने लगे तो शायद मुझे लगता है ना कि हमारी लाइफ में हैरानी, एक्साइटमेंट, सीखने के मौके ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, है ना। खैर ये तो मेरी अपनी बात थी, देखें आपकी बात क्या है जो प्रोग्राम होंठों पे तेरी बात में हमारे साथ जुड़ने वाली है। भाई बहुत सारे मेल्स आए हुए हैं। महेंद्र दीपन जी क्या लिखते हैं आइए देखते हैं। आदरणीय जरीना मैम जी सादर प्रणाम, मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर जिले से गांव रूर से हूँ। आज के आपके प्रोग्राम होंठों पे तेरी बात को बहुत ही एकाग्रता के साथ सुन रहा हूँ। आज का विषय बहुत गहरा है, क्या आपकी जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसा आपने सोचा था या फिर सोचना व्यर्थ था। इस विषय पर मेरे अनुभव कुछ इस प्रकार है। इन्होंने लिखा है कि बचपन में मैंने भी अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे थे और बहुत कुछ सोचा था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि सब सोचना शायद व्यर्थ था। सच तो ये है कि मेरी जिंदगी वैसी नहीं चली जैसे मैंने सोचा था, बल्कि उससे कहीं अलग और बेहतर चली। आज मैं भविष्य की चिंता में ज्यादा नहीं सोचता हूँ, बस जो सोचा है उसे सहज भाव से, अच्छा इन्होंने लिखा जो होता है उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा बस एक ही उसूल है, जीवन में सब कुछ हो पर कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में जो भी अनचाहा हुआ वो मेरे लिए आज तक का सबसे बेस्ट अनुभव रहा है। मैं अपनी जिंदगी के इस सफर से बेहद खुश हूँ। मेरे संदेश को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी प्यारी प्यारी बात आपने लिख कर दी है। और इससे मुझे एक चीज़ याद आती है कि देखिए हम जब कुछ प्लानिंग लेकर चलते हैं ना, हम कुछ सोचते हैं तो सिर्फ हम उतना ही देख रहे होते हैं जितना हमारी समझ में है। हमें लगता है हमारी आने वाली इस जिंदगी में ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीज़ें होंगी वो नहीं होंगी या जो भी हम सोचते, लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो सिर्फ उस फेस को नहीं देख रहा, वो पूरी लाइफ को हमारी देख रहा होता है। तो वो अपने हिसाब से हमारे लिए हमेशा ही बेहतर सोचता है, जो महेंद्र जी ने लिख कर दिया है। और अगर इस विश्वास के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा और हमेशा ही अच्छा बेहतर ही होता है हमारी जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया। रामेश्वर जी क्या लिखते हैं चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है प्रोग्राम होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन जरीना को सादर प्रणाम। मेल इन्होंने लिखा शामिल कर लें, आपका कार्यक्रम बराबर सुन रहे हैं, हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति कर रही हैं और प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम व पोस्ट मुंगीसारपुर कानपुर देहात से है और इन्होंने सबके नाम लिख दिए हैं और लेकिन उसके साथ जिस टॉपिक पर मतलब आज की बात जो हमने इनसे चाही थी उस पर कुछ नहीं लिखा। सो रामेश्वर जी ये आपने बहुत सिंपल सा मैसेज भेजा, इसको हम आगे भी अगर फॉरवर्ड कर दे तो अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे बात चाहिए थी आज के टॉपिक पर कि क्या जिंदगी वैसे ही चलती है जैसा हम सोचते हैं। और इस पर सतीश अनेजा जी का शायद फिर से मेल आया हुआ है, लिखते हैं ये कि जब हम परमात्मा से मोहब्बत करते हैं और सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं तो आपकी जिंदगी सार्थक रहती है। आप जो कुछ भी करने की सोचते हैं तो परमात्मा की दृष्टि पर आप पर ही होती है, काम सही ही होता है। मैंने आज तक जो भी करने का सोचा है उससे अच्छा ही हुआ है। एक गाँव से, अच्छा ये बात इन्होंने पहले भी लिख दी थी और बार बार भेज दी तो मैं दोबारा नहीं शामिल करूंगी। शैलेश जी लिखते हैं क्या है भाई, नीलू शर्मा रूप, अच्छा ये शैलेश कुमार के नाम से आईडी है, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेल से। हाय जरीना मैम कैसी हो आप, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। इन्होंने लिखा है हमने जो प्लानिंग सोची थी वो बिल्कुल नहीं हुई। स्कूल के टाइम पर मैंने सोचा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन आर्मी में जाएंगे और मैंने बहुत मेहनत की, हाइट की वजह से नहीं लग पाया आर्मी में। उसके बाद मेरी प्लानिंग थी कि मेडिकल ज्वाइन करना है, वो भी सपना रह गया। तीसरा सपना था कि क्रिकेटर बनूंगी, वो उम्र ज़्यादा हो गई तो वो भी नहीं कर पाई। ओके नीलू जी मैं समझ सकती हूँ, एक्चुअली सपने आपके ना ऐसे ऐसे रहे, शायद आपने अगर पहले क्रिकेटर सोचा होता तो वो हो जाता, और हाइट आपको पहले ही चेक कर लेनी चाहिए थी कि कितनी है और कितना क्राइटेरिया है, तो आपका ये शायद सपना भी ना इस तरह टूटता। अच्छा मेडिकल ज्वाइनिंग आपकी हो सकती थी, आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो पाई। खैर ओवरऑल होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही बेहतर होगा। आपने इतने सपने सजाए वो नहीं पूरे हुए क्योंकि ऊपर वाला बहुत बार कुछ बेहतर प्लानिंग हम सभी के लिए लेकर चलता है। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर ही हो, इन तीनों प्रोफेशन को जो आपने चूज़ करने का सोचा था उससे कुछ अच्छा ही हो आपकी लाइफ में।

रचना मिश्रा क्या लिखती हैं, हाय मैम, मैं आपको डेली सुनती हूँ, मैं डेली नहीं आती हूँ। आगे इन्होंने लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खैर मुझे लगता है शायद जब जब आप सुनती हूँ, ये आप तब की बात कर रही हूँ। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, मुझे पुरानी यादों में पहुँचा देता है, जब मैं छोटी थी

संघर्ष है, लड़ते रहो बढ़ते रहो, यही हमारी सोच है। ऊंच गांव मीठी से, ओके, ऊंच गांव मीठी से ये मेल था तो मैंने इसको शामिल कर लिया है। आंचल सेठ क्या लिखती हैं, कुछ अच्छा मांग रही थी ऊपर वाले से, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से कुछ और ही ज्यादा अच्छा हुआ। बहुत प्यारी बात है। और ऐसे मेल्स तो मतलब आई रियली एक्सपेक्ट कि जिंदगी में जो सोचा आपने अगर वैसा हुआ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, ये सभी के लिए और खासकर उनके लिए जिनको ऊपर वाले ने इस तरह की जिंदगी से नवाजा है। दीदी नमस्ते, गुरुग्राम हरियाणा से ये मेल किसने लिखा है? संतोष चौरसिया ने। सोचा हुआ बात 50% सही हो सकती है किसी के भी जीवन में। पूजा भारद्वाज नाम ले लीजिएगा। अच्छा, मैंने नाम ले लिया है। और इनकी मतलब 50% चीजें लाइफ में वैसी होती कि जैसा इन्होंने सोचा था। उसके बाद नमस्कार जरीना जी, किसने लिखा है? नरेंद्र, ये कौन है? नरेंद्र सुधार जी, राजस्थान से ये मेल आया है। इन्होंने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करने का सोचा था उसमें सफल रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी हर काम को माँ बाप के आशीर्वाद। सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, अच्छा सबके नाम लिख दिया इन्होंने। दीदी बबीता राव, दीदी सब लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। मतलब आपने बात नहीं लिखी कि क्या आपने सोचा था और क्या हुआ, बस इतना सा लिख दिया कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ। खैर, हुआ तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है सोनू परवाना जी, लिखते हैं, जीवन एक संघर्ष है, लड़ते रहो बढ़ते रहो, यही हमारी सोच है। ऊंच गांव मीठी से, ओके, ऊंच गांव मीठी से ये मेल था तो मैंने इसको शामिल कर लिया है। आंचल सेठ क्या लिखती है, कुछ अच्छा मांग रही थी ऊपर वाले से, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से कुछ और ही ज्यादा अच्छा हुआ। बहुत प्यारी बात है। और ऐसे मेल्स तो मतलब आई रियली एक्सपेक्ट कि जिंदगी में जो सोचा आपने अगर वैसा हुआ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, ये सभी के लिए और खासकर उनके लिए जिनको ऊपर वाले ने इस तरह की जिंदगी से नवाजा है। दीदी नमस्ते, गुरुग्राम हरियाणा से ये मेल किसने लिखा है? संतोष चौरसिया ने। सोचा हुआ बात 50% सही हो सकती है किसी के भी जीवन में। पूजा भारद्वाज नाम ले लीजिएगा। अच्छा, मैंने नाम ले लिया है। और इनकी मतलब 50% चीजें लाइफ में वैसी होती कि जैसा इन्होंने सोचा था। उसके बाद नमस्कार जरीना जी, किसने लिखा है? नरेंद्र, ये कौन है? नरेंद्र सुधार जी, राजस्थान से ये मेल आया है। इन्होंने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करने का सोचा था उसमें सफल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी हर काम को माँ बाप के आशीर्वाद के साथ ही शुरू करता हूँ। मंदिर में फूल चढ़ाकर करता हूँ, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता और खुद पर नाज है जो आशीर्वाद इनको मिल रहा है। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए, बहुत ही प्यारा आपने मेल लिखा है। गाना इनको एक याद आ रहा है आज के टॉपिक पर, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। यस, और नहीं चलेंगे तो ऊपर वाला चलाता रहेगा, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आगे बढ़ने के अलावा, जिंदगी में आगे चलने के अलावा। रामराज जी क्या लिखते हैं? श्री गणेशाय नमो, होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली से, गाँव पहाड़ीपुर से रामराज, राजूभान, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, सबके नाम इन्होंने लिख दिया है। और प्यार भरा धन्यवाद इन्होंने लिखा है, लेकिन टॉपिक पर कुछ नहीं लिखा है। तालिब अंसारी जी क्या लिखते हैं, जल्दी से पढ़ लेती हूँ, आज का मुद्दा बहुत अच्छा है, जैसे सोच होगी वैसे ही होने लगता है, सिर्फ सोच का डिफरेंस है। पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव होगा। और अस्सलाम वालेकुम इन्होंने लिखा हुआ है, वालेकुम अस्सलाम। एग्जांपल, मान लो अगर हम किसी के काम के लिए लाइन में लगे हों और जल्दी में हों, बगल वाली लाइन में लग जाओ तो लगेगा जो लाइन से हटकर आए थे वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, बाकी ऊपर वाले से के करम से सब कुछ है, अपनी लाइफ से खुश हूँ। और एक तमन्ना थी उम्रा पे जाने की, वहाँ भी हो आए, आई एम हैप्पी। बहुत बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत बात कि आपने जो जो सोचा वो हुआ, आप उम्रा पे भी हो आए। वकील अहमद जी क्या लिखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, होटो पे तेरी बात कार्यक्रम अच्छा लगता है। सोचा कम समय पर नहीं होता है, आम की बाग में खाना खा रहे हैं, आपका अभी आकर खा लें, क्या बात है। मतलब टाइम बिल्कुल हो चुका है, बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें पूछ लिया और हमारी भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया आपने। हवा इन्होंने बताया बहुत बढ़िया चल रही है। अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला।

परवीन जी का मेल यहाँ पर एक और आया हुआ है, इसको भी मैं देख लेती हूँ। ये क्या लिखा है? मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सोचा था। बहुत प्यारी बात। ख्वाब तो हम लाख बुनते हैं पर होता वही है जो रब को मंजूर होता है। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। बहुत प्यारी बात। नेक्स्ट किसका किसका है भाई? मैम जी टिकैत नगर से फिर से मेल आया हुआ है और अपनी कलाइयों पे भरोसा है तो आप जो सोचेंगे वो करके दिखा पाओगे। ये लिखा है किसने? पिंकू सोनी जी ने टिकैत नगर से। और नेक्स्ट किसका मेल है? हेलो डियर जरीना मैम, आपको प्यार भरा नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं शिव पूजन फ्रॉम विलेज लखीमपुर खीरी से। छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, हमदर्द नहीं था कोई, इंसान मतलब ही बहुत थे। सेल्फिश गाय। ओके अनोन, ये कौन है भाई? प्यार भरा नमस्कार, किसने लिखा है और गाने की फरमाइश कर दी है? ओके तो ये मेल अभी नहीं शामिल करूंगी। और आई थिंक ये गीता सेठ जी का भी ले लेती हूँ। जो चाहा था वो नहीं मिला, जो नहीं चाहा वो मिलता गया। संतोषम परम सुखम, ये मिसेस गीता सेठ जी ने लिख कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी, मैम जी नमस्ते, पिंकू सोनी। ओके ये मेल पहले भी आ चुका है तो बार बार शामिल नहीं करती हूँ। तो ये सारे मेल्स थे जो आप सभी ने मुझे भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें आप सभी ने लिख कर दी और मैंने बहुत सारा टाइम भी लिया इतने सारे मेल्स को पढ़ने का। फिलहाल स्टूडियो की जो क्लॉक है उसकी घड़ियां कहती हैं कि भाई अब मेरे इस प्रोग्राम से बाय-बाय कहने का वक्त आ गया है। तो बस यही कहूंगी कि भाई भविष्य की फिक्र करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने आज पर हावी होने देना बहुत गलत चीज हो जाती है। आने वाले कल के लिए मेहनत कीजिए, योजनाएं बनाइए, सपने देखिए, लेकिन आज की मुस्कान और सुकून की कीमत पर नहीं, क्योंकि बेहतर भविष्य की सबसे मजबूत नींव हमेशा बेहतर आज होता है। सो मेक श्योर, अगर आपने आज को बेहतर बना रखा है तो ऑब्वियसली आपका जो फ्यूचर है वो ऊपर वाला जरूर संवारेगा और संवारने की कोशिश करेगा। तो चलिए इसी बात के साथ अब जरीना को दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत। और ये आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना आप सभी की रेडियो सेट पर छोड़े जाती हूँ। एंजॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और आपका अपना जो फेवरेट वाला प्रोग्राम होता है ना हॉटमेल, उसको लेकर के जल्दी से वापस आती हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: five-time world champion, scoring twice in the first half. Vinicius Jr. added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured lines once again. Prime Minister Narendra Modi joins President Draupadi Murmu in Odisha to inaugurate projects worth over 47,600 crore rupees. Government prohibits manufacture, sale and distribution of 16 fixed dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai. And in FIFA World Cup, Brazil register their first win, defeating Haiti 3-0. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों,

0: हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

0: अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाइब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात

0: लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: करुणा वर्मा। तो ये इतने सारे लोगों के मेल थे। और दिनेश जी, बहुत ही अरसा हो गया ये गाना सुने हुए, तो एक काम करते हैं, अभी देखते हैं कौन सा गाना प्ले होने वाला, इसको प्ले करते हैं और उसके बाद ये गाना हम जरूर प्ले करेंगे और उसके बाद देखते हैं कौन कौन से मेल शामिल होंगे और किसका गाना प्ले होने वाला है। फिलहाल ये गाना आप सभी के रेडियो सेट पर, और ये है फ्रॉम द फिल्म क्रिएचर 3D। इंजॉय करिए इस गाने को और उसके बाद इंजॉय करिएगा उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार और वैजयंती माला पर पिक्चराइज था ये प्यारा सा गाना और बहुत ही अपने दौर का फेमस गाना है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत दिन बाद इस गाने को सुना होगा। तो चलिए ये गाना तो हो गया, अब देखते हैं किसकी बारी आती है। हितेंद्र दास जी लिखते हैं, एनी सॉन्ग टू रीड आउट आर नेम प्लीज आरजे जी। हितेंद्र दास, मनस दास, शिफाली दास, मेधाब दास, वर्षा दास और एड्रेस सोनबिल कुदाली असम से ये मेल आया है। बहुत ही प्यारा सा मेल है। देखिए मेल आपका शामिल हो चुका है, आपने गाने की कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, तो बस ये आप सोचिएगा कि अगला गाना जो हम बजाएंगे ना वो आप ही के लिए होगा। ओके, उसके बाद और देख लेते हैं किसके किसके मेल्स आए हुए हैं। अच्छा, जिन्होंने बार बार बार बार मेल्स भेजे हैं उनका मैं नहीं शामिल करूंगी, मैंने पहले ही आपको बोला था। तो निसार अली जी का मेल ले लेते हैं इस वक्त। नमस्कार आरजे जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। इन्होंने लिखा है, किसी भी गीत में इन्होंने लिखा है कि इनका मेल शामिल कर लें। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, इन्होंने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोधराज खुरवाल जी का फिर से आ गया है। अकरम हुसैन प्रिंस जी का भी मेल आई थिंक हम शामिल कर चुके। नहीं नहीं, ये शामिल नहीं हुआ, तो देख लेते हैं इसको। सलाम नमस्ते लिखा है किसने, प्लीज अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करिए। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आरिफ खान, निखत परवीन, मेल शामिल हो चुका है। गाने की ऐसे कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, तो बस अगला गाना आप ही के लिए होगा। अहमद बागवान जी क्या लिखते हैं, इनका मेल शामिल हो चुका है। तो क्या लिखा है इन्होंने वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा ताज मोहम्मद जी का भी मेल शामिल हो चुका है। और ये क्या आ गया है, इम्पॉर्टेंट मैसेज प्लीज। अच्छा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज है और गाना भी साथ में रिक्वेस्ट कर लिया है। कैथल हरियाणा से ये मेल आया है। जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा जी का लिखते हैं, डियर एंकर आपसे विनम्र निवेदन है कि 3-4 लिसनर्स एक दूसरे का और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम बिगाड़ कर लिख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है। ओके, अच्छा, इन्होंने बहुत लंबा सा मेल लिखा है और बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं साथ में, कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ शायद हमारे जो लिसनर्स हैं वो किसी दूसरे के नाम से मेल भेज के नाम बिगाड़े। ओके, तो मैं ज़रूर इस मेल को आगे फॉरवर्ड करती हूँ ताकि आपका जो मेल है वो ज़रूर देखा जाए, समझा जाए और क्या प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ पर ज़रूर विचार किया जाएगा। जयवीर सिंह जी, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इस मेल को मैं ज़रूर आगे बात करती हूँ इस पर और देखती हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो क्या रही है। अच्छा, उसके अलावा शाहनूर अंसारी जी क्या लिखते हैं, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, धन्यवाद लिखा है। ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटिकली जिला बरेली से शाहनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद अंसारी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, और लिखते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे से मेल के लिए। कीर्तनपुरी गोस्वामी जी लिखते हैं, कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, परिवार मूवी का ये गाना सुनना चाहते हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, ये सारे

नाम है और देखिए नाम ले लिया है मैंने, लिखते हैं लास्ट में माय रेडियो माय लाइफ। ओके नेक्स्ट देखते हैं किसका मेल है। ये नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, नमस्कार जरीना बहन जी लिखते हैं ये। पिछला प्रोग्राम होठों पे तेरी बात बहुत अच्छा पेश किया, टॉपिक बहुत खूबसूरत था और इतने अच्छे प्रोग्राम देने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्रोग्राम से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और गाना आपने जो रिक्वेस्ट किया है नरेंद्र जी, मैं कोशिश करती हूँ आपको जरूर आगे सुनवाऊं। आंचल सेठ का लिखा है मेल, आंचल सेठ जी ने लिखा है कि फिल्म आशिकी से ये गाना सुनना चाहती हैं और ये गाना एफएम के लिए जो अपने वादों पर खरा उतरता है। और आगे इन्होंने लिखा है ये सभी आरजेएस के लिए को डेडिकेटेड है और शादी के बाद पुराने परिवार से जुड़े रहते हैं रेडियो के माध्यम से हर वक्त। अच्छा, शादी आपकी हो गई और रेडियो आपको जरिया लगता है, बहुत प्यारी बात है। चलिए तो आंचल सेठ जी मैं कोशिश करती हूँ ये गाना आपका जरूर बजा दूं। सुधाकर जाधव जी क्या लिखते हैं, योग से शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी देह आहे मन शांत रहता है, योग से शरीर को बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। ओके ये योग दिवस और जिस तरह से योग सप्ताह चल रहा है उस पर इन्होंने बात लिख दी है। प्रेम पूर्वक नमस्कार ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से, बहुत सारे लोगों के नाम हैं, श्री सुधाकर, राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश, सर्वद प्रणाली, सानवी, हर्षदा, ये सारे नाम थे और ये भी गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए ये सारे मेल थे जो अभी फिलहाल के लिए शामिल हो चुके हैं और इसके बाद जो गाना आप सभी के रिक्वेस्ट पर बजने वाला है वो है ये वाला। तो ये गाने को हम भेजते हैं आप सभी के रेडियो सेट पर, बहुत ही प्यारा सा गाना है और रूप कुमार राठौर की इसमें आवाज है। एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
4: जी हाँ, देखिए वक्त कितनी तेजी से भागता है कि मतलब उसको सीरियसली पकड़ना बड़ा मुश्किल है, और इस वक्त के बीच में इतने सारे मेल्स को कवर करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। 2:51 और देखिए मेरे कहते कहते 52 मिनट हो चले हैं, और यहाँ पर बहुत सारे अभी भी मेल्स हैं जिनको अभी शामिल नहीं कर पाई हूँ मैं, तो कोशिश करती हूँ जितने मेल शामिल होंगे उतने करती हूँ, और साथ ही नाम तो कोशिश करूंगी सभी के ले लूँ। तो संदीप मक्कर जी का मेल यहाँ पर है, फिल्म बीवी नंबर वन से ये गाना सुनना चाहते हैं। ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुराया, जलंधर से ये मेल आया था। मेल तो देखिए शामिल हो चुका है, लेकिन अब गाना मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहूँगी कि बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, भाई मूसा शेख जी का भी मेल आया हुआ, ये पहले भी शामिल हो चुका है, और राजू मिगलानी जी का भी मेल शामिल कर चुकी हूँ, सुधाकर जाधव जी जी का मेल है, और ये क्या लिखते हैं आपका एक्चुअली ये मेल क्या हो गया। ओके, गुड आफ्टरनून जरीना बाजी, कार्यक्रम हॉटमेल में किसी भी गीत में इनका मेल शामिल कर ले। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल, कमर राही, बेगम रुखसार, रुकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। तो देखिए मेल शामिल हो चुका है आपका। इसके अलावा जय जी का होली चौक उत्तम नगर से मेल है, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु, आराधना, और गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने की है, एंड आई एम नॉट श्योर कि आपका गाना हम बजा पाएंगे क्योंकि अब हमारे पास एक ही गाने का स्कोप रहेगा। उसके अलावा भाई मूसा शेख जी का मेल पहले भी आ चुका है, महेंद्र प्रसाद मोदी जी का मेल, फिल्म मेरे लाल से ये गाना सुनना चाहते हैं, और बहुत पुराने हमारे लिसनर हैं, ओल्ड लिसनर्स ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, और जो गाने की आपने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास एक ही गाने का स्कोप बचता है और वो देखते हैं किसका होगा। विकास जी क्या लिखते हैं, हेलो मैम नमस्कार, मैं विकास, गांव सली, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, मुझे ये वाला सॉन्ग सुनवा दीजिए। आहा, क्या बात है। तो गाना तो फिलहाल देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, और गाना के साथ साथ आपने पूरा पूरा मतलब उसका पोस्टर एंड ऑल सब शेयर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण सिंह जी क्या लिखते हैं, नमस्कार जी, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह, दिलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज, कोई भी गीत ये चाहते हैं कि सुनवा दे और मेल शामिल कर ले। तो मेल देखिए शामिल हो चुका है। इसके अलावा और कौन है, बबलेश पनवार जी आपका भी मेल यहाँ पर आया है, और गाने का जो आपने रिक्वेस्ट की बहुत ही प्यारा सा गाना है, पारस मनी रेडियो श्रोता क्लब है आपका, और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैडी पवार, मनीष पवार, और ये देखिए नाम तो मैंने ले लिया है, डांगरी से बाबूराम जयपाल, और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा से रेडियो दीवाना। ओके, तो ये देखिए नाम इतने सारे आपने मेंशन किया अलग अलग जगह से, नाम तो शामिल हो चुके हैं। सुदर्शन शाह जी का भी मेल यहाँ पर है, हावड़ा ब्रिज से गाना सुनना चाहते हैं, और पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से ये मेल था। उसके अलावा किशोर हवराले जी का मेल है, प्रसारक जी को नमस्कार लिखते हैं, और गाने के बोल बहुत ही प्यारे हैं, उनसे मिली नज़र, लेकिन अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है। पसंद करने वाले कल्याण मुंबई से किशोर हरवाले, सुजाता हरवाले, सॉरी हिवराले, सुजाता हिवराले, किशोर हिवराले और प्रतीक हिवराले जी का मेल है ये, और उसके बाद अहमद फूल वाले जी लिखते हैं, होस्ट डी आदाब, नमस्कार, हमें निराश और नजरअंदाज मत करना, मेरे मेल जरूर शामिल करें। तो देखिए मेल शामिल हो चुका है और गाने की तो अब कोई भी बात हम कह ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा और किसका मेल यहाँ पर शामिल नहीं हुआ था, ये कौन है, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू और चंपा साहू। और फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है कि हम आपका नाम ही ले लें और इस तरह से मेल्स आपके शामिल कर लें। सत्यनारायण कुरील जी का भी मेल आया हुआ है यहाँ पर, गगनदीप थांडी जी आपका भी मेल हम शामिल नहीं कर पाए थे। वकील अहमद जी, बहुत ही प्यारा सा आपने मेल लिखा है, हम मेल पढ़ जरूर लेंगे लेकिन फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है उसको शामिल करने के लिए। यासिन अंजान जी का भी मेल यहाँ पर आया हुआ था झारखंड से। और फागुराम यादव जी ने भी मेल हमें लिखा है संबलपुर कांकेर से। इसके अलावा और किसका मेल छूट रहा है, बहुत सारे लोगों ने रिपीट कर दिया। रचना मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी मेल हमें लिखा था लेकिन आपका गाना अभी प्ले नहीं हो पाएगा। इन्होंने लिखा है प्लीज मेरा नाम ले लीजिए और गाना इनका प्ले कर दे। और इसके अलावा सुनील पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी मेल लिखा। अनु सेठ जी, आपका गाना बज चुका है और मुझे पता है आपका गाना मैंने बजाया था। शाहनूर अंसारी जी का भी मेल फिर से आया हुआ है। इसके अलावा और कितने नाम है, मास्टर किल्लू परवेज जी लिखते हैं कोई भी सॉन्ग बजा दें। इसके अलावा शाहनूर अंसारी फिर से हैं। कोमल तिवारी जी लिखती हैं गुड आफ्टरनून, बहुत प्यारा सा आपने गुड आफ्टरनून भेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। दिलावर खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गाना आपने रिक्वेस्ट किया है बट हमारे पास अभी वक्त की थी पाबंदी, हम नहीं बजा पाएंगे उसको। उदय भानपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी मेल यहाँ पर आया। निसार अली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत भवसार जी का भी मेल था, मोहम्मद फरमान का भी मेल हमारे साथ था और इसके अलावा रहमान जी का भी मेल। तो देखिए मैंने नाम शामिल कर लिए बट हमारे पास वक्त नहीं था इन सारे मेल्स को पढ़ने का। वो फिलहाल जो आखिरी ट्रैक है इस हॉटमेल का वो भेजूंगी आप सभी के रेडियो सेट पर। तो ये आ गया प्यारा सा गाना, आप सभी के रेडियो सेट पर एंजॉय करिए इसको, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

लंबी अलसाई दोपहरी और हम हैं आपके साथ। म्यूजिकार शो में स्वागत है आपका। सभी सुनने वालों को शिप्रा चंद्रा का नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, दोपहर का ये वक्त और लेजी लेजी लम्हे, सूरज की तपिश है बरकरार और आपको है ठंडी पुरवाई की तलाश, तो आ जाइए हमारे साथ। आज की म्यूजिकल शो में है कुछ तो खास, सदाबहार नगमे हैं आपके लिए। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो हर गीत के साथ जुड़ी हैं कितनी यादें, कितने एहसास, और ये यादें होंगी और भी चमकदार, क्योंकि गानों के साथ खोलेंगे हम वो पुरानी किताब जिसके एक एक पृष्ठ पर दर्ज है उन गीतों के सितारों के दिलचस्प किस्से। कुछ सुने और कुछ अनसुने। तो चलिए म्यूजिक आर शो का आगाज कर रहे हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसमें दर्ज है किसी के दिल का हाल। बात है नजारों की, फूलों की, सितारों की।

जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, ये गाना फिल्माया गया शशि कपूर और आशा पारेख पे। 1968 का दौर था। गीतों को श्रृंगार में पिरोकर कवि को प्यांग गोपाल दास नीरज नई नई रचनाएं लिख रहे थे। और जब उन्होंने फिल्म कन्यादान के लिए ये गीत लिखा, लिखे जो खत तुझे, तो गीत की पंक्तियां सुनकर संगीतकार शंकर जयकिशन जो थे वो खुशी में उछल पड़े। उन्हें ये गीत इतना पसंद आया, बोले भाई लाजवाब लिखा है आपने। तो वहीं फिल्म के निर्देशक राजेंद्र भाटिया ने खुशी में अपनी नई गाड़ी की चाबी गोपाल दास नीरज को तोहफे में दे दी। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस गीत में अभिनेता शशि कपूर के साथ वो ही गाड़ी साफ दिखाई देती है। और अब म्यूजिकल शो में चलिए, इस गीत के साथ ध्वनि तरंगों की उंगली थाम चलते हैं माला सिन्हा और विश्वजीत के पीछे पीछे, जहां नेक इरादों के साथ हो रहा है मासूम मोहब्बत का इजहार। क्या जानते हैं आप कि सजा में भी एक मजा है, कैसे आप खुद ही सुन लीजिए।

0: फिल्म दो कल्याण से ये गीत आप तक पहुंचा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। ऑन ईयर ऑलवेज इन हार्ट, ये है 102.2 एफएम रेनबो कानपुर की आवाज।
1: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ऑन योर ऑलवेज इन हार्ट, ये 102.2 FM रेनबो कानपुर की आवाज। म्यूजिक आर शो में आज सदाबहार गीतों के साथ उनसे जुड़े कुछ किस्से, कुछ अनसुने और कुछ सुने। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, ये वो दो नाम हैं जिनके गाए हुए नगमे हर दिल अजीज हैं और इस बेहद सफल और सुरीली साझेदारी के कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। दो दिग्गजों के बीच में अनबन भी हुई और साथ काम करते करते ऐसा हुआ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मत एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और किस्से बन जाते हैं। तो 60s के एरा में दोनों के बीच गीतों की रॉयलिटी को लेकर के एक ऐसा ही वैचारिक मतभेद हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि लता जी और मोहम्मद रफ़ी ने ये तक कह दिया कि अब वो साथ में कोई भी गीत नहीं गाएंगे। लगभग 4 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। तो फिर कैसे हुई मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच में वापस पैचअप कैसे हुआ, शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ म्यूजिक आर शो में पढ़ने जा रही है रिमझिम फुहार आनंद।

संगीतकार एसडी बर्मन ने कुछ तो सोचा ही होगा, शायद रूठों को मनाने के लिए उन्हें एक साथ फिर लाने की सोच रही होगी, नेक नियत रही होगी। और कुछ ऐसी ही सोच के साथ उन्होंने लता जी को फोन किया और कहा कि ज्वेल थीफ इस फिल्म का नगमा है और इसके लिए लता जी आपको गाना

मोहम्मद रफ़ी के साथ। तो दोस्तों लगभग 4 साल हो चुके थे गीतों की रॉयल्टी से जुड़ी अनबन को, जबकि लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी ने एक साथ कोई भी गीत नहीं गाया था और एस डी बर्मन के ऑफर को लता जी ने सुना और रिजेक्ट कर दिया। लेकिन संगीतकार एस डी बर्मन भी हार नहीं माने। वो क्या हुआ कि सीधे लता जी के घर पहुंच गए और लता जी को समझाया। उस दौर की एक बहुत अच्छी बात थी कि सभी कलाकार एक दूसरे को सम्मान बहुत देते थे, उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। तो लता जी के घर जब एस डी बर्मन पहुंचे और उन्होंने उनसे बात करी तो लता जी भी राजी हो गई। और इधर मोहम्मद रफ़ी ने भी अपने सरल और शांत स्वभाव के चलते कोई कड़वाहट नहीं दिखाई। और नतीजा क्या हुआ दोस्तों, बरसों से जमी हुई बर्फ पल भर में पिघल गई और मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने एक बार फिर से सुर सजाए। जो गीत बना वो आप तक पहुंचने को है तैयार। फिल्म ज्वेल थी, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, संगीतकार हैं एस डी बर्मन और शब्दकार आनंद बख्शी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: You are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur। ब्यूटीफुल ट्रैक्स आप तक पहुंच रहे हैं म्यूजिकार शो में, जब हम आपको अब ले करके सीधे चल रहे हैं टोक्यो। फिल्म का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, लव इन टोक्यो। और टोक्यो में जब होगा ये इश्क मोहब्बत प्रेम के अफसाने, तो जापान के नज़ारे हम यहीं हॉल में बैठे बैठे, फिल्म हॉल में बैठे बैठे देख लेंगे। 1964 में टोक्यो ओलंपिक के बाद से टोक्यो का नाम हर शख्स की जुबान पे था। तो ऐसे में 1966 में रिलीज़ हुई ये फिल्म लव इन टोक्यो। ये फिल्म जापान में टोक्यो, क्योटो और हिरोशिमा जैसे शहरों में शूट हुई। चॉकलेटी हीरो जॉय मुखर्जी और हसीन सिने तारिका आशा भोसले की जोड़ी को इस फिल्म में खूब सराहा गया। इसी फिल्म से एक किस्सा मशहूर है दोस्तों, कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जब जॉय मुखर्जी ने आशा पारे को उठाना चाहा तो संतुलन बिगड़ने से उन्हें गिरा दिया था, जिससे उनकी पीठ में चोट आई और कुछ दिनों तक वो दर्द में रही। खैर, दर्द से शिफा तो मिल जाती है दोस्तों, बस यादें रह जाती हैं।

0: आंखों से दिल में समा।
1: आ जा रिया जरा। जून के इस महीने में भीषण गर्मी में हम हो रहे हैं भीषण गर्मी से दो चार, तो ऐसे में ठंडी हवाओं बारिश रिम झिम फुहार को हम एक इनविटेशन भेज देते हैं। काश ऐसा होता कि इनविटेशन भेजते हम और बदले में हमें मिलते गरजते बादल घटा घनघोर और बारिश की लड़ियों से मिलती कुछ राहत। फिलहाल तो एक ऐसा ही यादगार नगमा हम आप तक पहुंचने को हैं तैयार। फिल्म का नाम है हंसते जख्म और आवाज है मोहम्मद रफी की। तो दोस्तों मुंबई की बारिश और टैक्सी का सफर और साथ में जो हो खूबसूरत हम सफर, तो ये दिल गुनगुना ही उठता है।

सिंह था और उन्होंने लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से स्टडी की थी। छोटी सी जिंदगी के बड़े अफसाने। उन्होंने 22 साल के करियर में केवल 7 फिल्में ही की, लेकिन उनकी एक्टिंग और खूबसूरती आज भी दिलों में ताजा है। अभिनेता राजकुमार के साथ उनकी जोड़ी सराही गई हीर रांझा और हिंदुस्तान की कसम में, जहां वो उनके हीरो थे, प्रेमी के किरदार में थे, वहीं कुदरत फिल्म में उन्होंने राजकुमार की बेटी की भूमिका निभाई।

0: के मिल गया।
1: नवीन निश्चल के साथ अभिनेत्री प्रिया राजवंश। शिमला में रहने वाली प्रिया राजवंश का असली नाम वीरा सुंदर

On your always in heart, ये 102.2 FM Rainbow कानपुर की आवाज। म्यूजिक आर शो में शिप्रा चंद्रा है आपके साथ। और मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्मों के गीतों से जुड़े किस्से, बातें, यादें शेयर कर रहे हैं हम आपसे। और फिल्मों में साहित्य का भी बड़ा योगदान है। साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखी एक कहानी है, हींगेर कोचुरी, यानी कि हींग की कचौड़ी। इस कहानी में एक ऐसे प्रेम की दास्तान छिपी है जो अमर है। एक ऐसी महिला की दास्तान जिसे संतान न होने पर उसका पति त्याग देता है, परित्यागता होने पर उसकी माँ भी उसे नहीं अपनाती, और समाज में उपेक्षित महिला जिसके अपने ख्वाब हैं, जिसके पास ममता है, अपनत्व है, प्रेम है, उसकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से होती है और उस पर वो अपना सब कुछ लुटा देती है। तो इस कहानी से आपको किसी फिल्म की याद आई क्या? पुष्पा, आई हेट टीयर्स, अब तो समझ गए ना। कहानी के किरदार पुष्पा, आनंद बाबू

एसटी 11 का संगीत और किशोर कुमार की आवाज, खूबसूरत आवाज और कोलकाता शहर। कोलकाता शहर, हावड़ा ब्रिज, नौकायन, तो चलिए अब लेकिन कोलकाता का सम्मोहन छोड़कर चल चलते हैं कुल्लू मनाली की ठंडी वादियों में। फिल्म मेकर शक्ति सामंत जहां फिल्म बना रहे हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी के साथ। फिल्म का नाम है आराधना। एक इंटरव्यू के दौरान शक्तिदा ने बताया कि वादियों में शूटिंग करते समय अक्सर धूप छांव का सामना करना पड़ता था, तो इसी फिल्म के एक गाने की लोकेशन के लिए

ये ऐसी जद्दोजहद हुई कि जबकि फिल्म स्टार कास्ट राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जब सुबह 10 बजे लोकेशन पर पहुंच जाते तो किसी पहाड़ पे जाते तो अचानक बादल घिराते और अंधेरा हो जाता। और क्योंकि शक्ति दा को इस गाने की खिली हुई धूप में शूटिंग करनी थी, वो इस गाने को खिली हुई धूप में शूट करना चाहते थे, वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दोनों सितारों के लिए एक फरमान जारी किया और उसमें लिखा था कि आपको सुबह 5 बजे उठकर मेकअप करके तैयार होके 7 बजे तक लोकेशन पर आना होगा तो बात बन जाएगी। क्योंकि शक्ति दा ने ऑब्जर्व किया था कि तकरीबन रोज सुबह के वक्त उस वक्त धूप खिली रहती है, तो इस कंडीशन पर दोनों सितारे थोड़े अनमने तो हुए, लेकिन शक्ति दा से अनमने हो गए। लेकिन जब स्क्रीन पर इसका रिजल्ट उन्होंने देखा, इस गीत को देखा, तो दोनों सितारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की दिलकश आवाज। किशोर कुमार और राजेश खन्ना को स्टारडम का जो दौर था दोनों का लगभग एक साथ ही शुरू हुआ था और राजेश खन्ना उनकी आवाज को अपने लिए एकदम परफेक्ट मानते थे और यही कारण था

कि उन्होंने संगीतकार एसडी बर्मन से इसरार किया कि उनका गाना किशोर कुमार से ही गवाया जाए। लेकिन एसडी बर्मन ने एक ऐसी धुन बनाई जिसे सुनते ही किशोरदा ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये एक मुश्किल और शास्त्रीय संगीत पर आधारित नगमा था। तो इस गाने के लिए कहा जाता है दोस्तों कि किशोर कुमार ने बहुत रियाज किया, लगभग एक महीने तक किया, और जब ये गीत बना तो लगा कि जैसे ये किशोरदा के लिए ही रचा गया था। तो आप तक पहुंचा रहे हैं महबूबा फिल्म का वही ट्रैक जिसकी हम बात कर रहे हैं, और म्यूजिकल शो से दीजिए इसी के साथ शिप्रा चंद्रा को अनुमति। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। प्रोग्राम आपकी पसंद में, सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरम्भ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

स्वागत है आपका आपकी पसंद प्रोग्राम में शिप्रा चंद्रा को का सभी को नमस्कार। अपनी ईमेल के माध्यम से सुनते हैं आप अपनी पसंद के गीत। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता दें कि कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। तो लिख भेजिए अपना नाम, जगह का नाम, गीत के बोल और फिल्म का नाम और हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है AIRKANSOMETIA@gmail.com। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत थ्री इडियट्स इस गीत के साथ। इस फिल्म के गीत के साथ आवाजें हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांतनु मोहित्रा और ने इसका संगीत दिया है और इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जो हमारे लिसनर्स, उनके नाम सुन लीजिए। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। और आप सभी के साथ इसे गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं सहारनपुर से सुरेश टुकर और संदीप टुकर, गौरैया जालंधर से दीपक सोनी, अरावत सोनी, जेल रोड झांसी से आशा जाधव और प्रभा जाधव, डोंडी लोहारा बलौत से प्रभा रानी मुखर्जी। जेल रोड बक्सर से कनेक्ट हो चुके हैं असलम अंसारी, शमशुल हक और राज एसडी अंसारी, साथ में प्रभा रानी चमोरिया। रोशन जहां, मन्नत जहां, सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती और परवीन गुजराती के नाम शामिल कर रही हैं। बिहार स्टेट डुमराव से कनेक्ट हो चुके हैं प्रोग्राम के साथ आसमान सारी, आमना परवीन, टुकटुक, लड्डू, वली भाई और गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमीन। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और शबनम बानो, साथ में जेल रोड बक्सर से राज एसटी अंसारी और फातमा नाज। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से कनेक्ट हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुजायुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप लिख रहे हैं धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचने को है तैयार ये नगमा आप तक फिल्म थ्री इडियट्स से।

अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। लिख रहे हैं हमें गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से राज पैलेस मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार लिख रहे हैं धन्यवाद जी। प्यार भरा नमस्कार लिखा है शास्त्री नगर बीट शहर से हमारे नियमित श्रोतागण हैं आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया साईराज और विशाल सपकाल। और आप सभी के साथ होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन, दीपांशु खोरवाल कनेक्ट हो चुके हैं प्रोग्राम के साथ। और धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू लिख रहे हैं आपका हर पल खुशियों से भरा हो, आपका भी खुशियों से भरा हो। आज के दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और स्टेशन रोड जमशेदपुर से कनेक्ट हो चुके हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। और आप सभी के साथ राम राम जी लिख रहे हैं प्लीज एनी सॉन्ग। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, तिशानी और निमित। और अब जो गीत आप तक पहुंचने को है तैयार वो है डोंटी लोहारा से प्रभा जमोरिया, अनुश्री जमोरिया और पूजा टॉली जमोरिया, चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली डोमीन और पथिक डोमीन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। जो गीत वो है नाकिन फिल्म से जिसे गाया है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने और इसे लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये रहा नागिन फिल्म का नगमा आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर।

आज अभिनेता अभिनेत्री अनीता गुहा जी का स्मृति दिवस है और स्मृति दिवस पर हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री अनीता गुहा जी को, जो एक भारतीय अभिनेत्री थी और आमतौर पर फिल्मों में पौराणिक किरदार निभाती थी और जय संतोषी माँ में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए जानी गई थी। तो इसके अलावा और भी कई फिल्में अनीता गुहा जी की आई और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है और इसे लिख भेजा है इस मैसेज को ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी जहाना शाहनवाज अब्बासी सरफराज फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने। संगीत के साथ कनेक्ट हो रहे मूंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और आप सभी के साथ लिख रहे हैं, प्यारी होस्ट बहन जी को आदाब और सलाम, आपको भी आदाब और सलाम, सदा खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। और ये मेल हमें भेजा है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल फूलवाले इमरान अहमद और काब सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन आसमा परी राबिया मंतशा आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली। भोपालगढ़ राजस्थान से कनेक्ट हो चुके हैं धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा और पूजा परिहार और आप सभी के साथ चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा बिमला अनेजा लिख रहे हैं धन्यवाद। और बेटा जी हमारी तरफ से भी राम राम स्वीकार करें, कार्यक्रम सुने हमें भी पसंद आ रहा है। लिखा है आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज वेद प्रकाश चौहान सूबेदार अमर सिंह लिख रहे हैं धन्यवाद शुक्रिया। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी नबी हसन अब्बासी और जुबैर अली खान और पहुंचने को है तैयार ये गीत आप तक संजोग फिल्म से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सारे गा पदा निदा पगरे गा मगरे गा सागा।
2: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।
3: सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट के साथ कनेक्ट हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद आपके भेजे हुए ईमेल के आधार पर। न्यूज ऑन AIR ऐप और अपने रेडियो सेट्स के साथ कनेक्ट है हमसे देश और दुनिया के लिसनर्स। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, प्रभा रानी जाटव और कशिश जाटव सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जिस गीत को, वो है फिल्म अर्पण से। अनवर की आवाज में ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। इसी गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मंगीसापुर से। हमारे लिसनर्स हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी। और आप सभी के साथ बुलडाड़ा वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दिलीप और श्लोक कुमार, बुलडाड़ा इस्लामपुर।

महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। प्यार भरा आदाब लिख रहे हैं खंडवा रोड सनावत से शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर और डॉक्टर मोइन शेख। और साथ में कनेक्ट है खंडवा से योगेश गुजराती, आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी। मोटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल के नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। और मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से कनेक्ट हैं, सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण के नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। पहुंच रहा है ये ट्रैक आप तक।

पाकुड़ झारखंड से कनेक्ट हैं हमारे लिसनर्स हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद और आप सभी के साथ। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। जो गीत वो है फिल्म लहू के दो रंग से। किशोर कुमार की आवाज है, संगीतकार है बप्पी लहरी और इसे लिखा है फारूक कैसर ने। पहुंचने को है आप तक तैयार और इसी गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं हमारे लिसनर्स हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी के नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। फजिलका पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु, विशाल लाठी खेड़ा, शालिनी टिवानशी खेड़ा के नाम शामिल कर रहे हैं इस गीत के साथ। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से कनेक्ट हो चुके हैं टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। लहू के दो रंग इस फिल्म का गीत आप तक पहुंचने को है तैयार। एक के बाद एक लगातार हमें ईमेल प्राप्त हो रही है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से कनेक्ट हो चुके हैं अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश और बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाड़कर, सिद्धांत लाडला टुकटुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुरा से वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित, कुमारी, ध्वनि गवाड़कर, परी के नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेम लता टिम्पल देवांगन नाम शामिल कर रहे हैं हमारे इस गीत के साथ कनेक्ट हो चुके हैं हमारे ये लिसनर्स। पहुँच रहा है आप तक लहू के तुरंग इस फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

लेविटिकस फिल्म का नाम है और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन। लेविटिकस के इस गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं हमारे लिसनर्स जो हैं, उनके नाम शेयर कर रहे हैं आपसे। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता और आपके साथ गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली लिख रहे हैं शुक्रिया, धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनी सॉन्ग लिख रहे हैं रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके। बबलू ठेकेदार, शेख शागिर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तैमूर, शामिर खान, अजलान मुताला बाजार से कनेक्ट हो चुके हैं प्रोग्राम के साथ। गंज टंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिना फातिमा और अनु खान, अदनान खान और फैजान खान के नाम शामिल कर रहे हैं। कुमार गली कोलगाम से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडु रंग कुंभार लिख रहे हैं धन्यवाद। तो शेख मूसा मोहसिन की फरमाइश पर पहुंच रहा है ये गीत फिल्म लव 86 से मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाजों में।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद, और जिसकी पसंद अपनी है। प्रोग्राम की अगली पेशकश हमारे उन श्रोताओं के नाम है, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून जो सुनने के ख्वाहिशमंद हैं फिल्म काला सोनक से गीत। काला सोना के इस गीत के साथ गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, तलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह के नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। और आप सभी के साथ जय जिनेन्द्र श्रोता संघ पर बड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई के नाम कनेक्ट हो रहे हैं प्रोग्राम से। जेल रोड दिल्ली से जुड़ चुके हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमा राज, टुमराव से वली उल्लाह अंसारी, और आप सभी के साथ कस्बा बराडा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरु शब्द सिंह राहुल के नाम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। ततरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा कनेक्ट हो रहे हैं प्रोग्राम के साथ हमसे। लिसनर्स ऊपरकोट मोहल्ला चौकंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, और आप सभी के साथ नाम शामिल कर रहे हैं। ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से अनिल कटियार, डिम्पी कटियार, गौरव, सौरव और खुशी कटियार का

बरसात फिल्म का नगमा आप तक पहुंचने को है तैयार। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी की फरमाइश है बरसात फिल्म के गीत के लिए। अम्बाला से आशु खानू और सोनाली खान के नाम शामिल कर रहे हैं, आशु खान के नाम शामिल कर रहे हैं इस गीत के साथ। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से कनेक्ट हो चुके हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। और आप सभी के साथ देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गुन्नू लाल रजक और मुरली क्षत्रिय के नाम शामिल कर रहे हैं। गाँव कुमार खेड़ा सहारनपुर से कनेक्ट हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। और एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक और परी खर्चे और साथ में स्वाति प्रयाग चौधरी के नाम कनेक्ट हो रहे हैं। कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुम्भार लिख रहे हैं धन्यवाद। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अपान अब्बासी लिख रहे हैं धन्यवाद। कनेक्ट हो रहे हैं प्रोग्राम के साथ, पहुंच रहा है बरसात फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर। ये रहा

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ कनेक्ट है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अतीबा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जिस गीत को वो है फिल्म हिना से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं और इसे लिखा है और संगीत से सवारा है रविंद्र जैन ने। पहुंचे को है तैयार अब तक हिना फिल्म का नगमा और इसी गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइटे, आशीष मुहरकर के नाम शामिल कर रहे हैं। आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह लिख रहे हैं किसी भी गीत में उन्हें शामिल किया जाए। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद गोविंदपुरा से अहमदनगर से, जुनैद मुजाफर, साबिहा मुजाफर, मिखाइल मुजाफर और जैनब मुजाफर ने बहुत ही रंग बिरंगी ईमेल हमें प्रेषित की है। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से कनेक्ट हैं सईद भाई, सुफियाना, अनस, आयजा, अल्फिया, सदफ और हसनीन कमरुल्ला और ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया खान के नाम शामिल कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम आपकी पसंद और हिना फिल्म के इस नगमे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं अनिल कटियार जिन्होंने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ ग्राम और पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कटेरिया, उमा कांति, कमलेश कटेरिया, पुत्रवधु निशा कटेरिया, प्रज्ञा कटेरिया, प्रतिमा कटेरिया और वेद बाबू कटेरिया के नाम शामिल कर रहे हैं। पहुँच रहा है ये खूबसूरत गीत है बेहद आप तक हिना फिल्म से।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना हिना फिल्म से। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल जिस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है वो है फिल्म दो रास्ते से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। इसी गीत के साथ कनेक्ट है मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन और आप सभी के साथ नई बस्ती गंज टुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी लिख रहे हैं शुक्रिया। और गांव प्रांसी हिसार से कनेक्ट हो चुके हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र सिंह डूडी और आप सभी के साथ। नूरनगर गंज टुंडवारा से उजमा शेख, शिफा शेख और रिफा शेख के नाम शामिल कर रहे हैं। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली पथिक कनेक्ट हैं प्रोग्राम के साथ। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना, बुशरा, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि के नाम शामिल कर रहे हैं। पहुंच रहा है आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप तक फिल्म दो रास्ते से।

इसी गीत के साथ अब आज का आपकी पसंद ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए अनुमति शिप्रा चंद्रा को नमस्कार। हम बोल रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर से और हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा, यूपी तब विकसित होगा जब सभी जिले विकसित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता छोड़नी होगी और अपनी विरासत पर गौरव करना होगा। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 22 मई से 20 जून के भीतर 100% सफलता के साथ पूरा हो गया है। इस कार्य की सफलता को राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह अभियान राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में चलाया गया है, जिनमें से 75 जिले, 350 तहसीलें, 17 नगर निगम, 200 नगर परिषदें और 500 नगर पंचायतें, 13 छावनी बोर्ड और 8 औद्योगिक नगर शामिल हैं। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 5 लाख गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था।

0: सुल्तानपुर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने आज किन्नरों के सहयोग से विशेष जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने वाहन चालकों से भावनात्मक अपील करते हुए दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने तथा चार पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाकर यात्रा करने की अपील की है। साथ ही नशे की हालत में वाहन न चलाने और यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करने का संदेश दिया है। 39वीं गोरखा प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में आज आयोजित भव्य और गरिमामयी पासिंग आउट परेड के साथ 135 अग्निवीर भारतीय सेना के अनुशासित और प्रशिक्षित सैनिकों के रूप में राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। 24 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद इन अग्निवीरों ने देश की सुरक्षा अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल, जिस पर अब आप एक विशेष कार्यक्रम सुनने जा रहे हैं।
1: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों और सरकार के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से निकला योग आज केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन का सूत्र बन चुका है। शरीर मन और आत्मा के संतुलन का ये विज्ञान अब सीमाओं से परे जाकर वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है और इस परिवर्तन के केंद्र में रहा भारत का वो प्रयास जिसने योग को विश्व मंच तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और तब से पूरी दुनिया योग को स्वास्थ्य संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली के रूप में अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए योग की बनती वैश्विक पहचान और उसके लिए योगदान देने वालों का जिक्र किया।
3: इस समय फ्रांस समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां भी चल रही। इस अवसर पर मैं फ्रांस में योग को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान महेश गात्रा दयाल जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता। मैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शार्लो शोपा जी को भी प्रणाम करता जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में भी योग के माध्यम से फ्रांस को भारत की विरासत से जोड़ा है।
2: इस साल 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के साथ मनाया जा रहा है। ये थीम विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि बढ़ती उम्र के साथ भी व्यक्ति कैसे स्वस्थ सक्रिय और ऊर्जावान जीवन जी सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 15 से 21 जून तक योग सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम हो रहे हैं जिसका शुभारंभ नमो घाट पर हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने योग का महत्व बताते हुए योग सप्ताह के तहत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी।
4: ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं है योग। योग एक शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने की एक ऐसी जीवन शैली है करना। ये अभ्यास की चीज है, लगातार अभ्यास करते रहे तो ये साधना की चीज है। बहुत सहज और सुलभ हुआ, प्रधानमंत्री का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश में जिस तरीके से हर वर्ष योग के द्वारा संख्या के लिहाज से एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम होता है।
2: उत्तर प्रदेश में इस बार योग दिवस को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि योग दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम न होकर जन भागीदारी का महाअभियान बने। प्रदेश सरकार ने इस बार योग दिवस को गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों के पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार के प्रयासों में योग प्रशिक्षक और समाज सेवी भी सहयोग कर रहे हैं। 3 योगासनों में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली योगा एथलीट भूमि तिवारी का कहना है कि योग न सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है बल्कि स्वयं को संयमित रखने और जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह भी पैदा करता है।
5: नियमित योग करने से कई प्रकार की जटिल बीमारियों से बचा जा सकता है और यह बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की योग परंपरा को विश्व स्तर तक पहुंचाया गया। मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूं कि आप योग को अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएं। योग करने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा।
2: प्रदेश का आयुष विभाग भी योग के इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में जुटा है। प्रमुख सचिव आयुष रंजन

0: किशन कुमार ने बताया कि न केवल प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूरे सप्ताह योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयुष कवच पोर्टल पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि इस बार अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाए। इन्हीं प्रयासों के क्रम में फर्रुखाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने बताया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम होगा।
1: जनपद फर्रुखाबाद में पूरा जो कार्यक्रम है वो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसमें आयोजित किया जाएगा। और इस बार भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग विभागों को, बच्चों को, डीआईएस को, बीएसए को, अलग अलग विभागों को टारगेट्स दिए गए हैं। उनकी तरफ से कुछ पर्टिकुलर संख्या में लोग आएंगे योगा करने के लिए, तो एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया।
0: प्रदेश भर में इस बार योग दिवस पर जनभागीदारी बढ़ाने के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। महोबा में योग सप्ताह के तहत ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर आयोजित योग शिविरों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेकर योगाभ्यास कर रहे हैं। योग से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के रहने वाले 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्धजनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है। सबको संकल्प लेना चाहिए कि नियमित योगाभ्यास करें।
2: तो मूल रूप से इस बार जो उनका फोकस है, उनकी थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए, उसके लिए उन्होंने ये थीम रखी है कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास नित्य करें और विशेषकर वृद्ध जन संकल्प लें ताकि वो और दीर्घायु हों।
0: महोबा के बाद बात आगरा की, जहां योग सप्ताह के तहत 15 जून से शुरू हुए कार्यक्रमों में शहर के प्रमुख स्थान ताजमहल के पास सहित विभिन्न स्थानों पर योग शिविर का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए योग साधक अपील कर रहे हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और बास्केटबॉल के प्रशिक्षक डॉक्टर रिनेश मित्तल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से योग दिवस का सफल आयोजन किया जाएगा।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि सभी विभागों को अपने अपने कार्यालयों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एनसीसी ऑफिस में, स्काउट्स ऑफिस में, सभी में योग कराना है।
0: आगरा में योग दिवस को लेकर उत्साह है तो समूचे ब्रज क्षेत्र में भी योग दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मथुरा के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लोग अनुलोम विलोम, कपालभाति सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास कर रहे हैं। योग शिविर में शामिल रहे समाजसेवी रामकिशन पाठक का कहना है कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन अधिक संतुलित बनता है। उन्होंने सभी से इसमें शामिल होने की अपील की है।
4: जनपद की जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप 21 तारीख को अपने घरों से निकलकर प्रातः अपने निकटतम योग स्थल पर जाएं, योगी जी के, मोदी जी के आह्वान पर योग करें और अपना और अपने परिवार का निरोग रहने का रास्ता प्रशस्त करें।
0: योग का वास्तविक महत्व केवल एक दिन के आयोजन में नहीं बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बनाने में है। आधुनिक जीवन शैली, बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग हमें संतुलन, अनुशासन और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी के सहभागिता के प्रयास में आप भी भागीदार बनिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन की शुरुआत किसी बड़ी दवा से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है।
5: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों और सरकार के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
6: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और गाने का और जुड़ने का उस दिल से जो दिल आपके दिल में धड़क रहा है। तो डिस्को के जरिए आज हम जुड़ेंगे उन 10 गानों के साथ जो आपके और हमारे दिल में आज भी धड़क रहे हैं कुछ इस तरह से।

अच्छा, कभी कभी जो है वो आपके साथ बैठे या चलते चलते कंप्यूटर जो है अचानक नाराज हो जाते हैं और एकदम से दाव, है ना, कुछ ऐसे ही होता है। ऐसे ही कुछ हो गया हमारे कंप्यूटर जी को, नाराज हो गया मुझे लग रहा है। चलिए फिलहाल गाने को कंटिन्यू करते हैं, जो फ्लेवर है उसको टूटने नहीं देते। जी हाँ, 80s का वो दौर था जहां पर डिस्को की बात हो रही थी, डिस्को का नाम आ रहा था, पैर थिरकने वाले कलाकार सामने आ रहे थे। बस गौर कीजिएगा इन

भी बहुत बहुत बहुत याद किया जाता है। और उसी दौर में एक आवाज थी जो गूंज रही थी, जिसे हम बप्पी लहरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे गाने जो है वो डिस्को को बेस बनाकर गाए हैं, जैसे अनिल कपूर का ये वाला गाना।

सात एफ एम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं टॉप 10 विजय के साथ। 5:21 का समय हो चुका है और आपको भी अगर 80s का वो डिस्को से रिलेटेड कोई गाना याद आता है जो धूम धड़ाके वाला हो तो मुझको जरूर याद दिलाइए, मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगा। लेकिन धूम धड़ाके वाला 80s का वो गाना होना चाहिए जिसमें अब वो दौर था जब बब्बी लहरी की आवाज हुआ करती थी, किशोर दा की आवाज हुआ करती थी और डांस हुआ करता था जबरदस्त, है ना। जैसे मैं चुन के लाया हूं वैसे ही आपको अगर कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा मेल के जरिए। फिलहाल एक और

0: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: Stay tuned, 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: चैनल पर आप सुन रहे हैं इसमें टॉप 10 विजय के साथ। 5:29 का समय हो चुका है यहाँ पर, और ये जो फिल्म हथकड़ी का गाना मैंने आपको सुनवाया था, पहलाज नेहलानी साहब की ये फिल्म थी, और संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, राकेश रोशन, रंजीता, प्रेम चोपड़ा, बप्पी लहरी और बहुत सारे कलाकार, मल्टी स्टारर फिल्म थी। जीवन साहब, मदन पुरी, सिमी ग्रेवाल, ये सारे लोग, मजहर खान साहब, कन्हैया लाल, इन सब की इसमें एंट्री थी और एक बड़ी स्टार कास्ट थी। इसी वजह से हथकड़ी फिल्म और इसके गाने इस तरह से रखे गए थे कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए, लेकिन डुपर तो नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हिट चल गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय की केमिस्ट्री जो है उस समय अखबारों की सुर्खियां बनी रहती थी, इसलिए भी ये फिल्म कुछ थोड़ा सा कमाल कर गई थी। फिलहाल चलिए 80s की दूसरी फिल्म, जो सबसे बढ़िया अमिताभ बच्चन साहब का हॉट ड्रामा कहूं, कॉमिक ड्रामा कहूं, जो भी था, जिसने हिट बनाया था फिल्म को, नमक लाल फिल्म से ये गाना आपको सुनवाता हूं।

0: डांस डांस फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, मिथुन चक्रवर्ती, स्मिता पाटिल और मंदाकिनी, जी हाँ ये थे, शक्ति कपूर साहब का भी रोल था इसमें, और बी सुभाष साहब की फिल्म थी। और बी सुभाष साहब जो है वो जब इस फिल्म को उन्होंने रिलीज की, और रिलीज करने से पहले ही काफी घबरा गए थे, वो डर गए थे क्योंकि बोनी कपूर साहब और अनिल कपूर साहब की फिल्म मिस्टर इंडिया रिलीज हो चुकी थी, उसने तहलका मचा दिया था। अनिल कपूर साहब का वो गायब होने वाला कैरेक्टर, उसने तो एक नया ही इतिहास रचा था, और उसके आगे ये फिल्म का आना और उसके बाद चलना, तो बी सुभाष को लग रहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन फिर भी जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया। स्मिता पाटिल का जो इस फिल्म में रोल था, उसके बाद उनकी आवाज़ को डब किया गया क्योंकि इस फिल्म के पूरे होने के कुछ ही समय बाद जो है वो उनका देहांत हो गया था। और प्रतीक बब्बर साहब जो है उन दिनों जो है वो स्मिता पाटिल माँ बनने वाली थी, और प्रतीक बब्बर साहब का जन्म होने वाला था, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ मिसहैपनिंग ऐसा हुआ कुछ कि स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके अलावा जो है इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर, बी सुभाष साहब ने जो है मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म में लिया ही इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि मतलब मिथुन दा का उस समय जो ऑरा था डांस का, जो डिस्को वाला जो था, वो हर फिल्म को हिट करा रहा था, चाहे डिस्को डांसर हो चाहे वो प्यार का मंदिर हो, उसमें एक गाना ही था। इसीलिए बी सुभाष साहब ने जो है 1988 में कमांडो फिल्म में इस पूरी स्टार कास्ट को जो है वो रिपीट कर दिया कि जिस तरह से डिस्को डांसर ने या डांस डांस ने कमाल किया है, वैसे ही हो सकता कमांडो फिल्म भी जो है मिथुन की चल जाए। हालांकि वो बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मिथुन दा का ऑरा था, जो उसका डांस का जो स्टाइल था, वो उस समय के युवा पर पूरी तरह से छाया हुआ था। 5:42 का यहां पर समय हो चुका है और विजय आज आपके साथ है टॉप 10 में। एक और 80s का बहुत ही प्यारा सा गीत जो इंतजार कर रहा है मेरी उम्र के नौजवानों।
1: Hey! तुमने कभी किसी से प्यार

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार पर

0: अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
2: सौ दशमलव सात एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं समय टॉप 10 विजय के साथ और 5:52 का समय हो चुका है। यहां पर भैया मोनू सेठ का मेल आ गया है। विजय भैया जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आए हैं, उम्मीद थी जल्द आएंगे, आप आए लेकिन खुशी हुई। हाँ भैया मोनू सेठ, कुछ कार्य की व्यस्तता ऐसी ज्यादा थी कि जिसकी वजह से आना जो है हो नहीं पाया, लेकिन अब आ गए हैं तो आना होगा और नाच गाना भी होगा। रामराज जी का भी जो है मेल आया है, टॉप 10 कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, जिला रायबरेली से और पहाड़पुर से इन्होंने जो है मेल किया है। सभी लोग जो है वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और शाम को अपनी रंगीन बना रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर टॉप 10 प्रोग्राम चल रहा है और आपको बता दूं कि टॉप 10 प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको बता दूं कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर हमारे हेल्थ एंड फिटनेस पर एक विशेष कार्यक्रम होगा 12:00 से 1:00 तक 21 जून 2026 है। हमारे साथ होंगे योगाचार्य श्री कृष्ण दत्त मिश्रा जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के, और इसे आप 100.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर न्यूज ऑन एयर ऐप और डीटीएच पर सुन सकते हैं। संपर्क आप करेंगे 0522-223-8845 और 0522-223-8852, ये नंबर है जहां पर आप अपनी समस्या और योग के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में मिलाकर आप योगाचार्य जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि थीम है करें योग रहें एंड निरोग। ये आकाशवाणी की, दूरदर्शन की और पूरे देश की यही अपील है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि करें योग तो रहेंगे निरोग। और योग का महत्व कितना है ये भी 4 से 5 यूथ वे में मैंने जो हमारे साथ एक्सपर्ट थे उनसे जानकारी ली ही थी, आपको बताया ही था। तो योग के जो है वो लाभ क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक शांति, एकाग्रता, हृदय स्वास्थ्य बढ़ता है, इससे तनाव कम होता है और जीवन खुशहाल बनता है अगर योग को हम अपनी जीवन शैली में धारण करते हैं। तो चलिए फिलहाल अब इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करूंगा मैं। एक आखिरी डिस्को सॉन्ग जो मैं छोड़े जा रहा हूं, जाहिर सी बात है कि वो जो गीत होगा वो हमारे बिग बी के नाम होगा, तो उन्हीं के नाम के साथ वापस शाम अवध में आपसे फिर मुखातिब होता हूं। सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
1: चलते रे इश्क में पड़ जाते
2: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
3: आपके अपने रेनबो की जबानी।
1: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
4: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
5: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 6 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त आज जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से 9.44 करोड़ किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों को शुभकामनाएं दी हैं और अपील की है कि वो खेत बचाओ अभियान से जुड़ें, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, साथ ही आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें। हम सब मिलकर धरती मां रक्षा करें। श्री मोदी ने कहा कि वो हमारी मां है, हम उसको केमिकल से मारने का पाप नहीं कर सकते। भारत और दक्षिण कोरिया ने लोक प्रशासन और डिजिटल शासन के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के गृह सुरक्षा मंत्री यून हो जुंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इस दौरान डिजिटल शासन, सरकार में प्रौद्योगिकी के सकारात्मक उपयोग, लोक प्रशासन, क्षमता निर्माण, नागरिक, केंद्रीय सेवा वितरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महोबा पहुंचेंगे। सीएम योगी यहां अपने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही वे जिले के करोड़ों के विकास योजनाओं को सौगात देंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम मुख्यालय में बन रहे 55 करोड़ की लागत के निर्माणाधीन कचहरी भवन और नए ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 22 मई से 20 जून के भीतर शत प्रतिशत सफलता के साथ पूरा हो गया है। इस कार्य की सफलता को राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह अभियान राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में चलाया गया है, जिनमें 75 जिले, 350 तहसीलें, 17 नगर निगम, 200 नगर परिषदें, 545 नगर पंचायतें, 13 छावनी बोर्ड और 8 औद्योगिक नगर शामिल हैं। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। शासन के द्वारा उन्हें जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य अतिथि नामित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यमंत्री अमेठी में शाम 7 बजे सुल्तानपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद वो उद्यान और मंडी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, अगला समाचार बुलेटिन

0: रात की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: 107 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं शाम अवध आज विजय के साथ। 6:04 का समय हो चुका है और शाम अवध की शाम गुलजार हो चुकी है इस समय लखनऊ की शाम, क्योंकि रेडियो पर आ चुका है शाम अवध प्रोग्राम विजय के साथ। यहां पर बहुत सारी बातें शाम अवध में आपके साथ होंगी और क्रिकेट का अपडेट भी होगा, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट खेला जा रहा है। आज तीसरा वनडे मैच है, आखिरी वनडे मैच है। भारत 3-0 से क्लीन स्वीप करने की ओर जो है वो बढ़ेगा और फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यार से गीत आपको सुनवाता हूं, उसके बाद लौट कर आता हूं। तो एंजॉय कीजिए शाम अवध विद विजय।
1: लोग कुछ शूट कर रहे हैं
2: हमारे बिना, शूटिंग ऐसे कर रहे हैं,
3: ये तो अपना गाना। या कम ऑन,
4: बॉल की शूटिंग हमारे बगैर।
5: अकतरी मोहब्बत या फेरी पूरी

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं शाम विजय के साथ। और भाई, छात्रवृत्ति में डोमिसाइल लगाना अब जरूरी नहीं होगा। केंद्र ने SC और OBC छात्रों के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन में डोमिसाइल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इससे छात्र आसानी से आवेदन अब कर पाएंगे। सरकार ने उमंग प्लेटफॉर्म पर सेतु डिजिटल सेवा भी शुरू किया है, जिससे आवेदन सत्यापन और निगरानी में पारदर्शिता आएगी। यानी कि छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। बस आपको अब मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, परीक्षा को पास करने की जरूरत है, दिन रात एक करने की जरूरत है। जब आप दिन रात एक करेंगे, तभी तो आपके पापा कहेंगे क्या। वही जो आमिर खान के पापा कहते हैं।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास

0: में सहभागी बने।
1: साथ एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे शाम में अवध विजय के साथ। भाई अगर आप ऑफिस से निकले हैं अपने घर जाने के लिए इस समय, हालांकि शनिवार है, बहुत से ऑफिसेज बंद हैं लेकिन बहुत से खुले भी हैं, तो प्लीज सीट बेल्ट अपनी कार में लगाकर आप निकलें और हेलमेट का प्रयोग करें। सिग्नल्स और ट्रैफिक नियमों का पालन आप जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक जाम होता है शहर में वो बहुत दुखदाई और दर्ददाई हो जाता है, और ऊपर से सूरज साहब का जो टेम्परेचर जो टॉर्चर होता है वो तो बस पूछिए नहीं। तो इसलिए जो है वो कोशिश ये करें कि शहर में जाम की स्थिति ना बनने पाए, ताकि जो दोपहिया वाहन वाले लोग हैं वो धूप में खड़े खड़े तपे ना। भाई आप तो कार के अंदर एसी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो जो दोपहिया वाहन वाले बेचारे बाहर चल रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर सड़क पर उतर जाते हैं और जाम लगा देते हैं। तो भाई इस तरह की स्थिति का सामना जो है वो ना हो तो बेहतर है। और बाकी सरकार तो प्रयास कर ही रही है आपके लिए कि भाई शहीद पथ को जो है चौड़ा किया जाए, उसमें भी जो है वो कुछ ज्यादा से बेहतर सुधार हो सकते हैं, वो सारे किए जाएं। तो सरकार जब अपना काम कर रही है तो हमें भी एक देशवासी होने के नाते अपना काम करना चाहिए, ताकि जो है हम भी वो है ना विकसित भारत का जो संकल्प है उसको हम पूरा कर सकें। फिलहाल शाम में एक और बहुत ही प्यार से गीत फिर लौट कर आते हैं।

0: तो भाई सलमान खान का तो यही हाल है, लेकिन मौसम का क्या हाल रहने वाला है उसकी जानकारी देने के लिए शाम अवध में हमारे साथ मोहम्मद दानिश जी जुड़ चुके हैं। दानिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कैसे हैं सर?
1: मैं अच्छा हूँ।
0: ये गर्मी आपको भी परेशान कर रही होगी जैसे हम लोग को कर रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो सर मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, कुछ नरमी आने वाली है कि तेवर सख्त रहने वाले हैं?
1: नहीं नहीं देखिए, आज कल परसों कुछ इसी तरीके से मौसम रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ा सा बादलों की आवाजाही के साथ कुछ छींटा छींटी टाइप का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आजकल परसों तीन दिन थोड़ी गर्मी का असर हमको देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आने वाले दिनों में थोड़ा राहत मिल सकती
0: है, थोड़ी राहत मिल सकती। अच्छा मानसून भाई साहब के आने का क्या अंदेशा है कुछ?
1: मानसून का तो जैसा कि जो मानसूनल फ्लो है वो उतना अच्छा बन नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है कि तीन चार दिन के बाद थोड़ा मानसूनल फ्लो भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिला के अगर हम करें तो आने वाले अगले चार पांच दिनों में कुछ अच्छी खबर आने की संभावना बन रही
0: है। मतलब जून जाते जाते और जुलाई आते आते कुछ अच्छे माहौल की एहसास होगा।
1: जी
0: चलिए, आपने इतना ही कह दिया, बहुत राहत, हमें तो कुछ ठंडा सा लगने लगा मुझे तो आपके कहने से ही। सर थैंक यू, सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू
1: थैंक यू।
0: तो दानिश जी ने बताया कि भाई किस तरह से जो है थोड़ा दो तीन दिन की जो है गर्मी है, उसके बाद मौसम थोड़ा सा राहत देगा और मानसून भी जो है वो उसके भी आने की आहट कुछ नजर सी आ रही है। तो बस कुछ दिन की बात और है भाई, कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन टंकी के गर्म पानी से नहा लो ऊ करके, और उसके बाद तो पानी ठंडा हो ही जाना है, थोड़े दिन की बात और है। फिलहाल अगर ऐसा नहीं होता है तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको जो है ठंडा ठंडा से सुना देता हूं। आइए एंजॉय करते हैं इस गाने को शाम में।

107.7 FM Rainbow Channel पर आप सुन रहे शाम है अवध 6:26 का वक्त है और ये तन्हाई तन्हाई गाना जो है वो बीच में ही रुक गया था। हाँ, बहुत जल्दी में था, भाग गया, गर्मी लग रही होगी। फिलहाल कोई बात नहीं, और मौसम का अपडेट आपके पास आ ही गया है, कुछ देर में आएगा ट्रैफिक का अपडेट। लेकिन इससे पहले आपको बताऊंगा कि भाई आशियाना का वनस्थली पार्क जल्द ही मैजिकल लैंड फैंटेसी पार्क के रूप में सामने आने वाला है। क्या होगा यहां पर, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है, वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बारिश सा ठंडा ठंडा सा गाना जो है वो हो जाता है।

0: देखो भैया, ये गाना से तुम्हार घर में बारिश हुई कि नहीं हुई? हमारे स्टूडियो में तो बारिश हो गई भैया, हम तो तर बतर हो गए बारिश से, क्या बताई, बड़ा ठंडा एहसास हो रहा है। वो कहते हैं ना, गाँव में एक कहावत है कि अगर कोई से कोई काम कराना हो तो उके मन की बात जो है वो बार बार करे चाहिए। तो हम भी कहें कि बादल का अगर बरसावे का है तो वही के मन की बात वही का गाना लगा दो तो क्या कहने हैं, है ना। अच्छा, सुना है कि दिन में थोड़ा सा कुछ जगह पे लखनऊ में बारिश हुई है, कुछ लोग तरबतर हुए हैं, लेकिन देखते हैं अब दो तीन दिन में हालात कैसे बनते हैं। फिलहाल भैया, कुल मिला के बारिश हो चाहे ना हो, छतरी लगाओ चाहे ना लगाओ, ट्रैफिक का बहुत ध्यान रखो, बहुत संभाल के चले हो। काहे से विकास जी हमारे साथ फोन लाइन पे आ गए हैं। विकास जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार सर।
1: को नमस्कार
0: जी। बताइए सर,
1: लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है
0: जी,
1: कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है सर। एक मार्ग जो अपना लखनऊ कानपुर मार्ग है, वहाँ पर आलमबाग के पास में थोड़ा सा दबाव है यातायात का, बाकी कहीं पर यातायात का दबाव नहीं है सर।
0: सर वहाँ पे सामान है आलमबाग में, तो बस अड्डे की वजह से जो है दबाव रहता है, बसों का आना जाना इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक का दबाव हमेशा रहता है, ये तो है। और मुझे लगता है प्रशासन को इसका कोई हल निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि बड़ा दर्ददायी हो जाता है ये।
1: बिल्कुल सर, इसके लिए लगातार जो है परिवहन विभाग से कार्रवाई चल रही है सर, और इसको अन्यत्र स्थापित करने के लिए भी विचार किया जा रहा है।
0: जी जी जी
1: जी सर।
0: और कोई डाइवर्जन वगैरह तो ट्रैफिक में नहीं है?
1: नहीं सर, आज कोई डाइवर्जन नहीं है, यदि कोई डाइवर्जन होता है तो आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुँचाएंगे,
0: क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जगह जगह कार्यक्रम भी है।
1: योग दिवस के दौरान सर कल जो है हमारे कुछ क्षेत्र में, जैसे कि अगर हजरतगंज की बात करें
0: जी जी,
1: तो हमारा जो जनभवन है, जनभवन के आसपास डाइवर्जन रहता है सर।
0: अच्छा।
1: और इस दौरान जो हम हजरतगंज से DSO चौराहा बदरियाबाग की तरफ यातायात प्रतिबंधित रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ लाल बत्ती चौराहा से तिसंडी तिराहा की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहता है।
0: ओके।
1: इस दौरान आप गोल्फ चौराहा से SN ओवरब्रिज वाला मार्ग प्रयोग कर सकेंगे, साथ ही आप हजरतगंज से विधानसभा वाला मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे।
0: तो सर ये
1: मार्ग थोड़ी देर के लिए प्रतिबंधित,
0: इसकी टाइमिंग क्या रहेगी प्रतिबंधित?
1: ये सर प्रातः जो है हम लगभग 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक सर ये रहेगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, 6 बजे जो योगा का जो टाइम है उसके हिसाब से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है कोलकाता में जो है योग दिवस का नेतृत्व करेंगे इसी समय पे। ठीक है
1: सर,
0: ठीक सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ट्रैफिक अपडेट देने के लिए, शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद, आभार।
0: तो भाई ट्रैफिक का अपडेट ये है कि ज्यादा कुछ डाइवर्जन वगैरह नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपको संभाल के गाड़ी चलानी होगी, और अगर आप संभाल के गाड़ी नहीं चलाएंगे तो भाई दिक्कत इस तरह से आएगी।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं समय शाम है वाद्य विजय के साथ। 6:39 का समय हो चुका है और आशियाना का वनस्थली पार्क जल्द ही मैजिकल लैंड फैंटेसी पार्क के रूप में सामने आने वाला है। यहां पर जुरासिक पार्क की तर्ज पर ड्रैगन, यूनिकॉर्न, साइक्लोप्स, एरावत के 10 इंटरैक्टिव रोबोट मॉडल देखने को मिलेंगे। साथ ही सुप्रसिद्ध इंडियन फेरी टेल पंचतंत्र की कहानी और किरदार भी लोगों को यहां पर लुभाएंगे। क्या बात है। और LDVC प्रथमेश कुमार जी ने पार्क का निरीक्षण करके विकास कार्यों का पूरा जायजा ले लिया है और सितंबर 2026 तक सभी विकास कार्यों को पूरे करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी इसको पूरा करो, तभी जो है वो क्या कहते हैं ना, पार्क बनकर तैयार होगा और इसमें जो है वो जुरासिक पार्क की थीम पर बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलेंगे। बच्चों का एक खासा आकर्षण यहां पर होगा। तो चलिए बच्चों, हमारे नौनिहाल के लिए काफी कुछ हमारी सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, सोच रही है कि उनका जो है वो मनोरंजन होता रहे। तो फिलहाल एंटरटेनमेंट तो आपका भी हो रहा है शाम अवध में, तो इसी बात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत हो जाए। और गीत गया कहां, वो रहा

0: होले होले से दुआ लगती है
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

107.7 एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं शाम में अवध विजय के साथ। 6:46 का समय हो चुका है और भारत अफगानिस्तान के मैच की अगर बात की जाए तो 93 रन भारत बना चुका है इस समय शून्य पर, यानी कोई विकेट नहीं गिरा है। यशस्वी जायसवाल ने 50 रन बना लिए हैं, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। रोहित 30 पर खेल रहे हैं इस समय और अफगानिस्तान ने गिरते पड़ते 219 रन का भारत को टारगेट दे दिया था और उसके जवाब में भारत जो है वो अभी कोई विकेट उसने नहीं खोया है और ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान में जमे हुए हैं, यानी वनडे मैच में 3-0 से क्लीन स्वीप करने वाला है भारत। अफगानिस्तान कोई भी मैच उसके हाथ नहीं लगेगा भाई, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो भैया, इसी तरह से। हाँ समझ गए भैया, गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर बांध लेना और अगर टू पहिया यानी दो पहिया से हो तो हेलमेट लगा लेना।

6:51 का समय हो गया है भाई, अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है, लेकिन 7 बजे और 7 से 8 जो प्रोग्राम होता है हेलो एफएम, घंटी बजना शुरू हो चुकी है, फोन घनघनाने लगा है। अभी थोड़ी देर राहत की सांस लीजिए, अभी आऊंगा और आपसे बातचीत जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले कल होगा 21 जून प्रातः 10 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें कौन मेहमान है कल का ये जानना आपके लिए और अपन के लिए बहुत जरूरी है, समझा? हाँ, 10 बजे आप स

का अपॉइंटमेंट है, आए क्या? तो भाई अपॉइंटमेंट है श्री रंजन कुमार साहब, प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश, और इनसे बातचीत करेंगे सुभाष खन्ना जी। एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। न्यूज ऑन एयर ऐप और डीटीएच पे आप आज के मेहमान कार्यक्रम को सुन सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कल 12 से 1 के बीच में जो प्रोग्राम होना है उसमें कृष्ण दत्त मिश्रा जी, योगाचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हमारे साथ होंगे, योग पर चर्चा होगी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। फिलहाल चलिए अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाता हूं, सुनिए दिल थाम कर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: 6:56 का समय है, शाम अहमद को यही वाइंड अप करना चाहूंगा। हेलो एफएम, मैं दोबारा आपसे मुखातिब होता हूँ। सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ की शानदार फ्रीक्वेंसी पर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: 6:56 का समय है, शाम अहमद को यही वाइंड अप करना चाहूंगा। हेलो एफएम, मैं दोबारा आपसे मुखातिब होता हूँ। सुन रही है एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ की शानदार फ्रीक्वेंसी पर।

0: जी हाँ, धड़कन फिल्म का गाना भी आपने सुना। फरमाइश पे इस समय फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: लवकुश जयपुर कस्तांग होकर बाराबंकी से बोल रहे
0: हैं। लवकुश जी बोल रहे हैं बाराबंकी से?
1: जी, बाराबंकी बॉर्डर है, सीतापुर लखनऊ बाराबंकी दोनों बॉर्डर।
0: कैसा मौसम है वहाँ का?
1: मौसम सर तो इस समय गर्मी का है, आज बादल का आवागमन लगा रहा है।
0: बारिश हुई थी क्या उधर?
1: बारिश नहीं हुई, हल्का बूंदी आई थी।
0: हाँ,
1: बारिश तो नहीं हुई है।
0: बारिश नहीं हुई, सिर्फ बूंदी हल्की हल्की आई थी।
1: हल्का सा बूंदी आई थी।
0: तो
1: हो जाए तो मौसम ठंडा पड़ जाए, आज तो गर्म बहुत ज्यादा हो रहा
0: है। बहुत ज्यादा गर्म हो रही है वाकई में। तो कैसे घर पे रहते हैं कि आप मतलब काम वाम करने जा रहे हैं?
1: नहीं सर, खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, घर पे रहते हैं, सब्जी की खेती करते हैं।
0: सुबह जाते होंगे जल्दी उठ के फिर है?
1: सुबह 5:30 बजे खेत चले जाते हैं, 10 बजे घर आ जाते हैं।
0: 10 बजे घर आ जाते हैं। हाँ ठीक भी है, लेकिन 10 बजे भी अच्छी खासी गर्मी हो जाती होगी, है ना?
1: जी सर, गर्मी तो हो ही।
0: चलिए, वो जमीन फिल्म का गाना सुनने की फरमाइश की, किसको सुनवाना चाहते हैं?
1: आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए।
0: धन्यवाद, धन्यवाद, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा, आपको तुरंत आपका जो है गाना सुनवाता हूँ, ठीक है सर? थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, जमीन फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी को सुनवाता हूँ, भाई साहब की फरमाइश पे।

0: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
3: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
2: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
4: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
3: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat।
2: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
3: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
6: पहला नशा, पहला खुमार।
7: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है। बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वहां भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000

0: से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केन्द्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
2: सरकार आपके द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह, 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत

0: में पेड़ स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर आज 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1,00,000 से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5,00,000 से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: होती है, जैसे आप आए सर जी और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद पानी गिर जाएगा। हाँ तो मिले सर जी, आए फिर पानी गिरा था सर जी, फिर आए फिर पानी गिरेगा, तो
1: क्या
0: ये चीजें होती है।
1: बात सब आप लोगों का प्यार और प्रार्थना है। ये बताइए कि सात समुंदर पार गाना किसको सुनवाना चाहते हैं, कौन है सात समुंदर पार?
0: नहीं हमारे हमारे भाई हैं मोहम्मद आसिफ भाई, तेलंगाना हैदराबाद से।
1: अच्छा।
0: और साबिर भाई हैं कानपुर से। जी हमारे दोनों भाई दूर रहते हैं लेकिन सर जी रेनबो से कनेक्ट रहते हैं और हम लोग हम भी कनेक्ट रहते हैं, तीनों भाई रेनबो से कनेक्ट रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है।
0: लोकल मिल जाता है लेकिन उनको एस के थ्रू सुनना पड़ता है, लेकिन रेनबो हम लोग को कनेक्ट रखता है, ये सबसे बड़ी रेनबो की खूबी है।
1: ये बात तो है, अपना रेनबो है ही ऐसा है ना। तो चलिए आपका गाना आपको सुनवा देता हूँ, ठीक है?
0: थैंक यू सर।
1: ठीक, परेशान ना होइएगा, फोन मिलाते रहिए, है ना, मिलेगा फोन।

0: दिव्या भारती का डांस परफॉर्मेंस और विश्वातवा फिल्म 1992 की रिलीज हुई है फिल्म, और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर, मैं प्रीतम बोल रहा हूँ।
0: प्रीतम जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सर मैं इधर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, चंपावत जिले से।
0: चंपारण जिले से बोल रहे हैं?
1: चंपावत।
0: अच्छा, चंपावत जिले से। तो वहाँ तो सर मौसम अच्छा होगा ना?
1: सर इधर गर्मी कमी होती है, फिर हवाएं चलती रहती है पहाड़ों का।
0: हाँ, अभी मैं जो है वो गया था तो देहरादून होके आया हूँ, तो वहाँ का भी मौसम ठीक था, है ना। वहाँ पे कुल्हन एक जगह है पहाड़ पे ही, तो वहाँ मेरा जाना हुआ था, तो मैं टेम्परेचर वहाँ भी 20-22-23 ऐसे ही था, तो बड़ा अच्छा और बहुत साफ मौसम रहता है वहाँ का।
1: जी सर, तो बारिश कभी भी आ जाती है, कभी धूप खिल जाती
0: है। हाँ,
1: मौसम रहता है।
0: अभी तो वहां पे जो है चंपारण में भी बारिश का येलो अलर्ट आया है आज, है ना। हाँ मुझे पता है, मैं मैसेज आया था मोबाइल पे मेरे। तो अच्छा ये बताइए कि वहां पे खेती बाड़ी करते हैं आप?
1: जी सर, इधर तो ऐसे ही खेत होते हैं, तिलहन की जैसे खेत तो होते नहीं यहाँ, तो सीढ़ी सीढ़ीदार खेत होते हैं।
0: अच्छा अच्छा वो वाले होते हैं। अच्छा वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ भी बहुत सारे होते हैं? अच्छा उधर होते, गढ़वाल साइड में है। हाँ मुझे देखा था, मैंने लौटते समय रुद्राक्ष का एक पेड़ देखा था मैंने। तो ये खेती जो है आप करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं? अच्छा चलिए, तो ये है कि कितने साल से वहां रह रहे हैं आप?
1: सर इधर तो बहुत साल से यही है, पैदाइश।
0: कभी लखनऊ आना हुआ है?
1: जी लखनऊ में बाबू जी रहते हैं सर, इधर नील मथा जैन टेम।
0: अच्छा अच्छा आते हैं फिर है?
1: जी जी।
0: क्या अच्छा लगता है लखनऊ में आपको?
1: लखनऊ में सर मैंने एक जगह इधर नवल्टी सिनेमा पड़ता है अंदर, वहाँ एक जॉब करी थी।
0: नवल्टी सिनेमा? हाँ लाल बाग।
1: जी जी।
0: अच्छा वहाँ जॉब करी थी
1: लखनऊ में पहले, आजकल तो अब गाँव में ही रहना हो गया।
0: अच्छा बताइए, खाना पीना अच्छा लगता है लखनऊ का?
1: जी जी सर,
0: जायकेदार होता है। हाँ जायकेदार, मजा आ जाता है खाने में। ये बात तो है। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए लखनऊ में कुछ तो आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। और भले आप उत्तराखंड में हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे दिल के बहुत नजदीक है।
1: जी जी सर, मैं सुनते रहता हूँ ना सर, इधर तो अच्छा साथ पकड़ता है, पहले तो नहीं पकड़ता था, आजकल पकड़ने लग गया।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो भाई देखिए, उत्तराखंड के हमारे जो लिसनर थे उन्होंने कहा मौसम बहुत अच्छा रहता है फिलहाल। हेलो
2: हेलो,
0: अरे रुकिए एक मिनट होल्ड कीजिए भाई।
2: ठीक है ठीक है,
0: अब बताइए। हाँ आवाज साफ?
2: जी बिल्कुल सर,
0: दो लाइनें मिल गई थी आपस में।
2: जी जी सर,
0: चलिए क्या करते हैं सर, आप बताइए, नाम बताइए अपना।
2: जी सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम, और सर आपको भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग और प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम।
0: सारा प्यार भरा है, क्या बात
2: है, बिल्कुल
0: बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, प्यार भर गया आपका तो दिल हमारा पानी से भर गया। ठीक है
2: जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी से बात करें सर।
0: अरे क्या बात है, तो चलिए धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। किसको सुनवाना चाहते हैं गाना?
2: सबसे पहले मेरे क्यूर से प्यारे वाले आरजे विजय सर आपको।
0: ओहो थैंक यू।
2: और उसके बाद में मोहम्मद कहीर भाई है, और मेरे आसिफ भाई हैं, और मेरी दो बहनें रिंकी पिंकी हैं, मोहम्मद जावेद अख्तर भाई हैं, समा परवीन आता है, गुलाब साहब हैं, साहिबा हैं, साधिया यासिर हमीद भाई हैं, और बाबू अंसारी भाई हैं, और मोहम्मद अमसद भाई।
0: ठीक है सबको सुनवा। हाँ हाँ
2: गाने का बोल गुनगुना देता हूँ।
0: गुनगुना दीजिए
2: जी, एक गाना मुझे सुनना है।
0: गुनगुनाइए नहीं, गर्मी तो वैसे ही बहुत है, गुनगुना नहीं, ठंडाई दीजिए। ठंडाई दीजिए, ठीक है
2: जी। ये गाना सुना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ये वाला सॉन्ग है।
0: हाँ हाँ समझ गया, वही लगाया है मैंने।
2: थैंक यू सो मच।
0: ठीक नमस्कार नमस्कार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए तो भाई फरमाइश पे, बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी को।

0: बिल्कुल, प्यार तो तभी बढ़ेगा जब आपके मन की बात और मेरे मन की बात मिलेगी। इस समय लाइन पर है। हेलो
1: जी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार सर जी, कौन?
1: राम प्रसाद, ग्राम मजनी, जिला हरदोई से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी राम प्रसाद जी, कैसे हैं?
1: हम सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बस बहुत अच्छा है। क्या करते हैं हरदोई में सर आप?
1: सर गांव में रहते हैं, जिला हरदोई।
0: अच्छा, जिला हरदोई है, गांव में रहते हैं।
1: गांव रहते हैं
0: तो खेती बाड़ी काम करते हैं?
1: जी हाँ, खेती करते
0: हैं। अच्छा, क्या उगा रहे हैं इस समय? इस समय खेत में क्या बोया है?
1: गन्ना।
0: गन्ना बो दिया है?
1: जी, गन्ना में पानी लग गया आज, खाली हो जाएगी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो गन्ने की खेती जो है वो बहुत आसान पड़ती होगी?
1: आसान है सर, गन्ने की तो धूप में काम करना पड़ता है, गन्ने में।
0: अच्छा, गन्ने में मतलब ये कोई समय नहीं होता क्या? सुबह जाते हैं 5 बजे?
1: जी नहीं, हम सुबह से तो 9 बजे तक काम करते हैं।
0: अच्छा, काम करते हैं
1: 9 बजे तक, और 4 बजे से 7 बजे तक काम करते हैं इधर।
0: अच्छा, और परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में 2 हैं, भाई बहन।
0: भाई बहन है। अच्छा, तो चलिए आपकी फरमाइश का जमाना दीवाना का गाना मैंने लगा रखा है, ठीक है
1: जी।
0: किसे सुनवाना चाहते हैं?
1: सुनने वालों को, आपको भी।
0: हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए साहब, फरमाइश पे गाना है। हेलो, चलिए दूसरे साहब नहीं है इस समय, फिलहाल ये गाना आपको

0: सात बज के 49 मिनट का वक्त है, 50 हो गया, 7:50 का वक्त है। हेलो एफएम सुन रहे हैं आप और मेरे साथ फोन लाइन पे भी कोई जुड़ चुका है। हेलो वाह क्या आवाज है। नहीं भाई साहब नहीं, हेलो नो टेक्निकल फॉल्ट है भाई, टेक्निकल फॉल्ट है। 7:50 का वक्त है, टेक्निकल फॉल्ट है। भैया ने गाना मांगा था, ये दिल है आशिकाना, ये दिल है आशिकाना का गाना तो है बजाना, लेकिन इस समय फोन लाइन पे कोई और है तो बात करना है। हेलो डायरेक्ट बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्ते सर।
0: कौन बोल रहा है जी?
1: आरती पाल।
0: आरती पाल जी कैसी हैं आप?
1: अच्छे हैं सर।
0: अच्छा क्या करती हैं आरती पाल जी?
1: कुछ नहीं सर, घर पे हैं।
0: अभी घर ही पे हैं
1: जी।
0: कौन से शहर से बोल रही हैं आप?
1: सुल्तानपुर से बोल रहे हैं सर।
0: सुल्तानपुर से बोल रहे हैं, अच्छा कैसा माहौल है? गर्मी तो वहाँ भी बहुत होगी आरती जी।
1: जी सर।
0: गर्मी बहुत होगी ना वहाँ पे?
1: जी सर बहुत गर्मी है।
0: अच्छा बताइए आम खाए दशहरी की नहीं आपने इस बार?
1: आम सर खाए, अभी हमारे यहाँ आम का पेड़ है ना, उसमें हाँ। लगा है पेड़।
0: कौन सा आम लगा है वहाँ पे?
1: अरे ऐसे नॉर्मल आम है सर।
0: नॉर्मल आम तो इसका भी तो कोई नाम होता होगा, देसी है कि चुसवा है?
1: देसी देसी सर।
0: देसी आम है, वो भी बहुत मीठा होता है
1: जी सर।
0: तो उधर दशहरी आते कि नहीं
1: जी सर?
0: दशहरी आते हैं कि नहीं उधर सुल्तानपुर में?
1: आते हैं
0: तो आने लगे। इस बार दशहरी अच्छा आ रहा है कि नहीं? कुछ अंदर से कुछ फीका सा नजर आ रहा है।
1: अभी सर लाए नहीं, अभी हमारे यहाँ पेड़ में है इसलिए अभी बाजार से नहीं आया।
0: बाजार से नहीं आया? अच्छा मैं लाया, मैंने दशहरी खाया तो ऊपर से मीठा लेकिन अंदर से हल्का सा

0: खट्टा आ रहा था शेरी, तो हम लोग मैंगो शेक बना के ही पी जा रहे हैं फिर उसको, है ना। हाँ, क्या करें अब, जब अंदर से खट्टा हो रहा है तो मैंगो शेक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसे, ठीक है। चलिए,
1: कौन मिठाया ना सर?
0: जी जी जी हाँ हाँ, चलिए एक गाना लगा हुआ है, हमारे पहले लिसनर थे उनका फोन कट गया है, ये दिल आशिकाना का, वही गाना आपको भी सुनवा देता हूँ। किसे सुनवाना चाहेंगे आप बताइए। अच्छा,
1: कोई नहीं सर, हम सब बैठे हैं, भाई है, मेरा बहन है।
0: सबको नमस्कार बोलिएगा, सबको नमस्कार, ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, ऐसे ही फोन करती रहिए आरती जी। थैंक यू, थैंक यू जी, नमस्कार नमस्कार। आरती पाल से जो है वो फोन मिल गया था। चलिए गाना बजाता हूँ, ये दिल आशिकाना।

0: जी हाँ, ये दिल आशिकाना है। 7:56 का वक्त हो गया। अब इस प्रोग्राम को ये वाइंड अप करना चाहूंगा, लेकिन हमें बहुत सारे हमारे भाई लोगों ने मेल भी किया है। राज कमल यादव जी हेलो एफएम में, उन्होंने ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज से मेल किया है। और राजन शर्मा जी, नमस्कार राजन शर्मा, और धुरंधर मूवी का हालांकि गाने की फरमाइश की उन्होंने। सर इसमें फ़ोन प्रोग्राम होता है तो फ़ोन इन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है जो मेल किया है, रामराज जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। आपने गुलफ्सा सिद्दीकी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बैनित कुमार जी आपको भी, विनीत कुमार जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, भैया मोनू सेठ हमारे, वो तो हम जैसे ही आए थे वैसे ही उन्होंने हमको मेल कर दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको। अशोक कुमार जी, दादा मोनू थैंक यू वेरी मच, आपका आपने मेल हमें किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब लेकिन इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करेंगे क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर आ गए हैं हमारे अजीज कलाकार अनवारुल हसन साहब, नमस्कार।
1: हाँ तो मतलब मैं आ चुका हूँ क्योंकि अब विजय भाई की देखिए सांसें फूल रही हैं, थक चुके हैं बहुत ज्यादा,
0: बहुत अब थक चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ भाई, बहुत थक गया हूँ, संभाल लो।
1: चारपाई बिछा दी।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली जिले के तारकेश्वर में प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की कि वो खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, साथ ही आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज मैनपुरी के लोहिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन एवं सौंदर्यीकरण की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैनपुरी के वन चेतना केंद्र और समान पक्षी विहार को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी मजबूत कर रही है। गोरखपुर नगर निगम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन पूर्व पर राप्ती नदी के तट स्थित रामघाट पर स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई साथ थीम के अंतर्गत स्वच्छता महापर्व का आयोजन किया। अभियान का नेतृत्व महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन ने किया। उपस्थित जनसमूह को प्रेरित करने के लिए महापौर और वरिष्ठ अधिकारी

0: कर्मचारियों ने खुद हाथों में झाड़ू और फावड़ा थामकर श्रमदान किया और सुंदर एवं स्वस्थ गोरखपुर के निर्माण का संकल्प दोहराया। रामपुर में रजा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय योगोत्सव के अंतर्गत आज स्वर साधना योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता जिला योगासन खेल संघ के सहयोग से संपन्न हुई। प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों के विद्यालयों एवं संस्थानों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इनमें विभिन्न स्कूलों के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने आर्टिस्टिक एवं पारंपरिक योगा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा, अनुशासन, शारीरिक दक्षता तथा योग के प्रति समर्पण का परिचय दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: सारे गा पदा निदा पगरे गा मगरे गा सागा।
3: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: तुमसे नजर मिली तो गजल बन गई, हर लफ्ज ने तुम्हारे नाम का असर पा लिया। दिल की तर्ज पर जब तुम्हारी सूरत सामने आई, ख्वाबों ने भी सांसें थोड़ी सी तेज कर ली। तेरी अदाओं में बस गया एक बहाना इश्क है, हर सांस में घुल गया तुम्हारी यादों का शहद, मोहब्बत के हर अल्फाज में। यही हकीकत है या महज ख्याल, कभी कभी ये भी लगता है। लेकिन तुम्हारी आवाज जब कानों में घुलती है, मायूस दिल भी मुस्कुरा उठता है। रूह की तह में एक मंजिल है, एक आरजू जागती है, और इस वक्त अगर ठहर कर हम देखते हैं तो तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी नजर ने दी है ये स्याही सी रोशनी, जिसमें मैं लिखता हूं तो लिखता चला जाता हूं। लगता है जैसे एक जिंदगी का मकसद यही है, और अगर ये मुलाकात एक वक्त का फसाना बन जाए तो हर वक्त को मैं पसंद करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी याद है वहां। तुमसे नजर मिली तो गजल बन गई, और गजल ने तन्हाइयों को दावत दी, तो आओ क्यों ना खो जाए उस लम्हे में। याद करें उस पल को जब नजर से नजर मिल गई थी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
3: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
3: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
2: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

बहुत सारी चीजें वक्त के साथ खत्म होती जाती हैं, सिर्फ चांद तारे ही नहीं, आपकी पलकें भी। वो एहसास नहीं पा पाती, वो सुकून नहीं पा पाती हैं, जागती रहती हैं ना रात भर। किसी की याद में जागते रहना परेशान भी तो करता है। जब निगाहों में उन रातों के तारे बिखर जाते हैं तो हयात की सुबह भी बदनाम लगने लगती है। कितनी प्यारी थी तुम्हारी आंखें, तन्हा गुफ्तगू करती थी, लेकिन आंखें भी कीमत चुकाती हैं हर पल की बेकरारी की, अधूरे ख्वाबों की, वो सूली सी शाम जो अपने निशान छोड़ जाती है। हुस्न याद ने दिल को आबाद रखा, मगर आंखों की चमक ने धीरे धीरे काफी कुछ धुंधला कर दिया। कितना भी रोशन कर ले दिल के आलम को, आंखों की वो पलकें कुछ कमजोर रहती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, कुछ रातें बेकरार करती हैं। और यादों का करार अगर इतना महंगा है तो क्या वो करार निभाना चाहिए? तो आंखों की भी हिफाजत कीजिए। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, इन्हें रात भर जागकर किसी की याद में इतना बेकरार, इतना बेबस मत करो। रात के 8:29 हो चुके हैं। आप शार सुन रहे हैं, आप 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल हसन के साथ।

रवा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, रवा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के सांस पे मल्लाह गीत गाता है, तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोलों से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है।

8:40 हो चुके हैं, 39 सेकंड भी, बल्कि 40 सेकंड हो गए हैं और अब इजाजत लेने का वक्त आ चला है आबशार से, क्योंकि हम थोड़ी देर में आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे और जब 9 बजे लौटेंगे तो एक खूबसूरत सी महफिल सजने वाली है, जहाँ जहाँ पर आपको भी मौका मिलेगा कि आप भी हमें मेल करें और आपके जो संदेश हो हम उनको शामिल करें। रेनबो कैफे में हम आपसे मुखातिब होंगे और रात 10 बजे जब हम लौटेंगे फिर तो दूर तक और देर तक रजनीगंधा की खुशबू महकेगी। तो फिलहाल इजाजत लूंगा, एक शेर बढ़िया सा मेरे सामने था तो वो आप तक पहुंचा देते हैं कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। तो इजाजत दीजिए अनवारुल हसन को, फिर लौटते हैं बहुत जल्द। शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि वे देश के लोगों

0: के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयास सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
7: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्ट

0: कार्य रहते हैं जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
4: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी, और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त रेनबो कैफे, नौ बजकर 18 मिनट हो चुके हैं 41 सेकंड भी। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूँ, और हमारे साथ आपके ढेर सारे मेल हैं, बिल्कुल बारिश की तरह से हैं, जैसे बारिश हो रही हो। अनवारुल सर जी नमस्कार, ये लिखने वाले हैं कमल पांडे जी। मैं कमल शंकर पांडे ग्राम मोहल्लिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ। कार्यक्रम रेनबो कैफे के साथ जुड़ा हुआ हूँ सर जी। इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है और हम सब गर्मी से बहुत परेशान हैं। मैं रेडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस गर्मी में अपने साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों का विशेष ध्यान रखें, उनके दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें। और हमें कार्यक्रम बहुत पसंद है, कार्यक्रम में गीत बहुत अच्छे बज रहे हैं जो पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम में मेरा मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने संदेश दिया वो भी बहुत ज़रूरी संदेश है, और हमें खुद इतना अंदर से ये हमें ख्याल रहना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी समाज के प्रति है। और खास बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक फरमाइश कर दी है सोनू भार्गव जी आपने, और बुंदेली सॉन्ग करें तो भाई क्यों नहीं बजेगा, भोजपुरी बजा है तो बुंदेली भी बजेगा, है ना। तो परेशान मत होइए आप, ग्राम चकुमरी झरेखापुर जिला सीतापुर से आपने मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और शादाब खान साहब, आपका मेल कहाँ से आया है? विलेज बेलई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आपने मेल किया है। लिखते हैं, सलाम अलैकुम सर, और कैसे हो आप? रेनबो कैफे का हमको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो चलिए आपका जो सब्र है वो ख़त्म हुआ और आपको सब्र का फल भी मिल गया। कहते हैं कि मीठा होता है यह फल। अस्सलामुअलैकुम, जल्दी जल्दी आया करो। वकील साहब कह, अरे भैया आप कल तो आए थे, हम अब इससे जल्दी क्या आ जाएं कि रात में क्या 18 घंटे के अलावा बढ़ा लें क्या टाइम? वैसे मन था हमारा कि कल हम जाएं ना, और हम गए नहीं थे, हम यहीं सो गए थे रात में, और हमारी नींद खुली थोड़ी सी देर में। हम सोए इसलिए थे कि सुबह जल्दी उठेंगे तो हम यहीं गुड मॉर्निंग भी कर लेंगे, तो आपकी वो शिकायत ही पूरी हो जाएगी। लेकिन हम सोते रहे, किसी ने उठाया नहीं, हम किनारे ये जो सुबह लोग करने आए थे ना, तो वो हमको देख नहीं पाए। ये बड़ा सा स्पीकर यहाँ रखा है, इसके आड़ में हम अपना चादर लपेटे सो रहे थे। तो वकील साहब आगे क्या लिखते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, रेनबो कैफे काफ़ी अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, आप भी आकर खा लीजिए। ओफो, दुखती रख पे हाथ रख दिया इन्होंने, खाने का सच में टाइम है ये, हमें नहीं मिलेगा लेकिन अभी ठीक है। तो वकील अहमद साहब ने वकील अहमद मंसूरी कटका हतोरी जिला सीतापुर से आपने मेल किया है। साथ में आपने दो नाम और लिखे हैं, साजिया अंसारी और शमा परवीन का। तो चलिए शुक्रिया लिखने के लिए, हमने आपका मेल पढ़ दिया। राजकमल यादव जी आपको भी पढ़ देते हैं। राजकमल यादव जी ने ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से लिखा है, और वेलकम बैक सर जी, प्रणाम, कैसे? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। भुट्टा खाने को बुलाए थे, आप आए नहीं, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए, कल भुट्टे पे आपने कल हमें एक मेल किया था जिसमें भुट्टे के बाद आपने कुछ लिखा ही नहीं था, आप अपना पढ़ लीजिएगा। तो भुट्टा के बाद हम समझ तो गए कि भुट्टा भून रहे हैं आप शायद, तो इसीलिए जल्दीबाजी में पूरा मेल नहीं लिखा। भुट्टा जलने लगा होगा तो आप दौड़ के भाग गए होंगे, मेल अधूरा छोड़ के आपने वहाँ क्लिक कर दिया, मेल हम तक पहुँच गया और भुट्टा वहाँ जल गया और आप हमारा इंतजार करते रह गए। चलिए किसी दिन आएंगे तो हम, अब आपने पता भी लिख दिया है तो हम पहुँच जाएंगे, खा लेंगे भुट्टा। भुट्टा बहुत अच्छा लगता है अगर ताज़ा ताज़ा हो, है ना। तो अगर खेत में आप उखाड़ के उसी वक्त निकाले वहाँ से, और हाँ हाँ हाँ फिर उसमें नींबू वीबू लगा के

थोड़ा सा नमक मिर्चा और थोड़ी सी चटनी वटनी लगा दे तो उफ़ो मज़ा आ जाएगा। साथ में लिखते हैं कि हमारी बेटी हिमांशी यादव और मेरी वाइफ संगीता यादव भी आपको नमस्ते बोलें। बिल्कुल मेरी तरफ से नमस्ते और बच्ची को बहुत बहुत प्यार। साथ में अगला मेल भी पढ़ देते हैं और फिर गाना आप तक पहुंचाएंगे। दो मेल है बल्कि हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप ही का मेल है, वो आपने दोबारा लिख दिया है फिर से। आपके दो मेल आ गए हैं भैया, एक मेल और है, चलिए हम पढ़ देते हैं। अयोध्या प्रसाद जी ने हमें लालपुर सीतापुर से ये संदेश भेजा है और लिख रहे हैं कि आज भीड़ बहुत है, प्रोग्राम बहुत लोग सुन रहे हैं, और राधे लाल जी का नाम इन्होंने खास तौर से कहा है कि ले लीजिएगा, क्योंकि राधे लाल जी वो व्यक्ति हैं कि जैसा ही कह रहे हैं कि आप गाना बजाते हैं तो वो नाचने लगते हैं। भाई वाह, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जगमोहन लाल जी का भी आपने नाम लिखा है कि वो भी बैठे सुन रहे हैं और बाकी और भी भीड़ इकट्ठा है, तो सबके लिए हम सुना देते हैं। तो आप भी थोड़ा सा वॉल्यूम तेज़ कर लीजिए और राधे लाल जी नाच पड़े, इसलिए हम गाना बजाएंगे थोड़ा सा जोर से।

जी, और उसके बाद बिल्कुल शांति हो गई, मतलब सब नाचते नाचते लगता थक गए। 9:26 और 27 सेकेंड हो गए, और अगला गाना भी हम जोर से ही बजाएंगे। और जो मेल है अगला, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इंद्रपाल मिश्र जी ने हमें लिखा है, ग्राम अमृता मोहाली सीतापुर से, आशा अवनीश विनीश अक्षत और गरिमा, ये भी नाम आपने लिखे। और बड़ा मोटा मोटा बता ना क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा कि भगवान कसम एक बात आपसे सत्य सत्य कहता हूँ, प्रोग्राम आपका हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है।

भाई वाह, क्या बात है, ये तो बिल्कुल दिल को छू दिया आपने, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आपका प्रोग्राम अच्छा लग पा रहा है, मैं ठीक कर पा रहा हूँ। और आपके जो मेल हैं वो बारिश की तरह से बरस रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि आपको शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तालिब अंसारी साहब राजा कटरा बाराबंकी से लिखते हैं, अच्छा पिछला प्रोग्राम आबशार सुन के ऐसा लगता है जैसे कभी कहीं खो से गए हों और अलग दुनिया में चले जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों महसूस होता है सर जी? और फिर एकदम से धमाल मचाने वाला प्रोग्राम आप एकदम से लेकर आ जाते हैं, फुल एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। शायद इसीलिए एफएम रेनबो कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर रंग के प्रोग्राम हैं। बिल्कुल, आपने खुद सवाल किया और खुद जवाब दे दिया, और थैंक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, आपने लिखा है, ऑल आरजे एंड ऑल टीम मेंबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लिखने के लिए तालिब साहब आपने, और ये सच भी है। और जब हम इमोशनल हो जाते हैं, कुछ मन से बोलने लगते हैं, तो आवाज़ वो दिल की होती है और दिल तक करके पहुंच जाती है, तो मुझे लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं। और ऐसा ही रात में भी होता है, जब आप रहेंगे मेरे साथ तो फिर आपको लगेगा कि चीज़ें बदल रही हैं, थोड़ा सा रोमांटिक होंगे, और उसका जो परिणाम होता है वो रात 11 बजे के बाद मैं सामने पेश करता हूँ कि कैसे चुपके चुपके फिर आंसू बहाने पड़ते हैं। 9:28 हो गए हैं, और अशोक कुमार जी का, अशोक राज जी का भी मेल आ चुका है। गुड इवनिंग, आपने लिखा है, और रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से आपने लिखा है हमें कि सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम शब्दों में अपनी बात कह दी। राज प्रताप एंड बीडी, अच्छा बड़ा गांव, अच्छा एड्रेस है वो, एंड नहीं है, राज प्रताप एड्रेस है इनका, बड़ा गांव मोहाली सीतापुर। अनवारू सर नमस्ते, आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम आपको बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, हम 20 साल 55 से करते आ रहे हैं। एक निवेदन है, सुगंध मार्टी के कार्यक्रम शाम को कर दिया जाए। आप और ओम भैया और अंजू शुक्ला जी एक साथ सुगंध माठी में आ जाइए तो तहलका मच जाएगा। हम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ ऐसा ऐसा करवा दीजिए। भाई सही जगह पर आप अपनी बात कहिए, हमारे अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाइए। आप जानते हैं किस प्रोग्राम में कहना है, तो मुझे भी लगता है कि कुछ कुछ खास प्रोग्राम हैं उनका वक्त अगर शाम का हो तो शायद ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा आराम से वक्त निकाल के लोग ज़्यादा बेहतर सुन पाते हैं उसको। और जहाँ तक मेरे आने की बात है, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमारा तो बिल्कुल एक झोला तैयार रहता है कि बस उठाए और चल दिए, तो बस हम कभी भी आ जाएंगे। जैसे ही आप याद करेंगे। मोहम्मद साबिर अंसारी, आपका भी मेल पाल देते, प्रोग्राम मस्त लग रहा है, कानपुर में भी आपके जलवे हैं, आया है, क्या बात है। मेरे यहाँ सब लोग कहते रहते हैं 8:30 बजे से साबिर भैया एफएम लगाओ, 8:30 बजे से नहीं, अच्छा 8:30 बजे से कहना शुरू कर देते हैं, ये आप कह रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों के नाम ले लीजिएगा, अब बिल्कुल ले लेंगे, आप लिखिए तो। हाँ लिखा है नीचे, भाई देखिए तो, आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, इस्माइल अंसारी कानपुर से, अली अंसारी कानपुर से, अब हमारा भी नाम लिख दे देते हैं, अनवारुल हसन लखनऊ से, क्योंकि हम भी सुन रहे हैं, हम बजाते खाली नहीं है, सुनते भी हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर रखते हैं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सर दर्द हो जाता है उसके बाद, रात में पहुँचते हैं सर में तो ज़रा तेल वेल सर में लगाते हैं तब नींद आती है, चमेली का तेल लगाओ तो बहुत अच्छी नींद आती है, खुशबू बहुत महकती है। सलाम आदाब कबूल करें, बसंत कुमार सिन्हा जी ने ये हमको मेल किया है और लिख दिया है, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, नन्हे मुन्ने अन्विका, तनुषी गुप्ता, इतने लोग भी इसमें शामिल है, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। और हाँ, जो गाना आपने लिखा है वो पुराना गाना है, और उसका इस तरह के गाने वैसे भी फरमाइशी नहीं है, और अगर आप रात में 10 बजे से 12 बजे तक हमारे साथ रहेंगे तो आपको इस तरीके के गाने सुनने को ज़रूर मिलेंगे। किसका मेल रह गया भैया, किसी का रह ना जाए। विकास यादव जी का मेल हमारे पास आया है, नमस्कार, हम विकास यादव आपका प्रोग्राम सुल्तानपुर से सुन रहे हैं, हमें भोजपुरी गाना सुनने में मजा आता है, एफएम रेनबो पर ये अनएक्सपेक्टेड लगता है। क्यों लगता है, आप रोज नहीं सुनते हैं क्या? अरे आप रेनबो कैफे जब सुनते हैं तो आपको सब कुछ सुनाई पड़ता है, और आपको हम सुना चुके एक, आगे और सुनाएंगे, ये ना सोचिए, हाँ आप दिल छोटा ना कीजिए। विनीत कुमार का मेल है अगला, और क्या लिखा है इन्होंने, और आप लिखते हैं, अच्छा हमने तो आपका मेल शामिल कर लिया था, आपने लिख दिया कि आप मेरा मेल शामिल किया जाए, आप शायद लगता बाथरूम जो है चले गए थे उस वक्त तो सुन नहीं पाए,
तो ध्यान रखा कीजिए। आपको हृदय से धन्यवाद, बारंबार प्रणाम। आपकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुपर हिट लाजवाब। हंसते रहें आप हजारों के बीच में सर जी, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। वाह वाह क्या बात है, शेर लिख दिया। और गिरते रहें ईमेल, बरसाते रहें ईमेल एफएम आकाशवाणी रेनबो पर। भाई वाह क्या बात है, दुआ भी कर दी आपने रेनबो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बसंत कुमार सिन्हा जी, हमने अभी भी आपका मेल पढ़ा और फिर से एक मेल आ गया। अब एमा नवाब, आपका मेल पढ़ने के बाद हम गाना पहुंचाएंगे। आदाब अनवारो सर, कैसे हैं? अगर आप कल ना बताते आज हम आ रहे हैं तो हम बोलते हैं सर आज तो चमत्कार हो गया। कल आपने जो गाना बजाया था, अफसाना लिख रही हूँ, ये गाना बहुत अच्छा था। मैंने पूरा रजनीगंधा सुना। अच्छा अच्छा सर, खाना बना रही हूँ, आपको फिर लगा होगा हम पूछने वाले हैं। अच्छा देखिए, इसी को कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं धृष्टता। यानी आप बता रही हैं, पूछ नहीं रही हैं, खाना बना कर आए हैं क्या सर? इन्होंने मुझसे पूछा है कि खाना बना कर आए हैं क्या सर, आपकी मजबूरी समझती हूँ, वापस घर भी जाना है आपको। हाँ बिल्कुल जाना है, घर तो जाएंगे, कल से गए नहीं हैं, यहीं सोए थे, बता चुके हैं हम आपको। तो आज घर जाएंगे तो खाना कहाँ बना के आए होंगे? हमने पूड़ी और सब्जी खरीद ली है, वो हमारे झोले में रखी है, वही खाएंगे जाके हम, ठीक है? तो चलिए हम गाना बजाने जा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, आप मजबूरी भी समझती हैं और ये अच्छी बात है। और गाना अभी मैंने कहा था ना कि बस मैं ज़रूर बुंदेली भी कोशिश करता हूँ बच जाए। बुंदेलखंड से ही मेरा बड़ा ख़ास रिश्ता है, रिश्ते तो बहुत जगह से हैं, हम जहाँ जाते हैं वहीं बना लेते हैं वैसे। तो गाना सुनिए आप।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
1: वो भूली दास्तान फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

चलिए, ये अच्छी बात है कि उन्होंने बता दिया कि इन्होंने कैसे डांस किया और आप लोग कैसे कर रहे हैं, या बता सकते हैं। नौबत का 40 मिनट, बल्कि 41 मिनट हो गए हैं, और बस ये ज़रूर कहेंगे कि जब 5 मिनट बच जाए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने में, तो बस तब मेल जो भी आप भेज रहे हैं उसका सिलसिला रोक दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि उसके बाद अगर मेल आप करेंगे और रह जाएंगे तो फिर आप शिकायत करेंगे। और एक साहब तो बल्कि मुझसे कह रहे थे कि आप बड़े ईगो वाले व्यक्ति हैं, आप तो मेल तक हमारा नहीं शामिल किया। उनका मेल फिर मुझे रजनीगंधा में मिला, यानी रजनीगंधा तक वो मुझे बार बार मेल करते रहे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा वक्त का, आप लिखते हैं तो हम ज़रूर शामिल करते हैं। अगला जो मेल है जयराम खोरवाल, और आपने हमें होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से आपने मेल किया, दिल्ली में आप हमें सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, दिलवाले हैं आप इसका मतलब है, और सभी प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम में जो भी सॉन्ग है वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया जय जी। महेंद्र दीपन जी का मेल आ चुका है, लगता है ये पोस्टर वोस्टर बना रहे थे, क्योंकि अक्सर ये पोस्टर बना के भेजते हैं, बड़ा खूबसूरत सा आज भी आपने पोस्टर बना दिया है। FM रेनबो लखनऊ की धड़कन धड़कन लखनऊ की पर आपकी मधुर आवाज़ और शानदार अंदाज में कार्यक्रम सुनना हमेशा एक अलग ही खुशी देता है, आपकी प्रस्तुति में अपनापन मिठास और श्रोताओं के लिए खास जुड़ाव महसूस होता है, और ऐसे ही अपनी मुस्कान भरी आवाज़ से श्रोताओं के दिल जोलते, इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनते हैं आप महन जी। बिल्कुल, मैं यही बात कहता हूँ कि हमारी मुस्कान भी रेडियो पर दिखाई पड़ती है, तो रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं, ब्लाइंड मीडियम ज़रूर है, लेकिन अगर मन की आंखों से आप उसे देख सकते हैं तो आप काफ़ी कुछ महसूस कर सकते हैं। मेहंदी पन जी ने हमें जो है ये मेल कहाँ से किया ये ज़रूर बता दें, हालांकि आप अच्छे से जानते हैं। मेहंदी पन जी ग्राम रूड़ ज़िला नागौर राजस्थान से मेल करते हो, लगातार आप हमें सुनते हैं, लिख रहे हैं कि सर जी आज का प्रोग्राम सुनने का समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी गुजरात में हैं, कल सुबह गाँव के लिए निकलेंगे। अच्छा, गुजरात से आप ये मेल कर रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, आप हमें जो है अगर ऐप के माध्यम से सुनते हैं, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से, तो आप कहीं भी हों, कोई भी तैयारी कर रहे हों, आप रास्ते में सुन सकते हैं। और मैं तो हमेशा ये बात पहले कहता हूं कि आपके काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, प्रोग्राम को उतना महत्व मत दीजिए, हम तो आपके दिल में रहते ही हैं, तो ठीक है आपको जब बहुत ज़रूरत हो तो काम आपका ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ध्यान दिए। गुड इवनिंग प्यारे आर जे अजीज़ अनवारुल हसन।

सर जी आप कैसे हैं? आज फिर आप आए प्रोग्राम में, बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका। सर 2 दिन बैक टू बैक बैक आए हैं, लग रहा है आप छुट्टी बजाने वाले हैं। ओफो क्या बताएं हम सर, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं, जितनी तारीफ कर रहे हैं उतनी कम है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर जी बहुत सुकून मिल रहा है प्रोग्राम सुन के, आपकी पेशकश बहुत उम्दा है। और आप लिख रहे हैं कि रजनीगंधा स्पेशलिस्ट सर, कल तो बहुत अच्छा लगा आपका रजनीगंधा, और हम घर पहुंचे तो हमको पता ले दो, हमने झूठ बोला था कि भेद खुल गया, हम कहते हम यहीं सोए थे। देखिए इसीलिए कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जब आप झूठ बोलते हैं ना, यानी हम जब झूठ बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो झूठ पकड़ा जाता है। तो अब चलिए कोई बात नहीं, घर में हम यही सुनने में लगा कि बड़े पुराने पुराने गाने बजा दिए, तो हमने बताया नहीं कि किसके लिए बजा रहे थे, है ना। तो सर अब आप किसी दिन गुड मॉर्निंग लखनऊ में ज़रूर आइएगा, तो सभी शिकायतें दूर हो जाए। अरे आप बुलाइए तो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अजय कुमार जी ने ये फतेहनगर सीतापुर से मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी आपने लिखा है कि सर आप रात में घर क्यों नहीं जाते, रात में भूख लगती है तो क्या करते हैं, आज भी स्टूडियो के स्पीकर के बाजू में ही सोएंगे क्या? अब कहने का कुछ बचा नहीं इस मेल के जवाब में, बात हो गई इससे पहले ही। चलिए प्रवीण जी कोई बात नहीं, कभी कभी हम यहाँ रुकते भी, ऐसा नहीं है हमेशा हम झूठ नहीं बोलते हैं, कभी कभी हम रुक जाते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ ज़मीन भी देख ली है, पीछे यहाँ पर टावर लगा है, वहाँ पर ज़मीन काफ़ी है, तो अगर ये लोग हमको दे दें तो हम यहीं रुक जाएंगे, अपनी झोपड़ी ओपड़ी बना लेंगे छोटी सी, और इसमें आसानी ये रहेगी कि सुबह हम जल्दी आ जाया करेंगे यहाँ, और इससे पहले कि कोई और आए हम इस कुर्सी पर आके बैठ जाएंगे, तो प्रोग्राम फिर हम ही करेंगे। 9:45 हो गए। रचना मिश्रा जी आपका भी मेल है, हाय सर आप मेरा मेल नहीं पढ़ते हैं, अरे इल्ज़ाम लग गया लीजिए हम पर, कोई बात नहीं आता है तो हम ज़रूर पढ़ते हैं। सर मेरा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए, मेरा श्याम सलोना, आपने एक फरमाइश लिख दी है। भाई ये फरमाइशी वाला प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमने मेल आपका देखिए ज़रूर पढ़ दिया है, है ना, और आता है मेल, अगर वक्त पे आ जाएगा तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। राजेश कुमार जी का भी मेल पढ़ देते हैं। सर जी नमस्ते, कैसे हैं? आपका प्रोग्राम खाना खाते हुए सुन रहे हैं, मछली बनाई इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ भी बनाइए बढ़िया से, खुश होकर खाइए। शैलेश कुमार जी, स्नेहा सोनी नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, अच्छा आपने लिखा है, शैलेश जी के मेल से आपने मेल किया है। अनवारुल सर को मेरा सलाम आदाब, कबूल हो, आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यासिर भैया मियागंज से, गुलफशा दीदी संडीला से, पीहू कानपुर से, वंदना रोशनी, बबीता संदीप भैया, राजेश भैया, ओम भैया, सभी को नमस्कार बोल दीजिएगा। भाई सभी को नमस्कार बोल दिया, और हम गाना जल्दी से बजा दें, ये लीजिए आ गया।

जी नौबत के 49 में भी हो चुके हैं और आपके मेल बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो फिर हम आपके मेल शामिल कर लेते हैं। सर, हम लखीमपुर से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप गाने बहुत अच्छे बजा रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, गाने तो हम अच्छे बजा रहे हैं, हमको भी लग रहा है आज। अजय कुमार जी का मेल है, चलिए शुक्रिया इसके लिए। और अगला मेल पढ़ देते हैं, मोहम्मद माज अंसारी शाहपुर से आपने हमें मेल किया है, बाराबंकी से सुन रहे हैं। अनवारु सर कैसे हैं आप, कल आबशार और रजनीगंधा प्रोग्राम, अरे तारीफ आ रही भैया, कल की हमारी तारीफ आज आ रही है लगा। और आप हेलो एफएम में आओ, और हेलो एफएम का टाइम 8 बजे रात को करो। अच्छा भैया, भैया अब ये हम कर ना पाएंगे तो हम आगे बढ़े जा रहे हैं। आपको कहाँ कहना है ये हम बता चुके हैं। एम के राज जी का मेल है, भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से आपने लिखा है, आपका हर कार्यक्रम बेमिसाल है और सुनते सुनते बीत गए कई साल हैं। वाह वाह क्या बात है। और आप अगर हमारी ये दो लाइन पढ़ देंगे तो हम दोगुना डांस करेंगे। कौन सी लाइनें पढ़नी है लेकिन, अच्छा वही वही लाइन थी या नीचे है दो लाइन, अच्छा नीचे है दो लाइन। गर्मी ने कर दी अपनी हदें पार, कोई पानी के लिए झगड़े, कोई कहे पंखा इधर घुमाओ यार। अच्छा चलिए, देखिए हमने पढ़ दिया, अब आप डांस ज़रूर कीजिएगा बढ़िया से। और यासीन जी आपका भी मेल हमारे पास आया है, और ये आपने दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमें ये मेल किया, और बहुत सारे अपने मित्रों के भी आपने नाम लिखे हैं। गुलफ़शा सिद्दीकी आपका भी मेल हमारे पास आ चुका है, और लिख रही हैं संडीला से, और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपकी मुस्कुराहट का जवाब नहीं आपकी आवाज़, अच्छा आपने तारीफ अकेले नहीं अच्छा लगता, तारीफ़ करते कोई और होना हमारे साथ तो हम उसको इशारा कर देंगे तुम पढ़ो। ऐसा करते थे हम, जब दो लोग होते तो तारीफ आती थी आपको बता दे, तो दूसरे को इशारा कर देते कि देखो हमारी तारीफ आई, जब तुम पढ़ दो तुम्हारी हम पढ़ देंगे। अब ये बताइए किसी को नहीं देखी, बहुत अंदर ये बात आपको बता दी हमने, तो ठीक है आपने, आप इसको सुन रही हैं, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा और रोशनी रावत और बबीता राव, नीलू शर्मा, आपने कहा कि सबके नाम ले लीजिएगा तो चलिए ले लिया है हमने नाम। आगे बढ़ते हैं, सावित्री देवी जी ने रेनबो कैफ़े पसंद किया है, और बड़ी अच्छी बात है कि इमोजी मुस्कुराता हुआ सा भेजा और गुड लिख दिया, यानी हमें गुड मिल गया। ये बचपन में भी कभी गुड मिल जाता था तो बड़ी खुशी होती थी, है ना। तो डियर सर जी कैसे हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। सर जी आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, आपकी हंसी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। भरतपुर बरगदही से आपने हमें बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर इटौंजा, यहीं से लखनऊ से ही आप हमें सुन रही हैं। अब जल्दी से हम मेल कर देते हैं, जो लोग हमें पहले मेल कर चुके, जिनको पढ़ चुके हैं उनके मेल देखिए हम छोड़ रहे हैं। अमित बहेलिया जी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं और आपको बहुत पसंद आ रहा है, चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शीलू मौर्य जी आपका भी मेल पढ़ने के बाद, कि पीछे वाले चुप भी हो गए, वो जो बजा रहे थे हमारे पीछे सहयोग कर रहे थे चले गए, क्योंकि खाना उनका ठंडा हो रहा था तो वो खाना खाने गए, अब वो नहीं बजाएंगे। तो शीलू मौर्य जी का मेल पढ़ देते हैं। शीलू मौर्य जी ने हमें फैजुल्लागंज लखनऊ से लिखा है, प्रोग्राम में गाने आपको बहुत प्यारे लग रहे हैं, भोजपुरी सॉन्ग अच्छे लगते हैं, बट हम लोग भोजपुरी लैंग्वेज बोल नहीं पाते हैं। हाँ ये हमारे साथ भी होता है, किसी दिन मिलिएगा तो हम लोग मिल के सीखेंगे। और मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे पूछती थी हिंदी का कोई वर्ड बताती हूँ, फिर कहती कि भोजपुरी अच्छा अच्छा ऐसे सीखने की कोशिश करती थी आप, वो सीख देखिए तब भी नहीं पाई, तो आपने अपनी दोस्ती का कोई फ़ायदा वायदा उठाया नहीं। अब मेल मत कीजिएगा देखिए, हैं क्योंकि अब

हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं, 9:53 हो चुके हैं। एक छोटा सा गाना बजाएंगे, फिर एक विज्ञापन बजाएंगे और फिर एक गाना बजाएंगे, और तब हम रजनीगंधा में फिर लौट के आएंगे। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा आज महात्मा विदुर सभा कक्ष में आगामी मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के पीस कमेटी सदस्यों, ताजियादारों, संभ्रांत व्यक्तियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ताजिया जुलूसों के निर्धारित मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत तारों, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। एनटीपीसी दादरी ग्रेटर नोएडा में बालिका सशक्तिकरण अभियान का समापन आज हो गया। ये 4 सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, व्यक्तिगत विकास, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, जागरूकता एवं जीवन कौशलों के माध्यम से सशक्त बनाना था। इस वर्ष जीईएम 2026 में 12 सरकारी विद्यालयों से 113 छात्राओं ने भाग लिया। समापन समारोह में एके मिश्रा, कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख दादरी, तथा काशीना चंद्र मौली, कार्यकारी निदेशक सहित एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी, छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान छात्राओं ने स्वागत गीत, गणेश वंदना, गुजराती लोक नृत्य, भांगड़ा नाट्य प्रस्तुति, महाभारत एवं मर्दानी नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त वितरण के अवसर पर जनपद रायबरेली का मुख्य कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान एवं कृषि विपणन, कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान किसानों ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर जनपद हुगली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा एवं प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्य कार्यक्रम में लगभग 200 किसानों ने प्रतिभाग किया। जनपद चित्रकूट के कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की किस्त हस्तांतरण का लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के 136 किसानों ने आभासी माध्यम से भाग लेकर पीएम का संबोधन सुना। इस अवसर पर अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किसानों को धान की उन्नत किस्म बौना दुबराज का बीज प्रदर्शन स्वरूप वितरण किया गया। धान की वैज्ञानिक खेती, नर्सरी तैयारी, एसआरआई पद्धति, जल प्रबंधन व कीट रोग नियंत्रण पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। किसानों ने कार्यक्रम को लाभकारी बताते हुए प्राप्त जानकारी को खेत में अपनाने का संकल्प लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

खुद चले आओ या बुला भेजो, खुद चले आओ या बुला भेजो, रात अकेले बसर नहीं होती। हम खुदाई में हो गए रुसवा, मगर उनको खबर नहीं होती। कभी कभी सितारों की चमक से बहुत ज्यादा रोशन हो जाता है आसमान, खुल जाते हैं आसमान के दरीचे, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बेचैन हो जाती है रात। मोहब्बत के फरिश्ते चुपचाप देखा करते हैं ये सारा अहवाल सब कुछ, और फिर घबरा कर धरती पर उतर आती है एक और रात, जैसे आज भी ऐसी ही एक रात न जाने क्या तलाश करने के लिए उतरी है। रजनीगंधा के आंगन में आज भी मोहब्बत के अफसाने भी होंगे, दर्द की दास्तान भी होगी, और आपके साथ रहेगा आपका दोस्त अनवारुल हसन। तो स्वागत करते हैं आप सबका, नमस्कार।

तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेपती डरती, खुद अपने साए की जुम्बिश से खौफ खाए हुए।

आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल

वो जो नजरों से तुम चलाते हो तीर वो आर पार रहता है। तुम्हारी नजरें कभी तिरछी हैं कभी सीधी हैं, और जो जो तिरछी नजरें हैं जिससे तुम देखते हो तो वो जख्म जिगर में और भी गहराई से समा जाती है। एक ऐसी निगाह जो दिल की हर हसरत को बयां करते है। तुम्हारी इस तिरछी निगाह का तीर मुश्किल से निकलेगा, और अगर ये दिल से निकलेगा तो ये दिल भी उसके साथ निकल जाएगा। ये तिरछी जो नजर है ना, तलवार की तरह है, बिजली की तरह है। ये निगाह कहीं ठहरती नहीं है, बस फिसल जाती है। तुम्हारी इस नजर में वो गुले रुखसार है, वो गुरूर नहीं है, लेकिन एक ऐसा है कि लगता है जैसे कोई बाहर आ गई हो। कहते हैं कि पहली नजर भी आपकी उफ किस बला की थी, हम आज तक वो चोट है दिल पर लिए हुए।

वक्त हो रहा है रात के 10:22 और 16 सेकेंड। इश्क की खुशबू से गुलजार है रजनीगंधा का आंगन और खूबसूरत रात के चेहरे से आंचल सरका रहा है आपका दोस्त जी हां अनवारुल हसन। तुम्हारा प्यार भी तो आंचल में बांध रखा है, हर सांस उस खुशबू की गवाह बन गई है जो तुम्हारे होने से मिलती है। तुम्हारी आंखों में बसे बहुत सारे ख्वाब, बहुत से ख्याल, दिन रात की दुआ की तरह हर जख्म पर जैसे तुमने फूल रखती हो, बेनियाज, बेपरवाह और बिल्कुल बेहिसाब। जब तुम पास होती हो तो वक्त भी शर्मा जाता है, लफ्जों में एक मीठी सी चुभन, चुपचाप बेरहम मोहब्बत की तरह। मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे अरमान लुटा दिए हैं और तुम्हारे आंचल की पनाह में अपने

अपनी दुनिया बसा ली है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे लिए एक फौज की तरह है, हर गम में और हर गम से लड़ने को तैयार। हर जाए पर जीत की तलाश में तुम्हारी जो आवाज की सादगी है इसमें कभी कभी खो जाता हूं। वो सुकून जो मुश्किल से कहीं मिलता है तुम्हारे ही पास मिलता है, और तुम्हारा प्यार मैंने इसीलिए बांध रखा है तुम्हारे उस आंचल के साथ, जैसे कोई हिजर वफा की किताब हमेशा खुली रखी हो, हर पन्ने पर तुम्हारे जुल्फों की छांव हो और हर लफ्ज पर तुम्हारी महक हो। रोज उसी बांधे हुए प्यार को मैं निहारता हूं जब भी वक्त मिलता है। ढेर सारा प्यार है यहां।

पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी

0: हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

मिलेंगे तो क्या बात होगी, क्योंकि जो उनकी निगाहें थी वो पहली निगाह भी अजीब सा एक तूफान उठाकर चली गई थी। तुम्हारी उस मुस्कान में एक रहमत भी थी जो खामोश लबों में एक सन्नाटा लिए हुए थी। आज भी उसे बार बार सुनने को तरसता हूं। दिल ने बेखबर होकर दस्तक दी और फिर क्या, कदम रुक गए, सांसें थम गईं, बस एक नाम रह गया। तुम्हारी बातों में वो नजाकत, तुम्हारी बातों में वो इश्क और मेरे वजूद को एक नया मुकाम देने का एहसास जो शायद आज भी कायम है। मैंने सोचा था कि वक्त सख्त है, मगर तुम्हारी आंखों ने मुझे सिखा दिया कि जीत तो मोहब्बत की ही होती है, और अब हमेशा हर बात जैसे मैं वहीं से शुरू करता हूं, उसी ढलती हुई शाम से, उसी मुस्कुराते हुए तुम्हारे अंदाज से, और वो जो आंखें मिली थी, जो नजरें मिली थी ना, उस मिलती हुई नजरों के एहसास से।

हलचल तो मन में भी थी और हलचल ये भी कि वो आएंगे, वो आएंगे और चांदनी रात होगी, न ये बात होगी न वो बात होगी, कटी उम्र सारी इसी कश्मकश में अगर वो

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

जब हसरतें आसमान चूम रही हूं मोहब्बत में, तो लोग ख्वाहिश का दामन फैलाकर ऐसे ही चांद तारे समेट लेना चाहते हैं। मगर जब किसी के मुट्ठी भर ख्वाब भी अंजाम तक न पहुंचे तो बाकी रह जाती है अजीब सी उलझन। हालांकि अभी उस उलझन का वक्त नहीं आया है। उलझन तो कभी कभी खुशफहमी में भी पैदा हो जाती है। किसी को देखा, कुछ महसूस हुआ, लगा कि कुछ हो गया है और फिर कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं मन में। कभी कभी ऐसा सवाल भी आता है, कैसा ऐसा।

10:54 और 38 सेकंड हो भी चुके हैं और इसलिए हम जाएंगे तो, लेकिन फिर आ जाएंगे आपसे, फिर से वही कहेंगे कि अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए, हम लौटेंगे। लेकिन आज हम रोकेंगे आपको, थोड़ी देर ठहरिए, कुछ खास। अक्सर हम चीजों को खास कर लेते हैं, वो होती नहीं है बहुत उतनी खास, बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत से दिवस हम अपने जो पारिवारिक संबंधों को लेकर बनाते हैं, रिश्तों को लेकर बनाते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगा कि शायद इस पर कुछ बात हो, कुछ आप तक पहुंचाएं। बदस्तूर सुकून पाने के लिए इंसान अक्सर बहुत सारी चीजें तलाश करता है, असल में हम सहारों की भी तलाश करते हैं और अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा सहारा घर के उस शख्स की मौजूदगी है जिसे हम पिता कहते हैं। पिता वो मुनासिब साया है जो हर कठिन घड़ी में हमारी हिफाजत के लिए चादर बिछा देता है। वो ताकत एक ऐसी है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन खामोशी से काम करने वाली ताकत है, मगर हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करने वाली ताकत है। बचपन में चाहे वो डांट हो, उसमें भी मोहब्बत का अक्स होता है और उसकी हंसी में दुनिया की रोशनी भी होती है। हमें जिंदगी के हर इम्तिहान में रास्ता मिलता है, कभी वो हमें सीढ़ियां चलना सिखाते हैं, कभी हवा में उड़ाकर भरोसा दिलाते हैं, और उनकी छोटी छोटी कुर्बानियां नजर नहीं आती, मगर यही हमारी तालीम, इज्जत और शख्सियत का बुनियादी हिस्सा बन जाती है। एक पिता की मौजूदगी न सिर्फ परवरिश है बल्कि अमानत भी है, और हमें उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। जो गाना आप तक पहुंचेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके हर अल्फाज को महसूस कीजिएगा। अगर रिश्तों में ये रिश्ता बाकी है तो उसकी इज्जत भी कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद भी दीजिए। क्योंकि एक शेर मुझे याद आ गया, इससे पहले कि लौटूं जाऊं मैं एक शेर सुना दूं कि यतीमी साथ लाती है जमाने भर की तकलीफें, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। लौटेंगे थोड़ी देर में।

शुक्रगुजार होना चाहिए। जो गाना आप तक पहुंचेगा जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके हर अल्फाज को महसूस कीजिएगा। अगर रिश्तों में ये रिश्ता बाकी है तो उसकी इज्जत भी कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद भी दीजिए। क्योंकि एक शेर मुझे याद आ गया, इससे पहले कि लौटूं जाऊं मैं एक शेर सुना दूं कि यतीमी साथ लाती है जमाने भर की तकलीफें, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। लौटेंगे थोड़ी देर में।